0: समझाकर उनके जीवन में आनंद भर दूं। इतनी आत्मशक्ति व सुनती अवश्य देना। आगे प्रार्थना करते हुए कहते हैं, दुख बहुत है, वे हमारे कर्मों के फल हैं, पर मैं उन दुखों को सहने का और दुखों में मुस्कुराने का आशीर्वाद मांगता हूँ, हर घड़ी प्रसन्न रह सकूं। आखिरी पंक्ति थी, मैं यह नहीं कहता कि मेरे पास इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, तूने मुझे इतनी सारी जिम्मेदारियां क्यों दी, तू इन जिम्मेदारियों का बोझ मेरे सिर से कम कर। मैं तो इतनी ही प्रार्थना करता हूं कि जितनी जिम्मेदारियां बढ़ा सकता है बढ़ा, पर जिम्मेदारियों को निभाने और उठाने का आत्म सामर्थ्य भी जरूर देना। वास्तविकता यह है कि हमें समस्याओं उलझनों से डरना नहीं चाहिए। परीक्षाएं जितनी होगी प्रमाण पत्र भी उतने ही मिलेंगे, क्षमताएं बढ़ेगी। हर समस्या तभी तक डराती है जब तक आप उससे जूझने संघर्ष करने तैयार नहीं होते। जूझने की शक्ति भी भगवान ही देता है। यद्यपि कुछ लोग शरीर से मोटे ताजे दिखाई देते हैं, लेकिन उन पर कोई समस्या आ जाए तो वे बच्चों से भी ज्यादा घबरा जाते हैं। कुछ लोग शरीर से बहुत कमजोर दिखाई देते हैं, किंतु संघर्ष करने का साहस दिखाने का अवसर आ जाए तो वे जूझने के लिए सबसे आगे भागते हैं। शरीर की शक्ति सीमित है, उससे बढ़कर आत्मिक शक्ति है जो तप द्वारा प्राप्त होती है। जिंदगी बहुत मूल्यवान है, आत्मिक शक्ति ही जीवन में सामना करना सिखाती है। मूल्य तो हर वस्तु का चुका, संघर्ष हर चीज के लिए करना पड़ता है। जिंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है। संघर्ष जीवन में न आए तो जीवन नीरस लगेगा। जितनी शक्ति आप अपने अंदर पैदा करेंगे उतनी ही आपकी बाह्य शक्ति बढ़ती जाएगी। जूझने के बाद जो शक्ति प्रदर्शित होती है उसका प्रमाण पत्र प्रकृति आपको देती है और वह बहुत कीमती होता है। मनुष्य का दिया प्रमाण पत्र तो जाली भी हो सकता है, किंतु कुदरत का प्रमाण पत्र बेशकीमती होता है। उस प्रमाण पत्र का अर्थ है, आपके सामने भारी से भारी समस्या आ जाए आप घबराएंगे नहीं, बल्कि मुस्कुराओगे, कहोगे तुम्हारा स्वागत है, वेलकम, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ। यह सारी प्राप्ति आत्मशक्ति को सबल बनाए बिना हासिल नहीं हो सकती। प्रभु सबकी आत्मिक शक्ति बढ़े ऐसा आशीर्वाद सभी को दें।
1: ये था आज का चिंतन, आलेख और स्वर केसरी चंद पारक का था। हम आकाशवाणी जगदलपुर से बोल रहे हैं। 6:25 हुए हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस का गायन।

ज्ञानी याज्ञवल्क्य से ये बात छिपी नहीं थी कि भरद्वाज मुनि श्री रघुनाथ जी की महिमा और प्रभुता से भली भांति परिचित हैं। फिर भी वो श्री राम के रहस्यमय गुण स्वयं उनसे सुनना चाहते हैं। इसी कारण एक मूढ़ की भांति उन्होंने प्रश्न किया है कि भगवान शंकर सहित देव मुनि जिन रामचंद्र का गुणगान करते हैं वे राम कौन हैं? याज्ञवल्क्य ने स्नेह के वश होकर भरद्वाज को तब उमा तथा महादेव के संवाद की कथा सुनाई। एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त्य ऋषि के पास गए, साथ में जगत जननी सती भी थी। ऋषि ने शंकर को अखिल विश्व का ईश्वर जानकर उनकी पूजा अर्चना की तथा विस्तार से श्री राम की कथा कही और उनसे हरिभक्ति की महिमा सुनी।

0: श्री रामचरितमानस का गायन आप सुन रहे थे। गायक स्वर रविंद्र साठे का था, संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। मीडियम वेव और एफएमएन पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए कृषि समय की पीड़ा खड़ा चुगोट।
1: जोंधरा फसल ने गोटुक कीड़ी हो से तना बेधक। ये कीड़ी होलो ने ये कीड़ी मन बूटा के भेदुन भाती भीतर भीतर खाते रसो। ये चोले काय हो से कि फरतो बेरा जोंधरा फूल सुकून जाए से और पाछे लहरा इलो ने कीड़ी होलो बूटा मन टूटून जासो। ये कीड़ी के रोकथाम करतो काजे बुनतो 20 ले 25 दिन पाछे कार्बोफ्यूरान 3G 20 किलोग्राम अढ़ाई एकड़ चो हिसाब ने उपयोग करतो रहे। गोटुक हो से प्ररोह मच्छी। ये मच्छी घर ने जोन मच्छी रसोत हुंचो ले नानी नानी रसोत। ये मच्छी मन पाना मंचो खाले बाटे गार देवात। और ये मच्छी होलो ने फसल के 60-70% नुकसान अमरावात। ये के मरला तो काजे फोरेट 10G चो 12.5 किलोग्राम अढ़ाई एकड़ चो हिसाब ने 5 ग्राम दाना 5 मीटर लाइन ने भूई ने बीज बुनतो बेरा उपयोग करा। और गोटो गोटायदा दीदी मन जोन थाने खिंडिक बेरले बुनई होय से हुन थाने बीच चो मात्रा खिंडिक आगर संगाउक लागे से। गोटुक होय से बालदार सुंडी खमन लगे जोन बेड़ा नाहले बाड़ी रहे से हुता ये कीड़ी मन फसल के नुकसान करुन देवात। ये कीड़ी मन आगे पाना के खवात और पाछे जमाय बूटा ने जौटवात। यही काजे मूर बेरा ये कीड़ी मन के बाचुन भाती गोटुक लगे सकलून मरलौन देतो राय। और जैसन खरीफ बतर ने ये कीड़ी ले आम के बाचतो आसे तो हुंचे काजे गोटुक उपाय आसे कि आम बेड़ा ने तिल बले लगाऊं। और जैसा नाम के आगर कीड़ी दखा दे से बल्लो ने कीटनाशक दवाई क्विनाल फास 2.5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी ने घोरून भाती यथा छिड़काव करूं। गोटुक कीड़ी होए से

0: जोंधरा कीड़ी ये चो नाव जैसा ना है जोंधरा कीड़ी उसनी जोन जोंधरा ने दाना मन अकरते रुआए होन थाने ये कीड़ी मन झोंटवात ये कीड़ी मन जोंधरा चो भीतरे आरु बाहरे दोनों बाटे जाला बनाउन भाती दाना मन के खवात ये कीड़ी होलो ने फसल चो उपजन 12% कम होन जाए से ये चो काजे बोले कीटनाशक दवाई क्विनाल फास 2.5 मिलीलीटर के गोटुक लीटर पानी चो हिसाब ने घोरून भाती छिड़काव करतो रहे गोटुक कीड़ी होय से ओरमा ओरमा कीड़ी के तो तुम्ही जाना छे ये कीड़ी बूंद के नसा हुआ है ओरमा होलो ने बूटा के झिकलो ने बूटा परक नाय तुरते बाहरे हुआ है और बूंद ने चुचाय माटी दखा दे हुआ है जोन थाने ओरमा होय से असन बेड़ा ने बीज बूंद तो पहिल क्लोरफायरीफास कीटनाशक दवाई ले उपचारित करून भाती बीज के बूंद तो राय संगे संगे लेख कर तो राय कि आगे धरलो फसल चो कहीं कचरा काड़ी इनाम बेड़ा नी रहो और जसन आम फसल धरलू से और पाछे होता ओरमा कीड़ी हो जाए से तो उदल दाए 20 से 25 किलोग्राम क्लोरपायरीफास कीटनाशक दवाई चो उपयोग 2.5 एकड़ चो हिसाब में करतो रहे दादी दी मन मैं सांगले ये कीड़ी मरला तो उपाय अदाय रोग राय चो वाट के जाना गोटोक रोगाय अंगमारी ए रोग होलो ने खाले चो पाना मन ने गोल नहाले डोंगा महा बाना चीना हो जाए से जोन धमसिया नहाले सेमी रंगिया महा हो से ए रोग खाले ले उपरे जाते जाए से जिसोले पाना बले सुकुन जाए से ये रोग चो रोकथाम काजे पाना मन के सकलुन भाती दसाउन देतो राय और जोन थाने ये रोग होली से हुन फसल ले मीरतो बीज के फेर नी बुनतो राय और जसन ठिया फसल ने ये रोग होली से तो उदल दाय झपके कार्बन डाजिम 0.1% नहाले हेक्सा कोनाजोल 0.1% चो छिड़काव 10 से 15 दिन चो अरक फरक ने करतो राय गोटोक रोग होय से तना सड़न रोग ये रोग जोन ठान ने आगर वर्षा होय से असन ठान मन ने बूटा चो ढेटा ने पानी महा बाना असन दखा देवाए ढेटा सड़ते जवाए और बास देवाए और पाना हृदय महा दखा देवाए और सुकुन बले जवाए ये रोग के थेबा तोर काजे 15 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नहले 60 ग्राम एग्रीमाइसिन 2.5 एकड़ बल्ले गोटोक हेक्टेयर ने पानी ने घुरुन भाती छिचुन देतो राय गोटोक रोग होय से शीघ्र अंगमारी रोग ये रोग राइजोक टोनिया सोलेनाई नाव चो फफूंद ले होय से ये रोग होलो ने भूई लगे चो ढेटा ने बाना चीना महा दखा देवाए ये बाढ़ते बाढ़ते ऊपरे जोंधरा लगे नहाले हुंचो ऊपरे बले अमरुन जाए से ये चोले बाज तो काजे फसल ने शीत मार 0.3% चो छिड़काव जसन रोग मुर होय से उदली दाए करतो राय दादा दीदी मन मैं ये रोग राई ले कसन जोंधरा फसल के बचावा ये उवाट के सांगले ये उवाट ने फसल के रोग राई ले बचाऊन तुम्ही आगर ले आगर कमानी पाउ सकासे
1: अभी कृषि समय की बेड़ा खड़ा चुगोट कार्यक्रम का प्रसारण किया गया आकाशवाणी का ये चित्रपुर केंद्र है होली कार्यक्रम में विजय सुनिए बीर खम देव पर कलाकार हैं पाकलू और साथी

कुल्हड़ी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मोहरी बाजा पर बजाया गया बीरखम देवपाड़। वादक कलाकार थे पाकलू और साथी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आज शाम 6:30 पर आप सुनेंगे इंग्लैंड के ओल्फ ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में भारत और बांग्लादेश के मध्य खेले जाने वाले आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 का आंखों देखा हाल। इस खेल की समाप्ति तक हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। क्रिकेट मैच का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के मीडियम वेव 306.2

0: ये सुनेगा प्रसारण समय होगा सुबह 9 बजे। 9:30 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनेंगे आई मिलन की बेला, इस फिल्म के गाने। शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गाने आप सुनेंगे गुलशन कार्यक्रम में सुबह 10:30। लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़गम में सुनेगा मांगुराम और साथियों के गाए ध्रुवी गीत। दैनिक कार्यक्रम एक ही कलाकार आप सुनते हैं सुबह 11 बजे। इसमें सुनेगा महान संगीतकार मदन मोहन के संगीतबद्ध कुछ गाने। गैर फिल्मी गीतों गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता सुबह 11:30। कला और कलाकार, ये कार्यक्रम होगा दोपहर 12:30 पर। हम आपको सुनेंगे ग्रामीण महिलाओं का अपना कार्यक्रम घर द्वार। 1:10 पर सुनेगा फरमेशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रसारण किया जाएगा दोपहर 2:30। हमारी संध्याकालीन सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे से। शाम 5:05 पर आप सुनेंगे समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार हाईवे बोली में। युवा मित्रों का पसंदीदा कार्यक्रम युवावाणी हिंदी में आप सुनेंगे शाम 5:10 पर। बुधरी और साथियों का गाया हल्बे लोकगीत होगा 6:35 पर। बस्तर के स्वर, ये कार्यक्रम हम आपको सुनेंगे शाम 7:21 पर। सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। डांडा माली, इस कार्यक्रम में रात 8 बजे आप सुनेंगे ध्रुवी गीत, गायक कलाकार होंगे चंद्रू राम बघेल और साथी। रात 8:30 पर हमारा बस्तर, इस कार्यक्रम में हम आपको सुनाएंगे भेंट वार्ता, विषय होगा बस्तर की धोरवा जनजाति। सुखराम बघेल से भेंट करेंगे नारायण सिंह बघेल। रात 9:15 पर सुनेगा लोक गाथा केकड़ा और बुढ़िया, ये लोक कथा सुनेंगे रुद्रनारायण पानीग्रही। घूमकरी कार्यक्रम में रात 9:30 आप सुनेगा लीनधर और साथियों का गाया नाट गीत। रात 10 बजे आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं आज रात 10:30। श्रोता, हम आपको बता दें कि क्रिकेट मैच आरंभ होने के पश्चात संध्याकालीन कार्यक्रम FM 100.1 MHz और News on AIR मोबाइल पर हम आपको सुनवाएंगे। ये थी हमारे केंद्र से आज के सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार होंगे। समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः नवदेहल्याः सेवातीर्थस्थले प्रगति इति सूचना संचार प्रौद्योगिकी आधारित मंचस्य 250वें उपवेशनस्य अध्यक्षतां विहितवान्। अस्यां गोष्ठ्यां श्रीमोदी चतुर्षु राज्येषु विस्तृतान् मार्ग विद्युत औद्योगिकी वीथि तथा मेट्रो रेलवे क्षेत्राणां चतुर्प्रमुखान् आधारभूत संरचना प्रकल्पान् समीक्षितवान्। एतेषां प्रकल्पानां आहत्य व्ययः प्रायः 30,000 कोटि रूप्यकाणि अस्ति। आर्थिक विकासं, क्षेत्रीय संपर्कं, औद्योगिक विकासं तथा जनकल्याणं वर्धयितुं संधारिताः एते प्रकल्पाः, समयसीमा, विभिन्न संस्थानां समन्वयः तथा प्रलंबित विषयाणां शीघ्र निवारणाय विशेष ध्यानेन सह संति समीक्षिताः। अद्यतावत् संविधान हत्या दिवसो वर्तते। दिवसोयं तस्याः घटनायाः स्मरणं कारयति यदा 75वें वर्षस्य जून मासस्य 25वें दिनांके भारतीय संविधानस्य अवमानना कृता। अनेन सहैव अयं दिवसः आपत्काले अत्याचारैः प्रताडितेभ्यः प्रत्येकं जनेभ्यः श्रद्धांजलिम् अर्पयितुं दिवसो वर्तते। अस्मिन्नेव दिने तत्कालीनः राष्ट्रपतिः फखरुद्दीन अली अहमदः आन्तरिक अशान्तेः कारणं प्रदर्श्य देशे राष्ट्रीय आपत्कालस्य घोषणाम् अकरोत्। देहल्याम् अस्य मासस्य त्रिंशत् दिनांकात् आरभ्यमाणस्य मतदात्री सूचीनां विशेष गहन पुनरीक्षणस्य अन्तर्गतम् गृहं गृहं गत्वा गणना कार्यक्रमम् अभिलक्ष्य देहल्याः मुख्य निर्वाचन अधिकारिण ह्यः नवदिल्ल्यां विभिन्न राजनैतिक दलानां प्रतिनिधिभिः सह एका सभा आहूता। मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः एकेन विवरणेन स्पष्टीकृतं यत् अस्यां गोष्ठ्यां भारतीय जनता पार्टी इति दलम्, आम आदमी पार्टी इति दलम् तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इत्यादि प्रमुखाणां राजनैतिक दलानां प्रतिनिधयः समुपस्थिताः आसन्। कार्यालयानुसारं मुख्य निर्वाचनाधिकारी प्रत्यपादयत् यत् कोऽपि योग्यः नागरिकः न वञ्चितः स्यात्, सहैव कोऽपि अयोग्यः जनः मतदात्री सूच्यां न सम्मिलितो भवेत्। अनेन सहैव गणनाचरणे अनुपालनीयानां प्रमुखाणां गतिविधीनां विषयेऽपि राजनैतिकदलानि विस्तरेण सूचितानि। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य देशस्य उत्तर पूर्वीय क्षेत्रेषु झारखण्ड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उपहिमालय, पश्चिम बंग, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकणम समेत्य गोवा क्षेत्रस्य कतिपयेषु भागेषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रख्यापितम्। विभागानुसारम् अद्य पश्चिम राजस्थान क्षेत्रे झंझावातस्य संभावना अपि वर्तते। अत्रावधेयं यत् अद्य बिहार, पूर्व मध्य प्रदेश, पूर्व उत्तर प्रदेशस्य च नाना स्थानेषु उष्ण तरंगस्य अनुमानमपि विभागेन अनेन प्रकटीकृतम्। अपरत्र अद्य देहल्याम् आंशिक रूपेण मेघाच्छादनं नभः भविष्यति, सहैव अपराह्णे सायंकाले वा विद्युद्गर्जनेन वृष्टेः संभावनापि वर्तते। सम्प्रति क्रीडा वार्तासु आईसीसी महिला टी ट्वेंटी विश्व कप स्पर्धायाम् अद्य भारतस्य सम्मुखीकरणं बांग्लादेशेन सह भविष्यति। स्पर्धेयं मैनचेस्टर नगरस्य एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफोर्ड क्रीडा

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इस दल में 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। धारचूला के उप जिलाधिकारी और व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि व्यापार को सुगम बनाने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय खोला गया है। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच कल टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हाल की परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों के सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इसके साथ ही ब्राजील ग्रुप सी से नॉकआउट में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड

1.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से भी सुन सकते हैं। सुबह के 7:05 में है, प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।

समय कभी स्थिर रहता कब है, दुख भी आखिर ढल जाता है, धैर्य की मिट्टी में बोया बीज एक दिन बन जाता है वटवृक्ष, नभ को छूने की चाह रखो पर पांव धरा पर ही रहने दो, दीपक बनकर जलना सीखो, सूरज बनना नहीं जरूरी, एक किरण भी काफी है, हर अंधेरा शाश्वत नहीं। श्रोताओं, हर अंधेरी रात के बाद उगता है उम्मीदों का नया सवेरा, इन्हीं बातों के साथ हाजिर हूं मैं, नमस्कार जगदलपुर लेकर आप सभी को मेरा यानी गायत्री आचार्य का नमस्कार। श्रोताओं, विशाल समुद्रों की लहरों के बीच घर परिवार से दूर रहकर दुनिया के देशों को जोड़ने वाले नाविकों के समर्पण और साहस को नमन करने का दिन है आज का ये दिन। आज है 25 जून और आज हम मना रहे हैं विश्व नाविक दिवस या विश्व मल्लाह दिवस। समुद्र की गहराइयों में अनिश्चित मौसम और कठिन परिस्थितियों के बीच भी नाविक अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। इसलिए कहा गया है कि जो तूफानों से टकराने का हौसला रखते हैं वही किनारों से आगे बढ़कर मंजिलों को छूते हैं। समुद्र का नाम आते ही मन में लहरों, यात्राओं और दूर दूर तक फैले नीले आकाश की तस्वीर उभर आती है। विश्व की लगभग 80% व्यापारिक वस्तुएं समुद्री मार्गों से एक देश से दूसरे देश तक पहुंचती है और इस विशाल व्यवस्था के पीछे लाखों नाविक जिनकी मेहनत और समर्पण हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाते हैं। नाविक केवल सामान ही नहीं बल्कि देशों के बीच रिश्तों और विश्वास की डोर को भी मजबूत करते हैं। उनका जीवन हमें धैर्य, अनुशासन और समर्पण का संदेश देता है। श्रोताओं, समुद्र जितना विशाल है उतने ही विशाल है उन लोगों के सपने और साहस जो उसमें अपना जीवन बिताते हैं। विश्व नाविक दिवस के अवसर पर हम उन सभी अनदेखे नायकों को धन्यवाद कहते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं जिनकी मेहनत से दुनिया की रफ्तार कायम है।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1512।
3: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
4: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 से 8 तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 0778222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज आपकी कहानी आपके खेतों की जुबानी।
5: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
6: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
5: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, एफएम पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102, या लॉग ऑन करें csuair.org.in।

0: आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर। श्रोताओं, आइए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं एक वार्ता। विषय है पर्यावरण संरक्षण जीवन संरक्षण। वार्ताकार है प्रणीता चंद्राकर।
1: पृथ्वी पर बढ़ रहा पर्यावरण संकट उन गंभीर समस्याओं में मुख्य माना जा सकता है जिससे आज के समय में मानवीय जीवन खतरे में पड़ सकता है। जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, हम इसे एक मुहावरे के रूप में सदियों से प्रयोग करते चले आ रहे हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि इस मुहावरे का पृथ्वी ग्रह पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? वर्तमान में मनुष्य की क्रियाएं उसी पृथ्वी को संकट के काल में ले जा रही हैं जिसने उसे जीवन जीने के लिए आधार प्रदान किया है। क्या इस नश्वर संसार में कालिदासों की कमी है? हम जिस पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं उसी पृथ्वी के विनाश का कारण भी स्वयं बन रहे हैं। मानवीय प्रवृत्तियों ने स्वार्थ के वशीभूत होकर ऐसी क्रियाओं को जन्म दिया है जिसने पृथ्वी के वातावरण को असंतुलित कर खतरनाक स्थितियां पैदा की हैं। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक ग्लोबल वार्मिंग या फिर वैश्विक तापमान से होने वाले खतरों पर अनुसंधान कर रहे हैं। मौसमी परिवर्तन चिंतन बैठक द्वारा परीक्षण किए जा रहे हैं। ओजोन परत के संरक्षण की दिशा में उपाय तलाशे जा रहे हैं। हाल ही में डेनमार्क में पर्यावरण पर जो विश्व सम्मेलन हुआ उसमें संसार के चोटी के पर्यावरण विशेषज्ञ वैज्ञानिक और राजनेताओं ने भाग लिया। इस सम्मेलन में विशेषज्ञों ने पर्यावरण के बारे में अपने शोध और अध्ययन की जो चर्चा की और भविष्य के बारे में उन्होंने जो भविष्यवाणियां की वे अत्यंत ही चिंताजनक हैं। विशेषज्ञों ने कहा है कि जिस रफ्तार से पृथ्वी का तापमान प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है उससे पर्यावरण के अन्य क्षेत्रों को भयंकर खतरा पैदा हो ही गया है। चिंता का विषय यह भी है कि हिमालय और संसार के दूसरे पहाड़ी क्षेत्रों के और अंटार्कटिक और ग्रीनलैंड के बर्फ के भारी चट्टान पिघल रहे हैं और ग्लेशियर सूखते जा रहे हैं। घनी बर्फ की चट्टानें पिघलकर अंततः समुद्र में मिलती जा रही हैं। उससे सन 2100 में संसार में समुद्र का जलस्तर 60 सेंटीमीटर या उससे अधिक बढ़ जाएगा। आगे के वर्षों में यह जलस्तर 1 मीटर से 3 मीटर तक बढ़ेगा जिसका परिणाम यह होगा कि वे छोटे देश जो समुद्र तट पर बसे हुए हैं धीरे धीरे समुद्र में डूब जाएंगे। इसमें सबसे अधिक चिंताजनक स्थिति बांग्लादेश और मालदीव की होने वाली है। बांग्लादेश में तो समुद्र के जलस्तर में तेजी से वृद्धि होने के कारण उसका 20% क्षेत्रफल अभी ही पानी में डूब गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि देश के 50% नागरिक बेघर हो गए हैं। वैज्ञानिकों ने कहा है कि थर्मल एक्सपेंशन के सिद्धांत के अनुसार कोई भी वस्तु जब गर्म होती है तो फैल जाती है। इसलिए गर्मी से जो बर्फीली चट्टानें या ग्लेशियर प्रभावित हो रहे हैं उनसे निकलने वाला पानी अंततः समुद्र में क्षेत्र से गर्मी के दिनों में जिन नदियों में बाढ़ आती है उसका पानी अंततः समुद्र में चला जाता है। लेकिन समुद्र की भी एक सीमा है। नदियों और ग्लेशियरों का पानी तो समुद्र में आ जाएगा परंतु समुद्र का पानी कहां जाएगा? अंततः जलस्तर के बढ़ने से तटीय क्षेत्रों के शहर जल प्लावित हो जाएंगे। वैज्ञानिकों ने अपने शोध के आधार पर यह भी कहा है कि जिन तटीय क्षेत्रों में समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है वहां पर आसपास के क्षेत्रों में जमीन के नीचे का पानी दूषित हो गया है। जिन क्षेत्रों में समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है वहां के आसपास के क्षेत्रों में भूजल खारा हो गया है। वहां पीने के लायक या खेती में सिंचाई के लायक पानी ही नहीं रह गया है जिस कारण तटीय क्षेत्रों के लोग बुरी तरह प्रभावित हो गए हैं। विशेषज्ञ इस बात पर एकमत हैं कि पिछले अनेक वर्षों में पश्चिम के विकसित देशों द्वारा कल कारखानों से कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी जहरीली गैस छोड़े जाने के कारण ही पृथ्वी का तापमान बढ़ा है। साथ ही पृथ्वी का तापमान बढ़ने का दूसरा जबरदस्त कारण अनेक देशों में अज्ञानतावश लोगों ने अंधाधुंध जंगल काटे हैं। जंगलों के कारण पृथ्वी का तापमान हमेशा नियंत्रित रहता था। लैटिन अमेरिकी देशों में घने रेन फॉरेस्ट थे जिनके कारण वातावरण में शीतलता थी। लोगों ने अज्ञानतावश बड़ी बेरहमी से इन जंगलों का विनाश किया है जिसका असर पूरी दुनिया के बढ़ते हुए तापमान पर पड़ा है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि पृथ्वी के बढ़ते हुए तापमान के कारण संसार के विभिन्न देशों में दुर्लभ जीव जंतुओं की कई प्रजातियां तेजी से लुप्त हो रही हैं। इस सिलसिले में यह कहा जा रहा है कि मेडागास्कर आज से 8 करोड़ वर्ष पहले किसी भूचाल के कारण भारतीय उपमहाद्वीप से अलग होकर अफ्रीका के समीप चला गया था। वहां हजारों अद्भुत जीव जंतु हैं जो संसार के अन्य देशों में नहीं पाए जाते हैं, परंतु पृथ्वी के तापमान के बढ़ने के कारण इन जीव जंतुओं की प्रजातियां मेडागास्कर में भी तेजी से विलुप्त हो रही हैं। पृथ्वी का तापमान आज जिस तेजी से

बढ़ रहा है उसके भयावह परिणाम आज से 100 वर्ष बाद पूरे संसार को भुगतने होंगे। हो सकता है इससे पहले भी उस समय सारे लोग यही कहेंगे कि उनके पूर्वजों ने पृथ्वी की चिंता नहीं की और पर्यावरण के महत्व पर ध्यान नहीं दिया, आज उनकी ये दशा नहीं हुई होती। पिछले 50 वर्षों में विश्व के 25% प्रवाल समाप्त हो चुके हैं, भूजल का स्तर लगातार गहराई को छू रहा है, तटीय वनों का सफाया रोकने में सफलता नहीं मिल पा रही है। अभी कुछ वर्ष पूर्व आया सुनामी पृथ्वी के असंतुलन का ही परिणाम कहा जा सकता है। बढ़ता प्रदूषण और वैश्विक तापमान ही ऐसे घटक हैं जिनके कारण ग्लेशियर पिघलते हैं। समुद्र के स्वस्थ जल का स्तर बढ़ता है और इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम वर्षा वाले क्षेत्रों में और अधिक वर्षा के रूप में हमारे समक्ष आता है। सागरों का जल स्तर बढ़ने से विश्व स्तर पर सागर तटीय शहरों पर डूबने का खतरा एक अलग परेशानी को जन्म दे रहा है। भारत वर्ष के संदर्भ में यह समस्या अधिक गंभीरता लिए दिखाई पड़ रही है। कारण यह है कि हमारे देश की 1/4 जनसंख्या समुद्र तट से 50 किलोमीटर के दायरे में निवासरत है। पृथ्वी पर बढ़ रहे तापमान या ग्लोबल वार्मिंग की खतरनाक स्थितियों को देखते हुए विश्व स्तरीय चिंतन समय की मांग है। विश्व मौसम संगठन की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी का औसत तापमान विगत 15 वर्षों में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। पृथ्वी पर तापमान की विविधताएं मैदानी, पठारी और पर्वतीय क्षेत्रों की शहरी और ग्रामीण भूभागों में भी महसूस की जा सकती है। 1980 के दशक के शुरुआती दौर में अंटार्कटिका में अनुसंधान कार्य कर रहे वैज्ञानिकों ने उस महाद्वीप के ऊपर के वायुमंडल में नियमित रूप से ओजोन स्तर में कमी होती देखी। 1998 में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इस बात का पता लगाया कि ओजोन छिद्र 1985 में खोजे गए ओजोन छिद्रों से अधिक बड़ा था। इन निष्कर्षों को वहां के राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन और नासा द्वारा 6 अक्टूबर 1998 को जारी किया गया। ओजोन छिद्र का लगातार बढ़ता रूप अख्तियार करना चिंता का विषय है, क्योंकि भूवैज्ञानिकों का मानना है कि ओजोन को विलुप्त करने वाली वायु अंततः विसरित होकर वायुमंडल की संपूर्ण ओजोन परत को नष्ट कर देगी। यह एक सुखद समाचार है कि पृथ्वी की ओजोन छतरी में हुए सुराख की मरम्मत के संकेत मिलने लगे हैं। आपने सोचा है कि आखिर यह ओजोन परत है क्या? यह पृथ्वी से 20 से 30 किलोमीटर ऊपर ओजोन गैस सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों UV1 और UV2 को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है, यानी ओजोन एक प्राकृतिक फिल्टर का काम करती है। धरती के बढ़ते तापमान और विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए सूर्य की यही किरणें जिम्मेदार हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस सदी में धरती का तापमान 2 से 6 डिग्री तक बढ़ सकता है। 2 डिग्री की बढ़ोतरी भी धरती में भयंकर तबाही को जन्म दे सकती है। वैज्ञानिकों की माने तो तापमान में वृद्धि का दुष्प्रभाव इस प्रकार हो सकता है कि 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि यानी अनेक प्रजातियों के अस्तित्व पर संकट, 2 डिग्री सेल्सियस वृद्धि का असर फसलों के पैदावार पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा, 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड होने पर दुनिया की आधी से अधिक आबादी संक्रामक बीमारियों की चपेट में आ जाएगी, जीव जंतुओं और वनस्पतियों की 20% यानी 20,000 से अधिक प्रजातियों के खत्म होने की आशंका, तापमान वृद्धि से हृदय और स्वास्थ्य संबंधी रोग के चलते मृत्यु दर में इजाफा संभव, वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण अस्थमा, एलर्जी और फेफड़ों में संक्रमण की बीमारी पांव पसारेगी। भारत वर्ष ओजोन परत को सुरक्षित रखते हेतु मानवता की रक्षा के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। भारत मॉन्ट्रियल संधि 1987 में इंग्लैंड संशोधन के साथ 1992 में शामिल हुआ और हमारे यहाँ ओजोन प्रकोष्ठ एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में उसी समय से काम कर रहा है। ओजोन प्रकोष्ठ की स्थापना ही ओजोन परत को नष्ट होने से बचाने के लिए की गई है। इसके अतिरिक्त हमारा देश पर्यावरण परिवर्तन के विषय में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का भी सदस्य है। इस संबंध में ग्रीनिंग इंडिया के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं में अनुदान देकर सहायता की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में भारत वर्ष में भू क्षरण पर राष्ट्रीय स्वक्षमता आवश्यकता आकलन का कार्य भी शुरू किया है। इन सब के अलावा भारत सरकार का विशेष प्रयास पर्यावरण शिक्षा और प्रशिक्षण के विषय में जन जागरूकता का प्रचार प्रसार भी करना है। भारत एक ऐसा देश है जिसके स्वर्ण गर्भित अंचल में गंगा, गोदावरी और सरस्वती की धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है, जहां की काली अमराई नीले मेघों से ढकी है, जहां के जन जन के मुख से यह कथा रची बसी रही है कि भारत की नदियां मरणशील जीव के जीवन मरण के साथ देने के लिए जड़ अमृत की नींद छोड़कर स्वर्ग का सुख छोड़कर इस धरा पर आई। उस नदी मातृका भूभाग भारत में जल संकट की भयावहता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। विश्व बैंक की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार एकाध दशक के बाद पेयजल की कमी गंभीर संकट के रूप में सबके सामने आएगी। यह तो आप जानते ही हैं कि भारत देश में पेयजल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा भूजल के जरिए ही आता है।

गांव से लेकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पीने के पानी की उपलब्धता और कुओं नलकूपों से होने वाली सिंचाई के लिए हम धरती माता के सीने पर वार कर उसे चीर कर बड़े पैमाने पर भूजल प्राप्त कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ धरती पर आ रहे वर्षा के जल की वृद्धि की निरंतरता के लिए हमारी ओर से कुछ प्रयास न किए जाने से पेयजल संकट गहरा रहा है। न तो हम जल संरक्षण कर रहे हैं और न जल आवर्धन की दिशा में कोई प्रयास। पूर्व प्रसिद्ध राष्ट्रपति और ख्याति लब्ध वैज्ञानिक श्री अब्दुल कलाम ने पानी के महत्व को समझने की गुजारिश करते हुए आगाह किया था कि भविष्य में

0: देश और सारे विश्व में कितना पानी बचेगा इसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। पानी को बचाएं, इस तरह जीवन को बचाएं, क्योंकि जल ही जीवन है। आज जल संकट विश्व समस्या बन चुकी है, अतः इसके नियमन हेतु शासन और जन समुदाय को समान रूप से स्वच्छ और स्वेच्छा मन से उत्तरदायित्व का निर्वहन करना होगा। जल प्रदूषण गहराता रहेगा, भूभार संतुलन डगमगाता रहेगा। समस्या निवारण हेतु कथनी और करनी में समानता लानी होगी, तभी हम धरा पर स्वर्ग की कल्पना को साकार होता देख सकेंगे।
1: पर्यावरण संरक्षण, जीवन संरक्षण, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता। वार्ताकार थी प्रणीता चंद्राकर। आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर। श्रोताओं, हमारी दुनिया रंगों से भरी हुई है। प्रकृति के रंग, सपनों के रंग, रिश्तों के रंग और जीवन के रंग। लेकिन जब बात इंसान की आती है तो अक्सर हम बाहरी रंगों को जरूरत से ज्यादा महत्व देने लगते हैं। इसी सोच को बदलने और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आज हम मना रहे हैं विश्व विटिलिगो दिवस। विटिलिगो, जिसे हम सामान्य भाषा में सफेद दाग कहते हैं, ये त्वचा की एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर के कुछ हिस्सों की त्वचा अपना प्राकृतिक रंग खो देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि त्वचा को रंग देने वाली कोशिकाएं, जिन्हें मेलानोसाइट्स कहा जाता है, काम करना बंद कर देती हैं या नष्ट हो जाती हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि विटिलिगो कोई संक्रामक रोग नहीं है। ये किसी के छूने, साथ बैठने, भोजन करने या संपर्क में आने से नहीं फैलता। फिर भी कई लोग अज्ञानता के कारण इससे प्रभावित व्यक्तियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार कर बैठते हैं, जो बेहद दुखद है। श्रोताओं, किसी व्यक्ति की पहचान उसके रंग से नहीं बल्कि उसके विचारों, उसके कर्मों और उसके व्यक्तित्व से होती है। विटिलिगो से प्रभावित लोग भी उसी तरह सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं जैसे कोई अन्य व्यक्ति। ये दिवस हमें ये संदेश देता है कि हमें बाहरी स्वरूप के आधार पर किसी का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। समाज में जागरूकता बढ़ाने और भ्रांतियों को दूर करने की आवश्यकता है। हमें ऐसे लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए, न कि उन्हें हीन भावना का अनुभव कराना चाहिए। इतिहास और वर्तमान में अनेक ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने शारीरिक चुनौतियों के बावजूद अपनी प्रतिभा और आत्मविश्वास के दम पर दुनिया में विशेष पहचान बनाई। यह हमें सिखाता है कि सफलता का संबंध रूप रंग से नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प और सकारात्मक सोच से होता है।

0: आदमी और इंसान इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। गीत रचना साहिर की थी और रवि ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर। श्रोताओं, 25 जून यानी आज का ये दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है। वर्ष 1975 में इसी दिन देश में आपातकाल लागू किया गया था। यह अवधि हमें संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक अधिकारों के महत्व की याद दिलाती है। लोकतंत्र की शक्ति इसी में है कि हम अपने इतिहास से सीखें और संविधान के प्रति सम्मान बनाए रखें। आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
1: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
0: आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर और अब पेश है मधुरिमा।

प्रेम में छोटी सी मुस्कान भी पूरे संसार को सुंदर बना सकती है। मुस्कान की अपनी एक अलग ही भाषा होती है जो बिना शब्दों के दिलों तक पहुंच जाती है। जब किसी अपने के होठों पर मुस्कान खिलती है तो जैसे मन के आंगन में भी खुशियों के फूल महक उठते हैं।

ठंडी हवाएं जब चेहरे को छूती हैं और काली घटाएं आसमान पर छा जाती हैं, तो मौसम केवल बदलता ही नहीं, दिल के किसी कोने में दबी यादों को भी जगा देता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो पास न होकर भी हर मौसम में साथ महसूस होते हैं, और जब यादों का ये सिलसिला संगीत से जुड़ जाए तो हर एहसास और भी खूबसूरत हो उठता है।

के रिश्ते बड़े अनोखे होते हैं। कभी ये मुस्कान बनकर साथ चलते हैं, तो कभी बिछड़ने की आहट से मन को बेचैन कर देते हैं। प्रेम की डोर जब किसी से बंध जाती है, तो फिर हर खुशी, हर इंतजार और हर कसक उसी से जुड़ जाती है। ऐसे में मन अनायास ही पूछ बैठता है, आखिर क्यों बंध गई ये डोर, जो हर पल प्रियतम की यादों में डुबोए रखती है।

0: रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रसारित किया गया। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब समाचार प्रभात हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से

के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से

0: राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए एआई के उपयोग पर बल दिया तथा एनसीसी कैडेटों और माई भारत स्वयं सेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्य से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सुप्रीम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नास। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उस सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
1: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनंता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इस मामले में भवन पर्यवेक्षक और 2 श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
2: राजूला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक मूल्य सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्जे के निकट स्थित गोदाम तक पहुँचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को लिपुलेख दर्जे तक पहुँचने के लिए नाभीडांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी गई है।
3: में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू है। बुधवार तक वहाँ पे कस्टम्स का पूरे स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो बड़े कचरों को लेके पड़ा था उसमें संयुक्त बैठक हुई।

0: आर्मी, व्यापारी और प्रशासन की, उसमें भी एक आपसी सहमति से नाजीरान के समय भी एक पड़ाव चयनित किया गया है।
1: गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में कोविड 19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी नवाचार और ब्रिटेन भारत मूवमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
2: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंचों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल है। अमेरिका की एक संघीय अदालत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमरीकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा है कि अमरीकी संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। वेनेजुएला और जापान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के याराकुए के युमारे शहर में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इससे ठीक 39 सेकंड पहले वेनेजुएला के सैन फेलिप में भी 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 6.9 थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
4: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। इसके बाद वे समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
2: और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
5: ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे

0: दोनों चार दिवसीय मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे। भारत ए टीम की अगुवाई दुजुरेल करेंगे। अब बात फुटबॉल की, जहां फीफा विश्व कप में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। मोरक्को के अशरफ हकीमी को एक गोल और एक असिस्ट के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं विनिसियस जूनियर के दो गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात देकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने में सफल रहा है।
1: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद प्रियंका। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है, टैरिफ की समय सीमा करीब पर अंतरिम समझौते पर असमंजस, अब रोकनी ही होगी जंग, शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, अमेरिकी संसद में ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध वोटिंग, 53 साल में पहली बार संसद में हारे राष्ट्रपति, देश बंधु की खबर है, कच्चे तेल की कीमत 4 महीने के निचले स्तर पर, अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार। दैनिक जागरण ने लिखा है, क्रूड के दाम में नरमी से सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा, -270 डिग्री पर धड़का भारत का क्वांटम सपना। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, अमरावती वैली की उपलब्धि, अब देश में ही क्वांटम तकनीक की पड़ताल। पत्र ने बताया है कि उस भविष्य की तैयारी है जहां ताकत का पैमाना चिप्स, डेटा सेंटर या सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटर हो गई। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को 1,15,00,000 चुकाने के लंदन हाईकोर्ट के फैसले को दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। अब झमाझम बारिश का दौर शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, मध्य प्रदेश पहुंचा मानसून, 3 दिन बाद रफ्तार पकड़ेगा, फिर 5 दिन पूरे देश में बरसेगा। अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, भारत के कुछ हिस्सों में हाल के दिनों में हुई बारिश ने भीषण गर्मी से फौरी तौर पर राहत बेशक दिलाई हो, लेकिन दुनिया भर में बढ़ता तापमान इशारा करता है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ एक देश या महाद्वीप की समस्या नहीं रह गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की, टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया, देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है, उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा, वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, कई इमारतें क्षतिग्रस्त और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यम समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reviews infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees at Pragati meeting, pushes for AI-driven TB elimination and stronger cyber fraud response. Samvidhan Hatya Divas being observed to pay homage to those who suffer during emergency. India-China border trade via Lipulekh Pass in Uttarakhand to resume after 6 years, 26 trade passes issued. U.S. federal judge bars Trump administration from implementing proof of citizenship requirement to vote. Powerful 7.5 magnitude earthquake hits Venezuela, causing collapse of multiple buildings. And in cricket, India to take on Bangladesh in Group A match of ICC Women's T20 World Cup in Manchester this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of Pragati, the

आप सुन रहे थे राजेश श्रीदेव और साथियों का गाया हल्बी लोकगीत। आकाशवाणी के चित्रपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं लोक मंजरी। अगला लोकगीत हम आपको सुना रहे हैं अमल साय और साथियों का गाया।

खालसाए और साथियों का गाया भद्री लोकगीत आप सुन रहे थे। अब सुनते हैं छत्तीसगढ़ी लोकगीत। गायक कलाकार हैं ममता चंद्राकर और साथी।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं मेघनाथ पटनायक और साथियों का गाया हल्बी लोकगीत।

मेघनाथ पटनायक और साथियों के गए सलवी लोकगीत के साथ ही लोकमंजरी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम पाटा वेनार। आज इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं ध्रुवी लोकगीत। गायक स्वर हैं बन सिंह कश्यप और

0: पाटा वेनार। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुना रहे थे बंसिंह कश्यप और साथियों के गाए ध्रुवी लोकगीत। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से भी सुन रहे हैं। सुबह के 9:30 हुए हैं।
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हा?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
3: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बबताइए। हमारा नंबर है 07782-222-666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज आपकी कहानी आपके खेतों की जुबानी।

और अब पेश है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, आज हम आपको लिए चलते हैं हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर की एक ऐसी संगीतमय यात्रा पर जिसने प्रेम, मित्रता और त्याग की भावनाओं को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में पर्दे पर उतारा। ये फिल्म है आई मिलन की बेला। ये फिल्म 1964 में प्रदर्शित हुई और इस फिल्म के निर्देशक हैं मोहन कुमार। इस फिल्म की सबसे बड़ी विशेषता इसका मधुर संगीत है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

फिल्म आई मिलन की बेला, इसमें राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र और सायरा बानो मुख्य भूमिकाओं में नजर आए। प्रेम त्रिकोण पर आधारित ये कहानी दर्शकों के दिलों को छू गई थी। इस फिल्म में नासिर हुसैन, शशिकला, सुलोचना और मदनपुरी ने भी

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है। श्रोताओं, आई मिलन की बेला उन फिल्मों में शामिल है जिन्हें दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया। इस फिल्म में तीन बड़े सितारे मुख्य भूमिकाओं में थे। ये वो समय था जब राजेंद्र कुमार को जुबली कुमार कहा जाता था, क्योंकि उनकी अधिकांश फिल्में सिल्वर और गोल्डन जुबली मनाते थे। वहीं धर्मेंद्र अपने करियर के शुरुआती दौर में थे और तेजी से लोकप्रियता हासिल कर रहे थे। सायरा बानो अपनी खूबसूरती और अदाकारी के कारण दर्शकों की पहली पसंद बन चुकी थी। फिल्म की कहानी दो मित्रों के इर्द गिर्द घूमती है, जिनके दोस्ती समय और परिस्थितियों की कठिन परीक्षाओं से गुजरती है। प्रेम और मित्रता के बीच उत्पन्न द्वंद्व को बड़ी संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया गया है। यही कारण है कि यह फिल्म केवल मनोरंजन ही नहीं करती, बल्कि मानवीय रिश्तों की गहराई को भी दर्शाती है।

श्रोताओं आइए अब बात करते हैं फिल्म आई मिलन की बेला के सबसे मजबूत पक्ष इसके संगीत की। फिल्म का संगीत दिया था हिंदी फिल्म संगीत के महान संगीतकारों की जोड़ी शंकर और जयकिशन ने। उस समय शंकर जयकिशन का नाम सफलता की गारंटी माना जाता था। गीत के बोल लिखे थे प्रसिद्ध गीतकार हसरत जयपुरी और शैलेंद्र ने और इन गीतों को अपनी मधुर आवाज से सजाया मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और अन्य गायकों ने। आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया ये गीत।

श्रोताओं, आई मिलन की बेला उस दौर की उन फिल्मों से है जहां कहानी, अभिनय, संगीत और भावनाएं एक साथ मिलकर दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ती है। आज भी जब हम इन गीतों को सुनते हैं तो यादों की सुनहरी दुनिया में खो जाते हैं।

0: एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम अभी आपकी सेवा में आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रसारित किया गया। इसमें हम आपको सुनवा रहे थे फिल्म आई मिलन की बेला के गीत। सुबह के 9:55 होने को हैं। अब प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में बहुमंजिला भवनों, कोचिंग संस्थानों, होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ऑडिट कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव रखा और अगले 1-2 दिनों में उत्तर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुमंजिला भवनों, कोचिंग संस्थानों, होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को राज्यभर में अग्नि सुरक्षा, भवन सुरक्षा और आपातकालीन

व्यवस्थाओं की जांच कराने को कहा है। सभी जिलों में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। इसमें फायर एनओसी, अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन निकास, विद्युत व्यवस्था और भवन की सुरक्षा जांची जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर छत्तीसगढ़, विशेषकर बस्तर क्षेत्र के विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की। इस दौरान उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि बस्तर में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और संचार सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है तथा हमारी सरकार सेवाएं लोगों तक पहुंचा रही है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर विकास और पर्यटन के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने राज्य को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। देशभर में आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। यह दिन उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सहित देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इस दिन को भारतीय लोकतंत्र का काला दिवस बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान को पुनर्स्थापित किया है। इससे पहले कल भारतीय जनता पार्टी की रायपुर जिला इकाई ने आपातकाल के विरोध में मौन जुलूस निकाला। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। क्षेत्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 20 केंद्रीय विद्यालयों में छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का पीएमसी केंद्रीय विद्यालय भी शामिल है। राजनांदगांव में राज्य कर विभाग ने फर्जी बिलिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मेसर्स आदेश्वर ट्रेड लिंक के संचालक आदेश्वर चौरड़िया को गिरफ्तार किया है। जांच में करीब 76 करोड़ रुपए के कागजी लेनदेन और 8 करोड़ 22 लाख रुपए के संदिग्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट का मामला सामने आया है। विभाग के अनुसार फर्म ने बिना वास्तविक खरीदी के फर्जी बिलों के माध्यम से कर लाभ लेने का प्रयास किया। मामले में अन्य लोगों और फर्मों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं। वहीं एक दो स्थानों पर भारी वर्षा और गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया और सूरजपुर जिले को छोड़कर दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश के सभी जिलों में पहुंच चुका है। उन्होंने बताया कि अगले एक दो दिनों में उत्तर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित अपेक्स बैंक की बरमकिला शाखा में 18 करोड़ 13 लाख रुपए के गबन के मामले में बैंक प्रबंधन ने कार्रवाई करते हुए 8 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। इस मामले की जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू करेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में बहुमंजिला भवनों, कोचिंग संस्थानों, होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ऑडिट कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव रखा और अगले एक दो दिनों में उत्तर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में मानसून के सक्रिय होने की संभावना। इसी के

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी

आप सुन रहे थे फिल्म आंधी का ये गीत। आवाजें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, बोल गुलजार के थे और तर्ज बनाई थी आरटी बर्मन ने। ये गीत राग यमन में निबद्ध था। अब हम आपको सुनवाते हैं राग भैरवी में बांधा गया ये गीत। सुबह गाए जाने वाले इस राग का प्रयोग भक्ति, विदाई और दर्द भरे गीतों में होता है। इसी राग में अब हम आपको सुना रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में चित्रलेखा फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं साहिर, संगीतकार रोशन।

फिल्म चित्रलेखा का ये गीत आप सुन रहे थे। गुलशन कार्यक्रम में हम आपको सुना रहे हैं शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गाने। महबूबा ये है फिल्म का नाम, आनंद बख्शी की रचना। इस गीत को संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने, स्वर किशोर कुमार का है, राग शिवरंजनी में ये गीत निबद्ध है। ये राग दिल की गहराइयों को छू लेने वाले और उदासी भरे गीतों के लिए जाना जाता है।

भूपेंद्र और लता मंगेशकर की आवाजों में आइए सुनते हैं गुलजार का कलाम। मौसिकार है मदन मोहन, फिल्म का नाम है मौसम। राग दरबारी में इस गीत को बांधा गया है। हम आपको बता दें कि इस राग का उपयोग रात के समय किया जाता है और गजलों और नज्मों के लिए इस राग का उपयोग हुआ है।

राग बागेश्री में निबद्ध फिल्म कुदरत का नगमा अब पेश है किशोर कुमार की आवाज में। तर्ज बनी है आर डी बर्मन ने और इस गीत को लिखा है मजरूह ने।

राग बागेश्वर में निबद्ध फिल्म कुदरत का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। कार्यक्रम के अंत में ये सुनते हैं राग मल्हार में बांधा गया ये नगमा। शब्द आनंद बख्शी के हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, स्वर लता मंगेशकर और मुकेश के हैं और फिल्म का नाम है मिलन।

0: रे शोर,
1: पवन सारे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन

0: लता मंगेशकर और मुकेश के गए फिल्म विलन के इस गीत के साथ ही गुलशन कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुना रहे थे शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गाने। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी जगदलपुर से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 हुए हैं।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेतनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेतनाड सीमेंट,

0: and a choice.
1: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जबलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
2: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए लोकगीतों का कार्यक्रम गुड़दुम। आज इसमें हम आपको सुना रहे हैं मांगुराम और साथियों के गाए ध्रुवी लोकगीत।

0: गुरदुम कार्यक्रम में आप सुन रहे थे महंगू राम और साथियों के गाए ध्रुवी गीत। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
6: अनजान ऐप से बचें।
7: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782-222-666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
0: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से अब पेश है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

श्रोताओ, आज बात संगीत के उस जादूगर की जिनकी बनाई अमर धुनों ने ना जाने कितने संगीत प्रेमियों के दिलों में जान फूंक दी। उनके हिस्से में जो भी शब्द आए, इनकी बनाई धुनों की चाशनी में पककर वो बन गए नायाब मीठे एहसास। जी हाँ, आज उस सुप्रसिद्ध संगीतकार का जन्मदिन है जिनके संगीत से सजे गीत महफिलों की शान है। गीत जो फिजा में गूंजे तो

फिल्मों में आने से पहले मदन मोहन साहब सेना में थे, लेकिन म्यूजिक के प्रति गहरे लगाव ने उन्हें ऑल इंडिया रेडियो से जोड़ा। अपने इस गहरे शौक के जुनून से बंधे मदन मोहन साहब 1945 में आ गए सपनों की नगरी मुंबई। इस बीच उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में कार्यक्रम सहायक के रूप में भी काम किया। संगीत रचना की बुनियाद यहीं पड़ी। पहला ब्रेक मिला फिल्म दो भाई में, जो 1948 में बनी थी। इस फिल्म के मुख्य संगीत निर्देशक थे एस डी बर्मन साहब और मदन मोहन ने इसमें संगीत सहायक के तौर पर काम किया था। वैसे एक स्वतंत्र संगीतकार के रूप में उनकी पहली फिल्म थी सन 1950 की फिल्म आंखें। मदन मोहन साहब के संगीत हैं, खासकर लता जी के गाए गीत जहां भी गूंजते हैं तो जानने वाले दूर से पहचान जाते हैं कि फिजा में गूंजती ये धुन मदन मोहन साहब के संगीत निर्देशन में ही बनी है।

हम जानते हैं कि संगीत ऐसा क्षेत्र है जहां शास्त्रीय संगीत की जानकारी होना या संगीत का विधिवत प्रशिक्षण लेना बहुत जरूरी होता है। लेकिन प्रख्यात गायक किशोर कुमार की तरह इस चोटी के संगीत मर्मज्ञ मदन मोहन ने भी संगीत सीखा नहीं, बस संगीत की दीवानगी ने, इसके प्रति समर्पण ने उन्हें बना दिया सुप्रसिद्ध संगीतकार। वे स्वयं भी एक बेहतरीन गायक थे, जिसकी वानगी हम देख सुन चुके हैं फिल्म दस्तक में, जिसका गीत उन्होंने स्वयं गाया था। गीत था ये।

स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी के साथ गजलों पर मदन मोहन ने खूब काम किया और डूब कर किया। इसी जुनून का ही असर है शायद, जो लता जी की गाई और मदन मोहन साहब द्वारा संगीतबद्ध गजलों ने एक स्वर्णिम इतिहास रचा। शायद इसीलिए उन्हें गजलों का राजा कहा जाता है। सन 1950 से लेकर 1975 तक का दौर ऐसा ही था जब मदन मोहन ने एक से बढ़कर एक गजलों को अपनी धुनों से नवाजा, और जब उनमें लता जी की आवाज़ की चाशनी लिपटी तो मानो सुनने वालों के कानों में मिश्री सी घुल गई।

आनंदातिरेक से विभोर हो जाता है। आंखें अपने आप मुंद जाती हैं और मन भावनाओं की किसी और दुनिया में चला जाता है, और ऐसी भावनाओं का विश्लेषण भला कोई क्या ही करेगा, ये तो बस एहसास है। उनके संगीत, उनके गीत प्ले करो और खो जाओ एक अलग ही दुनिया में, और उसमें कैफ़े आज़मी साहब की कलम का कमाल हो, फिर तो कहना ही क्या।

कुछ नाम मदन मोहन के संगीतबद्ध दस्तक, मौसम, मेरा साया, अनपढ़, लैला मजनू, आँखें, अदा, मदहोश, आशियाना, संजोग, जहां आरा, हकीकत, गज़ल, शराबी, चिराग, बावर्ची, परवाना और उनकी अंतिम फिल्म साहब बहादुर।

अपने 25 वर्षों के संगीत के करियर में मदन मोहन ने 100 से भी ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया, और गीतों की बात करें तो आपने 700 से ज्यादा गीतों को अपनी धुनों से अमर कर दिया। और धुनें ऐसी कि क्या नए श्रोता और क्या पुरानी, सभी ने उनकी धुनों को, उनकी गीतों को, उनके संगीत को सजता किया। इन गीतों का असर ना पूछिए। मोहब्बत के गीत दिलों को जहां रूमानियत के चरम पर ले गए, तो दर्द भरे गीतों ने दिलों की नाजुक रगों को भी तोड़ा।

संगीत की ऐसी बेशकीमती मिल्कियत हमें सौंप कर मदन साहब केवल 51 वर्ष की आयु में हम सबसे बिछड़कर दूसरी दुनिया में चले गए और हमारे लिए छोड़ गए कभी ख़त्म ना होने वाला उनके संगीत का जादुई एहसास। अपने रहते उन्होंने कुछ धुनें बनाई थीं जो उनके निधन के कई वर्षों बाद फिल्म वीर ज़ारा के गीतों में प्रयोग हुए और एक बार फिर हमने उन गीतों में उनकी उपस्थिति महसूस की।

साहब ने अपनी ये जिम्मेदारी भी शिद्दत से निभाई। वे चल पड़े उस ओर जहां उन जैसे नायाब कलाकार की ज़रूरत थी। चल पड़े वे हमें वीरां और मायूस छोड़कर।

0: ये था आज का कार्यक्रम एक ही कलाकार, जो केंद्रित था मशहूर संगीतकार मदन मोहन साहब पर। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
1: इस अभियान का नारा, टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात। ना शर्माना, ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं।
2: हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा।
1: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप,
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है, जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
5: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
6: सुनो ना,
7: हाँ?
6: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
7: तो रोका किसने है? हाँ?
6: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
7: मुझसे?
6: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
7: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
6: पर उससे मेरा क्या फायदा?
7: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
6: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
7: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
6: ओ, 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
0: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से अब पेश है गीतो गजल का प्रोग्राम गुलदस्ता। प्रोग्राम का आगाज करते हैं अभिजीत के गाए इस गीत के साथ।

गीत और गज़ल का प्रोग्राम गुलदस्ता आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से। अगली पेशकश जावेद अख्तर की रचना, अलका याग्निक और ए हरिहरन की आवाज़ें हैं, संगीत दिया है राजू सिंह ने।

और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। देश भर में आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। प्रदेश में बहुमंजिला भवनों, कोचिंग संस्थानों, होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ऑडिट कराया जाएगा और पल्स पोलियो अभियान के तहत 28 जून को प्रदेश में 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। यह दिन उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इस दिन को भारतीय लोकतंत्र का काला दिवस बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान को पुनर्स्थापित किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुमंजिला भवनों, कोचिंग संस्थानों, होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को राज्यभर में अग्नि सुरक्षा, भवन सुरक्षा और आपातकालीन व्यवस्थाओं की जांच कराने को कहा है। सभी जिलों में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। इसमें फायर एनओसी, अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन निकास, विद्युत व्यवस्था और भवन की सुरक्षा की जांच की जाएगी। पल्स पोलियो अभियान के तहत 28 जून को प्रदेश में 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। वहीं छूटे हुए बच्चों को 29 और 30 जून को मॉपअप अभियान के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता और मितानिन घर घर जाकर दवा पिलाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे 28 जून को अपने नजदीकी पोलियो बूथ पर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा अवश्य पिलाएं। छत्तीसगढ़ में 29 जून से 6 जुलाई तक सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा। राज्य के सभी जिलों, विकासखंडों और सहकारी समितियों में कार्यक्रम

0: में आयोजित किए जाएंगे। सहकारिता सप्ताह के दौरान जागरूकता, जनभागीदारी और नवाचार पर विशेष फोकस रहेगा। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से ली गई विशेष भेंट वार्ता का प्रसारण आकाशवाणी द्वारा कल 26 जून को किया जाएगा। यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे से 10:25 तक प्रसारित होगा। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा तैयार इस कार्यक्रम का प्रसारण छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्रों से किया जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में निपनिया भाटापारा सेक्शन में अंडरब्रिज निर्माण कार्य के तहत रिलीविंग गर्डर डीलॉन्चिंग का काम किया जाएगा। इसके चलते 25 जून से 29 जून तक कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन ने 10 ट्रेनों को रद्द करने के साथ ही 3 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित अपेक्स बैंक की बरमकिला शाखा में 18,13,00,000 रुपए के गबन के मामले में बैंक प्रबंधन ने कार्रवाई करते हुए 8 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। बैंक प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि गबन में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों से नियमानुसार राशि की वसूली की जाएगी। इस मामले की जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू करेगी। बलरामपुर जिले के सहकारी बैंक घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने जांच शुरू कर दी है। करीब 30,51,00,000 रुपए की वित्तीय अनियमितताओं की जांच की जा रही है। मामले में 500 किसानों की शिकायतें आधार बनी है। जांच के दायरे में शंकरगढ़, कुसमी और रामानुजगंज की सहकारी बैंक शाखाएं शामिल हैं। ईडी वित्तीय लेन देन और ऋण वितरण से जुड़े दस्तावेजों की जांच करेगा। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मत्स्य विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना PMMKSSY के तहत आज रायपुर में जल कृषि बीमा जाएगा और रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत भिलाई के सिरसा अंडर ब्रिज में मरम्मत कार्य की वजह से 1 अगस्त तक आवाजाही बंद रहेगी। राजधानी रायपुर के सेजबार स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में आज दोपहर 3 बजे तक संभाग स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें निजी प्रतिष्ठानों द्वारा 900 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। प्रदेश में बहुमंजिला भवनों, कोचिंग संस्थानों, होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ऑडिट कराया जाएगा और पल्स पोलियो अभियान के तहत 28 जून को प्रदेश में 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला और कलाकार।

जुहार जुहार, रेडियो कार्यक्रम कला और कलाकार सुन तो सब पाए दादा दीदी और संगवारी के मन की चो जुहार। तुम जो संगे भेंट हो तो काजे मैं बाट दखते रुए दादा दीदी कि केबे समय होए दे और मैं आप लोग गोट के दादा दीदी लग अमराएं दे, खूबे गोठियाएं दे और गीत गोविंद सुनाएं दे तो मैं अमर ले आले गोट के मुर करूं। दादा दीदी तुमके सुरता से आमी पिला बेरा कहनी सुन तो काजे कितरो हरिक होते रहू ने। आमचो आई दादी के सियान सजन के कहनी सुनोक बलूँ और कितरो सुंदर कहनी के सुनूँ और सीखूँ। कहनी ने काय होली इधाएँ काय होए दे, हे भगवान उन फलना के असन नहीं कर तो रली, असन विचार करुन करुन आमी हुन कहनी के सुनते रलू। तो दादा दीदी कहनी के जो सांग तो कला है नी, हुन भले खूब बड़े कला है कितरो पर

चार जो लोग रसोत जेचो लगेनी आप लोग गोट के बल तो असन कला रहे से कि हुनके जो न सुन तो लोग आतनी हुन थाने बंधन रहसोत असन गोठ्यावाद की नी लोग मन जो मन के मोहन जावाद। देखा आमी बलून से कि जो न गोट गोठ्या तो राय नी ये ता कोनी मसागत नी लागे मानतर आप लोग गोठ ले लोग मन जो मन के भेतोर कला आए नी कोनी नानी कला नू आए ये चो काजेवल कितरो अभ्यास करूक लागे से। और आमचो जो ने कला आए जो कहानी सांगतोर ये आमचो परंपरा आए ये पीढ़ी पीढ़ी ले आमचो गाँव मन ने कहानी सांगतो चो परंपरा आए। जेबनी दादा दीदी कागज पेन बल नी रली नी हुन चो पहिल समयाले आमचो लोक कथा गोटोक पीढ़ी ले दूसर पीढ़ी तक जीवता आसे। जसन गोटोक राजा रहे और गोटोक रानी रली और गोटोक रान रहे हुन थाने बाघ भालू रला असन किसन किसम चो आमी कहनी के सुनलो से। पिला मन तो नी कहनी के सुनलो बिना भात बल नी खाओ तर सोहत बल नाई और कहनी होले नी हुन मन कितरो लेख करुन भाती उन कहनी के सुनवात। और दादा दीदी मैं तुमके सांगेन से कि हुनी काजे तो स्कूल चो पढ़ाई ने बले नी कहनी मन रहे से जे चो लेनी पिला मन नी मन दिउन भाती पढ़सोत और हुनके नी ज्ञान के धरसोत। दादा दीदी आमचो जो न कहनी सांगतो कला आए नी हुन कहनी सुनतो लोग के कहनी चो माध्यम लेनी मनोरंजन दिवाए। जसन पहिल समय बेरा तो ना टीवी रली और ना मोबाइल रली फेर बले हरी कुदिम काजे कहनी सुनातो लोक परंपरा रली और फिर कहनी के सुन ले आम के हरिक बल लागे ने मानतर। दादा दीदी आजी नी ये कला हाजे से बल्लो ने ये आए कि आजी कहनी बल तो लोग कहनी के सांग तो लोग दखा नहीं देत और ना ही कहनी के सुन तो लोग दखा दे सोत। आजी लोग बाग मन ने आप लोग जीवना ने इतरो मत भूल होला सोत कि ये सब के नी भूलकुन गेला सोत। तू चाहे मोबाइल और टीवी ने नी दिन रात चिपकुन रसोत बल्लो ने मोबाइल दखसोत सो तो बेरा टीवी दखसोत असनी दखसोत कहनी के पीला मन के सांग तोर कहनी सुन तोर कहनी ले ज्ञान धर तोर ये सब आए नी हाजुन गेली से। और दादा दीदी जोन रस नी आमचो लोग कहनी ने आसे नी हुन रस ये मोबाइल टीवी ने नी आए कहनी सांग तोर मनोरंजन चो साधन संगे संगे नी आमचो संस्कृति चो आत्मा आए। देखा जेब आमचो पीला मन के आमचो पुरवानी लोग चो गाँव चो और आप लोग माटी चो कहनी के नी सांगुन दे तो हुन मन आमचो एतो पीढ़ी आमचो परंपरा के कसन जान दे और आप लोग जड़ के कसन चिता दे। तो दादा दीदी कहनी सांग तो चो लोक परंपरा जीवता रह लेनी आमचो भाषा बोली जीवता रहे से आमचो संस्कृति आमचो परंपरा और सभ्यता बले जीवता रहे से। अब दादा दीदी इतरो नंगत गोट तो कर लूँ ने इतरो नंगत गोट संगे संगे गीत बाजती तो और नंगत लागती ने तो दादा दीदी गीत सुनवा आले सुनू ते बे शिवराम नाग और हुंचो संगवारी मंचो गालो ये काय सुंदर बस्तरिया हल भी गीत सुनू।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
3: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
2: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
3: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
2: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
3: क्यों?
2: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
4: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
5: इत बदले मत्तांक अच्छा मानेड़ा इलाज चुडून सस्ता आता सेंगेन वेटरनरी सर्जिकल जाकी और सामान किन मोलवेंट कम मत्तांक

0: ನವರ್ಕಿನ್ ಇಲಾಜ್ ತಗವೆಂಡ್ ರಾಹತ್ ದೊರ್ಕನದು ಉಮ್ಮಿದ್ ಮಿಂದೆ ಇವು ಪೂನಾ ಮೋಲತೆ ಗ್ರಾಹಕ್ ಲೋರ್ಕ್ ಅವ್ರ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಲೋರ್ಕ್ ಫಾಯ್ದಾ ದೊರ್ಕಿತ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ತ ಕೊಂಡೆ ಪೂನಾ ಮೋಲಾ 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ದಿನ ಲಾಗು ಆಯನದ ಮಿಂದೆ
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
2: 870-001-4242।
3: तो दादा दीदी, कला का एक प्रकार जो रहस्य ने और आमी रोजे कला हुनर चो गोट के करुन से के भई सिनेमा कला चो तो के भई गीत गाओ तो कला के भई नाचा कला तो के भई चित्र कला बल्लो ने रंग रंग चो कला चो गोट के गोठ्याउन से ने तो उसनी आजी मैं धरुन अमरले से आजी चो कलाकार भित्रे गोटोक असन कलाकार जे चो कला भारत देश ने सबले प्रसिद्ध आसे देश दुनिया ने बले खूब्बे नाव कमाला सोत और ये कलाकार आत मकबूल फिदा हुसैन जेकिनी भारत चो पिकासो बले बलुआत ये भारत चो आधुनिक चित्रकार माने चित्रकला चो कलाकार आत तो आलिया ए मन चो कला जीवना के विस्तार ले जानो। महाराष्ट्र राज चो जोन पंडरपुर गांव आयनी हुन थाने 17 दिसंबर बरख 1915 ने मकबूल फिदा हुसैन चो जन्म होली। मकबूल जेबनी 1.5 बरस चो रलानी ते भुंचो आया बीती संसार छाणला तो जीवन भर माय चो कमी रली ने हुन माय चो कमी महसूस करला तो यही कारण ने नी आप लोग कला ने हुन महिला मन काजे हुन महिला चो रूप महिला मन चो भावना शक्ति के ने खूब गहराई ले दखाला। फिर मकबूल चो जोन बाबा बीता रहोतनी हुन चो संगे मकबूल इंदौर चो शहरे अमरला। मकबूल चो जोन मन आयनी हुन पढ़ाई ले आगरनी रंग ने रली हुननी हमेशा कोनी कागज थाने के वही भीति थाने काई बल मिरलेनी हुन थाने चित्रकारी करो बल्लो ने जन चित्र चो रंग आयनी हुन चो जीवनाने रंगुन जाऊ रहे हुनकी इत्रो हरिक लागे कि जे दखले हुन चित्रकारी करूँ मुर्याउन देवत। तो मकबूल चो बाबा नी आप लो बेटा चो ये कला के चिताला और बल्ला बेटा इत्रो कला थाने मन लगाए से तो एक सीख तो काजे कोनी बाट तो पठौक लागे दे ने तो बेटा चित्रकला के नगत सीखो पड़ते नी हुंचो बाबा नी मुंबई चोनी गोटक मशहूर स्कूल आए जेचो नाव आए जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स ये थाने सीख तो काजे पठाला। फिर उतर जाऊन फिर काय तो मकबूल हुसैन सीखला फिर हुन पाछे पाछे खूबे बरख पाछे फिर हुनके बड़े बड़े सिनेमा चुजन पोस्टर होर्डिंग पेंट कर तो काजे हुन मूर करला। और दादी दी जेबनी भारत आजाद होते रली नी हुन समया भारतीय कला जगत चो आजादी चो लहर बले उठली। मकबूल हुसैन फ्रांसिस न्यूटन सूजा और एस एच रजा जसन आधुनिक कलाकार संगे मिलुन भातिनी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट समूह चो स्थापना करला और ये समूह चो काय उद्देश्य रली कि भारतीय कला के अंतर्राष्ट्रीय स्तर ने अमरातोर बल्लो ने आम चो जन भारत चो कला है उनके देश विदेश ने अमरातोर और जो संगे संगे आप लो जड़ ने जुड़ून भाती बूता करतो रहे आप लो जड़ के हाजुक नहीं देतो रहे। मकबूल हुसैन चो कला ने असन ऊर्जा रली कि नहीं दखतो लोग मन के भेदे असन सुंदर चित्रकारी के दखुन्नी लोग बाग बले खूबे सहरावत और हुनचो मान सम्मान करो। और दादा दीदी जेबनी जो हुसैन आए हुनचो कला चो में गोठ करुन से तो हुनचो घोड़ा बीती चित्रकला के कसन भूल हुआ तो दादा दीदी जेबनी हुन घोड़ा बीती चित्रकला बनावतनी तो हुन सोचे घोड़ा के जनावर महानी दखाओ हुन घोड़ा के असन हुन चो चित्र बनाओ कि घोड़ा चो चित्र दखले लोग के हुन घोड़ा चो चित्र ने शक्ति गति आज़ादी और ऊर्जा दखा देओ। भारतीय संस्कृति के नी हुसैन ने खुदे मानते रहोत रामायण महाभारत और सूफी परंपरा के नी आप लो चित्रकारी ने जीवता दखाला चित्रकारी असन बनाओत कि नी दखले जीवता लागे। और फिर ये हुसैन चो जो सिनेमा का जो मया हूँ तो पीला बिराल रली तो सिनेमा ले हुसैन के खूबे लगाव रली हूँ चो काजे हूँ खूबे हूँ थाने बुतावल करला। दादी दी हुसैन चो जो अद्भुत कला काजे नी भारत सरकार बाटले हुनके खूबे मान सम्मान मिलली। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जसन सर्वोच्च नागरिक सम्मान बले पावला और ये राज्यसभा चो मनोनीत सदस्य बले रला। मानतर दादा दीदी गोटुक महान कलाकार चो जीवनानी के भाई इतरो सीधा और नी आसान नी रहे, कितरो मसागत करुक पड़े से तेबे तो आप लोग कला लेहुन कलाकार बन सो। आम चो आजकल चो जो नुआ पीढ़ी आए नी ये कलाकार मन के हुतरो नी जानोत, हुनी काजे तो आमी आप लोग कला और कलाकार कार्यक्रम भीतरे असन जोन कलाकार आत हुन मंचो गोट के आमी आमचो दादा दीदी लग अमराउन से नुआ कलाकार भाई बहन लगे अमराउन से ताकि हुन मन एक गोट के सुनोत, हुनचो मसागत के सुनोत और आप लोग कला ने बाढ़ती करोत। तो इतरो सुंदर सुंदर गोट के आमी सुन लो दादा दीदी ने अब अरे हमचो लग समयावला से और जीव करे से गीत गोविंद होती तो और हरिक लागती तो फिर काय काजे टाकुआ था तो गीत सुनू। तो ये छत्तीसगढ़ी गीत आए ये चो गीत कुरिया आत नवीन मरकाम और हुंचो संगवारी मन तो आलिया ये काय सुंदर गीत के सुनू।

0: ये वो भी ऐप से, वाह।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाड एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 बजे ले 4 बजे तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए

0: 07782222666। फोन इन किसानवाणी, आपन मंचो सवाल, आपन मंचो कहानी, खेती बाड़ी चो जुबानी, आकाशवाणी जगदलपुर ने।
1: दादा दीदी, जब हमी गीत गोविंद सुनुआ तो मन के कितरो हरिक लागू है, और आमी आमचो मन हरिक रहे से तो आमचो देह पाए बले नंगत रहे से। तो मचो दादा दीदी, मनचो देह पाए नंगत रहो और मन हरिक रहो बलते गोटो गीत आउरा से। ये आए रामलाल और हुंचो संगवारी मंचो गालो का आए सुंदर गीत, तो आले या ये गीत के सुनू।

देखते रहा तो जहाँ तो पूरे कार्यक्रम कला और कलाकार सुन तो मचो सब पाए दादा दीदी के मन की चो जुहा।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम कला और कलाकार, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दिन के 12:30 हुए हैं। अब सुनिए ग्रामीण महिलाओं का अपना कार्यक्रम घर द्वार।

जुहार जुहार रेडियो कार्यक्रम घर द्वार सुनतो सब पाए माए माता मन के सियानिन दीदी भौजी और संग जोहरिया बहिन लोग के मैं तुम चो बहिन मन की करन से खुब्बे खुब्बे जुहार। बहिन मन पेज बेरा चो सब पाए बुता के निपटौन भाती रांदा बाड़ा ले फुर्सत हूँ तुम्ही रेडियो लगे उमरलास ने तो मैं भले आप लोग ज्ञान ध्यान चो गोट के धरुन भाती अमरले से। बहिन मन आज ही आमी आप लोग पीला जिला के कितरो माया दुलार करूँ से ने बेटा हो नहाले फिर बेटी हो आमी भेद नहीं करूँ। और बहन मन बेटी मन तो घर चो हरी कुदी मात बेटी मन चो जोन पैड़ी आई नहीं हुंचो छुनुक छुनुक नहीं सब पाए घरे चहक रहे से ने। तो बहन मन आज ही मैं नहीं बेटी मन चो गोट के सांगेन से मैं भले बेटी आए और तुम्हें बल तो बेटी हास। तो बहन मन शिक्षा तो सब लोग काजे खूब जरूरी है तुम्हें जान सास जी लेका और लेकी चो पढ़ाई ले हुन मन चो जीवना ने बारती होए से और बिना पढ़ा लिखा होले आज चो जुग ने नी हाजुक होए दे। तुम्हें तो सुनला सास जी बे कि गोटोक लेका पढ़े दे तो गोटोक परिवार चो बारती होए दे मानतर गोटोक लेकी पढ़े दे तो दूठन परिवार चो बारती होए दे और ये सत्य गोट बला है। लोग बाग नी असन विचार करुआत कि बेटी के पढ़ा लिखा करूँ काय करुआ ने दूसर घरे बिया हुन जावा है और हुताचो घर गृहस्थी के दखुआ है मानतर दादा दी ए नो आए मानतर जुग बदल ली से आजी बेटी तुचाए नी घरे नी रहे उन्नी सपा क्षेत्र ने बारती करे से। बहन मन तुम्हें तो दक्षास जी कि पढ़ाई लिखाई नी आम लेकी मेहरान मन काजे खूब जरूरी है और बेटी जब पढ़े दे तो खुद चो बारती करे दे संगे संगे नी आप लो परिवार चो बारती करुन भाती मान भले बढ़ाए दे। विचार करा तुम चो बेटी पढ़ा लिखा रले तो पहल फायदा काके मिरे दे विचार करा। हाँ बेटी के फायदा मिरे दे संगे संगे हुन चो घर परिवार चो लोग के बले नी हुन फायदा मिरे दे। देखा पहल फायदा का है सेहत और समझदारी चो बल्लो ने देह पाए चो दखा रखा और सूझबूझ चो जसन गोटुक लेकी मेहरार पढ़ा लिखा रले हुंचो पीला जिला के किए बे कसन टीकाकरण करते राय बेमार हजार बेरा डॉक्टर लग जाते राय कसन दवाई के देते राय ने और बल बप्पू काजे कसन खान पान करते राय दखा रखा करते राय इस सपाए गोट के हुन पढ़ा लिखा रले जाने दे। बल्लो ने असन समया बेरा हुन के दूसर लगे हाथ पाए फैलाओ नहीं पड़े दे और दूसर फायदा

0: लगाए हुए से खेती बाड़ी ने जसन हुन पढ़ा लिखा ले किया है तो हुनके पता रहे दे कि कसन बेड़ा ने बीज दे तो राय कसन खतो खत दे तो राय और कल मशीन जो जानकारी बल हुन जो लग रहे दे तो खेती कमानी ने लाभ हो दे। और जे जो घरे बेटी बुआरी पढ़ा लिखा रह लेनी हुन मन घरे को नी सरकारी उवाट जो गोट हो दे बैंक जो कागज पत्र हो दे सब पाए बुता के नी हुन काय सुंदर ले करे दे और कहीं परेशानी बल नहीं हो दे। और तीसर फायदा काय हो दे स्वरोजगार मूर करतो जो फायदा देखा पढ़ा लिखा रह लेनी लागू है कि चार आठना हुन कमाओ तो हम जो बेटी मन जब पढ़ा लिखा रह दे तो हुन मन स्वरोजगार मूर कर दे हुन मन लगे काई हुनर आसे तो हुनके नी हुन मन बाढ़ती कर दे हुन चोले और पढ़ा लिखा रह तो नीहे चो काजे खूबे जरूरी है। बेटी मन के आप लोग पाए ने ठिया हुन आत्मनिर्भर बन तोर बले खूबे जरूरी है। आज ही कल युग के तो तुम्हें जान सासी कौन केप समय तक साथ दे दे जानुक नहीं हुए तो जेब आम चो बेटी पढ़ा लिखा रह दे शिक्षित रह देनी तो भविष्य ने ए तो समय ने हुनके करुण खातो चो हिम्मत रह दे हुनके डरुक नहीं पड़े दे मैं पढ़ा लिखा होले से मैं चौया बाबा मख पढ़ाला सोत मैं ये बुता के करुक सके ये जीव ना के मैं नंगत ले जीव सके हुन असन विचार करे दे और पढ़ा लिखा नहीं रह ले हुनके कसन लागे दे हिम्मत हार लो महा लागे दे हिनस्ता महा लागे दे मुरुस नाय गोटो कोना ने बसु रह दे तो तुम मन तो असन नहीं चाह सास कि तुम जो बेटी संगे असन हो। तो बहन दादा दीदी बहन मन जे भी तुम्हें दक्षा सी कि आमचो देश दुनिया ने बेटी मन कितरो नाव कमासोत के भी पुलिस डॉक्टर कोनी बड़े बड़े अधिकारी स्कूल चो मास्टरिन राजनीति ने आसोत और कितरो बहन मन तो खेलकूद ने आसोत जसन क्रिकेट बैडमिंटन शतरंज रंग रंग चो खेलकूद ने आमचो देश चो बारती करसोत। बल्लो ने बहन मन आमचो बेटी मन सब पाए क्षेत्र ने नी आप लो मसागत ले मान सम्मान पावसोत। देखा बहन मन पहिल जुग चो नी गोड़ दूसर रली लोग उतरो जानकार नहीं रला तो बेटी मन काजे इतरो फिकर नहीं करते रला ने मानतर एदाय समय बदल ली। आज ये बेटी के उड़तो काजे नी हिम्मत और साथ दे तो खूब जरूरी है। और सरकार बल बल तो बेटी मन काजे कितरो नंगत नंगत उवाट मन के आन ली से हुन मन शिक्षित होत पढ़ा लिखा होत बलते हुन चो काजे मुफत ने किताब पढ़ाई साइकिल मिले से और फिर पैसा मिले से उनके छात्रवृत्ति पैसा बलुआत तो नहीं बस नहीं आम के आप लोग बेटी के नहीं स्कूल तक के अमरात रहे बाकी काम नहीं सरकार करूँ है। आम के आप लोग बेटी के पढ़ा तो काजे अब पैसा चो कहीं दूसर फिक्र करुक नहीं लागे सरकार इतर सहायता दे से खाली आम के मन बनात रहा है कि आम चो बेटी पढ़े दे और आगे बढ़े दे आप लोग संगे संगे नहीं आप लोग घर परिवार चो देश दुनिया चो गांव पारा चो नाव के रोशन करे दे। तो बहन मन घर द्वार ने हरी कुदीम ए दे जे बेटी पढ़ून लिखून बारती करे दे इतरो सुंदर गोट के आमी गोठ्यालू बहन मन ए तो संग संग गोटोक नंगत गोट आसे ये गोट के बले आले सुनो।
1: तो बेड़किन बिड़िया राहत तिंदनत उंडना सामान तलाय दरकता डबल रोटी आरी और छेना पनीर असित के इंजे जीएसटी लगे मायो इदेन संगेन 33 जरूरी दवाई नद मोला वेंट कम की सित तोड़ अदेन के इलाज तलाय खर्चा वेंट कम लगे माता जीवन बीमा तग वेंट इंजे जीएसटी छूट दरकिता अदेन के पॉलिसी पोइतनत इंजे सस्ता आंता सुडला कार गाड़ी और 350 सीसी ता कोटरू गाड़ी ता पर्रो 28% जीएसटी मत्ता अद कम मास इंजे 18% अत्ता इदेन मतलब इद की इंजे गाड़ी कोटरू गाड़ी असित के सस्ता दोर की ता।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाएं रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़ लो सपाए समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे और हाँ

0: कार्यक्रम जो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौपहार 3:30 से 4 बजे तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आम चो फोन नंबर आए 07782222666। फोन इन किसानवाणी, आपन मन चो सवाल, आपन मन चो कहानी, खेती बाड़ी चो जुबानी, आकाशवाणी जगदलपुर ने।
1: जीएसटी चो दर के कम करलो ने सोझे मनुख जीव चो इलाज खंडिक सस्ता नहीं होली से, बल्कि जानवर मन चो इलाज बोले सस्ता हो तो भरसा आसे। जीएसटी ले वेटनरी सर्जिकल चो सामान सस्ता होली से, नुआ कीमत ले सामान बना तो लोग और घेन तो लोग दोनों के लाभ मिले दे। ये नुआ जीएसटी दर 22 सितंबर 2025 ले लागू हो दे।
2: तो बहिन मन, आमचो घर द्वार कार्यक्रम भित्रे आम्ही तुमचो काजे नंगत नंगत गोठ, ज्ञान ध्यान चो गोठ, असन गोठ के आनंद से ने। तो असनी आजी मैं भेंटवार्ता धरून अमरले से ये सांग सोत रानी दुर्गा रानी पटनायक और हुंचो संगे भेंट कर सोत बलबीर सिंह कच्छ। तो आली या ये भेंटवार्ता के सुनू।
3: बहन मन, आज आमतन फिर गुटक खुद स्वरोजगार कर तो बहन अमरला से और एमन चनावा है दुर्गा रानी पटनायक। तो दुर्गा रानी पटनायक बहन, ये बताइए कि आप स्वरोजगार के रूप में क्या करती हैं?
4: मेरा नाम है दुर्गा रानी पटनायक। मैं हूँ सहायता समूह से जुड़ी हूँ, राधा कृष्णा सहायता समूह से परचन पाल के रहने वाली हूँ। और मेरे को सहायता समूह से कुछ सहयोग मिला है।
3: अच्छा,
4: इस वजह से मैं दुकान खोली हूँ।
3: अच्छा, दुकान?
4: हाँ, मतलब किराना का दुकान है। फैंसी हाँ। सामान भी रखती हूँ, किराना सामान भी रखती हूँ।
3: अच्छा, जो ये स्वरोजगार करने के लिए आपको मतलब स्व सहायता समूह से
4: मिला है
3: सहायता? मिला
4: हाँ, सहायता मिला।
3: अच्छा, वहाँ से आपको कितना पैसा आपको मिला होगा?
4: ऐसी एक बार कभी 5,000 कभी 10,000 बीच बीच में उठा के दुकान में सामान डालती हूँ।
3: अच्छा,
4: फिर पटाती हूँ।
3: हाँ,
4: कम तो, ब्याज में उसमें।
3: अच्छा,
4: बाहर से लूंगी तो ज्यादा ब्याज है, अगर सहायता समूह से कम ब्याज है।
3: अच्छा, तो इसमें आपको कितना ब्याज देना पड़ता होगा?
4: बाहर में लेने 10% लेना पड़ता है और समूह से लेने से 2% से मिलता है।
3: अच्छा
4: जी,
3: बोलने से बहुत कम ब्याज
4: कम मिलता है इस वजह से।
3: अच्छा, तो दुर्गा रानी देखिए, मतलब स्व सहायता समूह का गठन होने से चाहे महिला स्व सहायता समूह या पुरुष स्व सहायता समूह हो, मतलब इसमें लाभ बहुत मतलब है समझो
4: जी,
3: मतलब सहयोग बहुत मिलता है।
4: बहुत सहयोग मिलता है सर।
3: तो जैसे स्व सहायता समूह को जो आप लोग मिल के पैसा इकट्ठा करते हैं या बैंक से पैसा मिलता है समूह को?
4: नहीं, पहले हम हफ्ता में 20-20 रुपया जमा करते हैं पूरा 11 जन।
3: अच्छा,
4: उसके बाद हफ्ता में 220 रुपया होता है ना। ऐसी करते करते हमारा समूह का हो गया साल भर। तो वो पैसा क्या, कब 4,000 हो जाता है, 5,000 हो जाता है, तो हर बहन मिल के बांटती हैं।
3: अच्छा,
4: कभी इसको जरूरत पड़ा वो लिया, कभी इसको जरूरत पड़ा वो लिए सर।
3: अच्छा
4: जी,
3: तो उसे में फिर अपना खुद का रोजगार
4: करती हूँ सर।
3: अच्छा, जैसे आपको तो जैसे रोजगार, जैसे आपका कुछ दुकान है, फैंसी स्टोर है ऐसा बोल रहे हैं।
4: हाँ।
3: तो उसके लिए भी तो कुछ शेड लगता होगा ना बनाने के लिए, आप रखे होंगे जहाँ पे? खुद का है कि
4: नहीं सर, पंचायत तरफ से दुकान मिला है हमको।
3: अच्छा, पंचायत से मिला?
4: हाँ, पंचायत से मिला है परचन पाल में। हम वही से ये करके जो भी पैसा मिलता है सहायता समूह से उधारी उठाते हैं, तो उसी में हम सामान डाल के धंधा पानी चलाते हैं।
3: अच्छा, तो जैसे दुकान जहाँ पे लगाए उसके लिए भी पंचायत को पैसा पटाना पड़ता होगा?
4: पंचायत को तो पटाना पड़ता है सर।
3: ऐसा
4: जी,
3: महीने में
4: पटाना पड़ता है।
3: अच्छा,
4: किराया पटाना पड़ता है?
3: किराया?
4: हाँ।
3: कितना देते हैं?
4: 500 रुपया
3: हर महीने। अच्छा, जैसे आपका जो दुकान में है उसमें तो लाइट का भी जरूरत पड़ता होगा।
4: हाँ,
3: सब
4: हाँ।
3: पंचायत से लगा हुआ है क्या, लाइट वगैरह?
4: हाँ, पंचायत से लगा हुआ है।
3: लगा हुआ है?
4: हाँ।
3: तो आपको लाइट का बिल वगैरह नहीं पटाना?
4: नहीं, बिल पटाना पड़ता है सर। उन लोग मीटर लगा दिए हैं, हमको बिल पटाना पड़ता है जितना हम उपयोग करते हैं उतना।
3: अच्छा, तो दुर्गा रानी ये बताइए कि आप मतलब ये जो स्वरोजगार का काम करते हुए आपको कितना साल हुआ? कितना
4: अभी सर परचन पाल में खोल के मेरा कम से कम 1.5 साल हो रहा है सर।
3: अच्छा
4: जी,
3: 1.5 साल। तो उसके पहले क्या करते थे?
4: उसके पहले सर क्यों मेरे पति करते थे। पति का तबीयत खराब हो गया है, उनका शुगर वजह से उनका पैर काट दिए हैं, मतलब

0: ये हो गया है, उस वजह से क्या मेरे को देखभाल करना पड़ रहा है।
1: अच्छा,
0: हाँ घर में, हाँ घर में रे, पहले मैं घर में रहती थी, और उनका क्या है शुगर वजह से उनको घाव टाइप का हुआ
1: अच्छा
0: तो पैर कट गया, तो उसकी वजह से वो ये हो गया, तो मैं बैठती हूँ,
1: अच्छा
0: घर चलाती हूँ, दुकान चलाती हूँ।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: लेकिन आपको जैसे दुकान में सामान वगैरह रखने के लिए तो बाहर से लाना पड़ता होगा, तो आप
0: जी, परचनपाल से जगदलपुर भी आती हूँ सर सामान लेने।
1: अच्छा
0: हाँ
1: यानी से खुद खरीद के ले
0: हाँ
1: जाते
0: खुद खरीद के ले जाती हूँ
1: हैं। अच्छा
0: जी।
1: हाँ, देखिए दुर्गा रानी जो आपकी जो मतलब जैसे बता रहे हैं बहुत दुखद
0: दुखद वाला
1: कहानी,
0: बात है
1: क्योंकि
0: सर। हाँ
1: मेहनत बहुत लगता है, क्योंकि एक महिलाओं को आना जाना, सामान ले
0: जाना
1: जाना,
0: सामान लाना।
1: बैठना,
0: हाँ जी सर,
1: तो डेली मतलब कितना मतलब सामान आप बेचते होंगे, कितने?
0: हो जाता है सर 1,000 तक तो होता ही है,
1: अच्छा
0: ज़्यादा तो नहीं होता अभी, क्योंकि परचनपाल में तो उतना बड़ा सिटी है नहीं,
1: हाँ
0: है ना, तो 1,000 तक हो जाता है।
1: अच्छा
0: फिर शाम को चली आती हूँ, फिर सामान उमान लेके फिर जाती हूँ सुबह 9 बजे दुकान खोलने।
1: अच्छा, तो वहाँ मतलब कौन से जो सामान है, कौन सी वस्तुएं ज़्यादा बिक्री होती है वहाँ पे आपकी दुकान में?
0: ज़्यादा मतलब वही किराने सामान में।
1: अच्छा, किराना
0: हाँ
1: सामान है।
0: किराना सामान में ऐसी वो फैंसी सामान
1: अच्छा
0: जी सर।
1: हाँ, आप तो इधर उधर तो कहीं बेचने नहीं
0: नहीं
1: ले
0: जी,
1: जाते,
0: नहीं ले जा रही
1: मतलब
0: सर,
1: दुकान में ही सब?
0: दुकान में ही ये कर रही।
1: अच्छा, तो जैसे आपके लिए अभी कोई सही होगी नहीं है अभी, मतलब घर में कोई दूसरे लोग
0: है हाँ,
1: हैं?
0: देवर है, बेटा है।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: उन लोग तो आपका साथ देते
0: हाँ
1: होंगे।
0: साथ दे रहे हैं सर,
1: अच्छा,
0: साथ देते।
1: तो दुर्गा रानी बताइए, भविष्य में मतलब आपका क्या सोच है, इसी धंधा में आप आगे बढ़ना चाहेंगे या कोई और मन में सोची हैं?
0: अगर कुछ होगा तो आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे, है ना, अगर कुछ सहयोग मिल जाता है सहायता समूह वाले से तो सहयोग करेंगे बोले हैं, अगर आगे देंगे तो जरूर आगे कुछ करेंगे।
1: अच्छा, तो ये बताइए कि आप मतलब कहाँ तक, कितने पढ़े लिखे हैं?
0: सर मैं 8वीं तक ही पढ़ी हूँ सर, उड़ीसा
1: अच्छा
0: की हूँ, रायगढ़ की,
1: अच्छा
0: 8वीं तक पढ़ी हूँ
1: अच्छा
0: जी।
1: तो जैसे कोई ट्रेनिंग वगैरह भी आप कुछ ले चुके हैं क्या, मतलब कई लोग?
0: सर मैं तो बता रही हूँ सर, मैं तो घर गृहस्थी में ही थी, जब
1: अच्छा
0: मेरे पति का पैर ये हो गया
1: हाँ
0: मजबूरी में मेरे को बाहर निकल के दुकान में बैठना पड़ा
1: अच्छा
0: जी सर।
1: हाँ, मतलब आप पहले केवल गृहिणी थी समझो,
0: बस जी
1: घर का
0: सर,
1: काम काज
0: हाँ
1: करती,
0: जी
1: एक मजबूरी की वजह से आपको ये
0: हाँ
1: सब
0: हाँ
1: काम
0: सब करना पड़ रहा है
1: करना
0: सर
1: पड़ रहा है।
0: जी
1: हाँ,
0: सर।
1: चलिए दुर्गा रानी, आपसे बातचीत करके मतलब इतना प्रेरणा मिलेगी, वो सचेत होंगी कि मुसीबत में एक महिलाओं को परिवार के चलाने के लिए किस तरह हिम्मत करना चाहिए, किस तरह मतलब साहस बढ़ाना चाहिए, ये
0: जी
1: आपसे जरूर सीख मिलेगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर, नमस्ते।
2: तो बहिन मन, ये आमी दुर्गा रानी पटनायक बहिन चो गोट के सुनलू ने, और इस संगे भेंट करते रहो बलबीर सिंह कच्छ। जब आमी ये बहिन चो गोट के सुनलू कि इत्रो मसागत करुक लागे से, इत्रो दुख ने रहोन भातीबल, हिम्मत करू तो रहा है, आप लोग घर के संभाल तो रहा है, ये सीख ला। पहले गोटो गृहिणी रहला, पाछे समय आए तो के जरूरत पड़तो के ये कमानी काजे मोर करला। तो ये बहिन जो गोट की सुनन भाती आम के खूब हरिक लागली, और बहिन मने नगद गोट संगे संगे गीत गोविंद सुन ले, और हरिक लागती ने तो तुम चो काजे मैं गीत गोविंद बल धरो नीले से। तो आलिया दिलीप कुमार पांडे और हुंचो संगवारी मन संगे गा लो ये काय सुंदर हल्बी गीत के सुनो।

0: तो बहिन मन, ये काय सुंदर बाजा संगे आमी गीत के सुनलू। बहिन मन, जब आमी गीत गोविंद के सुनवा तो तू चाय नी बाजा गाजा के सुनुन हरिक नहीं हूँ। और बाजा गाजा संगे संगे हुन थाने जो गीत ने शब्द मन रहे सिनी हुनके सुनुन भले नी आम के नंगत लागे से। गीत जो गोटोक गोटोक शब्द ने असन ज्ञान रहे से जे कि आमी गीत संगे सुनुन भाती हरिक संगे हुन ज्ञान के धरुन से। तो एक काय सुंदर गीत के सुन लूँ। और बहन मन, तुम्ही तो जाना सी जसन आया आप लो पीला के झुमायो बलते काय सुंदर झुमा बीती गीत के सुनावाए। तो पीला बल काय सुंदर झुमरुन झुमरुन भाती सुवाए। और ये गीत मननी कितरो सुंदर रहे से कि ये गीत के पीला संगे संगे नी हुन जो आया सुनाए से तो हुन दोनों चो मंजी हुन गोटोक मया चो बंधना रहे से। तो असनी गोटोक गीत के मैं धरुन आनले से ये बिपिन बिहारी दास और हुंचो संगवारी मंचो गावलो गीत आए। तो आले या ये गीत के सुनू।
1: ए आया मुके झुमा नहीं लागे से गोटो गीत गाइस नहीं
2: गाय से दोंदो।

बहन मने काय सुंदर गीत के सुन लू ने मचो मन ने उतर ली और तुम के भले खूबे नगत लागली मैं जाने से। तो बहन मन एदाय मचो जातो समयाबल हो से तो असनी बहन मन आम के मया देते रहा और आम चो एक कार्यक्रम के सुनते रहा और एदाय दिया मके विदा तो जातो पूरे कार्यक्रम घर द्वार सुन तो मचो सब पा दीदी बहन के मन की जो जुहार।

0: अभी घर द्वार कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। 1 बजने को है। समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भारत ऊर्जा प्रणालियों के निर्माण की दिशा में ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करना चाहता है। आज गुरुग्राम में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि विकास की आकांक्षाओं और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में भारत के निवेश के बारे में श्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत विश्व की डिजिटल रूप से सक्षम सबसे बड़ी विद्युत प्रणालियों में से एक की नींव रख रहा है। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर पहले ही लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में ये परिवर्तन बड़े पैमाने पर जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग संबंधी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने राज्य सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6वें चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के छठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और

0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि देखने को मिली। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 570 अंक की उछाल के साथ 77,561 पर, जबकि निफ्टी 170 अंक की वृद्धि के साथ 24,191 पर चल रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दिन के 1:05 हुए हैं। अब सुनिए कृषि सामयिकी। बेड़ा खाड़ा चो
2: जौन थाने गोठ निकले से होता पशु जानवर चो काम के तो भलको नहीं है। गोबर खत बात ले धरन धान मिंडाई तक गाय वाला चो काम हो से मानतर ये मन चो सही दखा रखा निकल लो ने कई ठन बीमार से मार बोले हो जाए से उसनी चीज जन माइमर बीमारी हो सत जे चने पशु जानवर के खूब नुकसान हमरे से तो हुन मंच लक्षण और बचाव के उपाय के आज जानवा। पहला गलघोंटू बीमारी, ये बीमारी ने पशु चो टोडरा फूले से जे चने सर सर चो आवाज निकले से पशु चो पेट वाले फूले से और संगे संगे लव मिल्लो बीती पेट झड़ा वाले हो से। ये बीमारी एक पशु ले दूसर पशु लगे झपके फैले से और ये ले बचा तो काजे हर साल चमास बतर हमारे तो पूरे टीका लगातार वाले हो से। दूसर बीमारी हो से एक टंगिया जैसे ब्लैक क्वार्टर बल वाले सत, ये बीमारी ले पशु चो जांग और करान लगे फूला फूला दिखा दे से जैसो ने पशु खुड़ाते रहेंगे से पशु के खूबे झर धरे से और जुगे होलो ने 12-25 भीतर पशु मरुन जाए से। ये बीमारी ले बचा तो काजे वाले चमास बतर ले पूरे ये चो टीका लगाओ पड़े से। फिर गोटक बीमारी हो से खुरा बीमारी, ये बीमारी जानवर चो खुर और मुँह ने बले हो से ये होलो ने पशु चो खुर ने घा हो से जैसो ने खुर निकरुक बल सके असन होलो ने पशु नंगत रेंगुक तो नहीं सके। ये बीमारी मुँह ने होलो ने जामड़ा जीभ होंठ ने घा हो से मुँह ले जुगे लार निकले से पशु खाओ पियो नहीं सके। ये बीमारी ले पशु के बचा तो काजे नवंबर ले दिसंबर महीना ने टीका लगातार हो से। उसी चीज महामारी ये बीमारी हो से ये बीमारी ले पशु चो जीभ ने काटा काटा हो जाए से लार बल खूब निकले से टोंड ले बास मारे से और पिचकारी असन ऊपर तो बीती दस्त होए से जेचो ने पशु 4-5 दिन ने मरुन जाए से। ये बीमारी ले पशु के बचातो काजे अक्टूबर ले नवंबर महीना ने टीका लगातार होए से। उस नीचे एंथ्रेक्स नाव से गोटक बीमारी होए से जोन की पशु जानवर के खूब नुकसान हमारा से। ये बीमारी नानी बड़े जम्माए पशु के होए से और जुगे करुण भरसा बेरा होए से। ये बीमारी ले पशु अचानक मरुन जाए से और मरलो पशु चो नाक कान मुँह और शरीर जितने बले छेदा से सबले करिया करिया लहू निकले से। ये लहू ने जो कीड़ी मन रहे सत तो ये कीड़ी मन दूसरे जानवर मन के लिए फैले सत और ये बीमारी ले बचा तो काजे बरसा ले पूरे ठीका लगातार हो से। फिर गोटे जुगे करुन छेरी बकरी होते बीत बीमारी है जैसे नाव है इंट्रोटॉक्सिमिया। ये बीमारी होलो ने माटिया रंग चो दस्त हो से जो झपके नहीं छाँडे ये जो ने छेरी बकरी खूब कमजोर हो जाए सत और नंगत सही वक्त नहीं दिलो ने छेरी बकरी मरन जाए सत। तो ये बीमारी ले बचा तो काजे अक्टूबर नवंबर महीना ने टीका लगाओ पड़े से। उस नीचे कुकड़ी चिमड़ी मन के बोले कई ठन बीमारी झोंटे से तो गोटक बीमारी हो से जैके बोले सत रानी खेत तवर हम छो गाँव करी लोग मन जैके झुमरी बीमारी बोले सत। ये खूब फलते बीत बीमारी आए ये छो ने कुकड़ी झुमुक मुरी आए से पटकी मन के खा ले लटकाए से और पंडरा दस्त हो से और कुकड़ी 12-24 भीतर मरन जाए से। ये बीमारी ले बचा तो काजे नानी कुकड़ी के रानी खेत F1 स्ट्रेन और बड़े कुकड़ी के रानी खेत रेगुलर से टीका डॉक्टर मन चो सांगलो हिसाब ने लगातार हो से। फिर गोटक बीमारी हो से फाउल पॉक्स जैके माता महामारी बोले बोले सत। ये बीमारी होलो ने कुकड़ी चो आँख मुँह और छेंडी ने दाना दाना हो से जैसो ने पूरा मुँह चो भाग ने सूजन है से और कुकड़ी दखुक नहीं सके टोन ले लार निकले से और चारा दाना खाओक नहीं सकलो ने कुकड़ी मरुन जाए से। ये चले बचा तो काजे फाउल पॉक्स चो टीका लगाओ पड़े से। तो कोनी बल बीमारी होलो ने डॉक्टर कंपाउंडर के सांगुन इलाज तो करतर चाहे मंत्र जुगे नंगत हो से कि जानवर की बीमारी ले बचावा। ये चो काजे बीमारी अमर तो पहल पशुपालन विभाग बाट ले लगते बीती टीका के लगाओ पड़े से। टीका लगुन रहो ने ये फायदा हो से कि बीमारी अमर ले बोले पशु और जन कुकड़ी चिमड़ी के ये बीमारी नुकसान नहीं अमराए मात्र ये गोट के ध्यान देता रहे कि बीमारी होलो जानवर के हुनीची बीमारी से टीका के नहीं लगाता रहे असने का हो से कि बीमारी जुगे

0: बढ़ुन जा है। जोन जानवर और कुकड़ी चिमड़ी मन बीमार नहीं आत उनके टीका लगाते रहे और असन कर लो ने हम पशु जानवर और कुकड़ी चिमड़ी के बचा सकूँ और हमके फायदा में रुक सके।
1: आप सुन रहे थे कृषि सामयिकी बेड़ा खाड़ा चौगोट, ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है।
2: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
3: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
4: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज आपकी कहानी आपके खेतों की जुबानी।
1: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से अब पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम श्रोता सुमन।

प्रोग्राम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को रानू का नमस्कार। चलिए इस संगीत में प्रोग्राम का आगाज करते हैं लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ, जिसे मजरूह ने लिखा है, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और पसंद किया है आप सब श्रोताओं ने। नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उर्षा पाटिल, प्रथमेश पाटिल, निवृत्ति क्षीरसागर और संजय कुमार चौहान, डोंडी लोहारा संबलपुर से गौतम उर्वशा, डामिन लक्की, डोमन लाल कोठारी, बालोद अर्जुंदा छत्तीसगढ़ से आप हैं, दिनेश यादव और साधना यादव, मर्दापोटी चारामा कांकेर से ये पत्र है, नरसिंह थापा, बीर सिंह थापा और शंकर सलाम का। अगला नाम कवर कॉलोनी बड़वा से आप हैं, प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य आदित्य, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली, फरदरी बालोद छत्तीसगढ़ से ये पत्र है, मंतुराम यादव, चित्ररेखा यादव, साहिल, शिवम, केशव, माधव, राकेश, रितेश, पोषण, नेत्राम, संतुराम, विजय और उनके परिजनों का। आप हैं मोटका माफी खंडवा मध्य प्रदेश से, जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, ललित मणि, शुभम, देवी किशन, भावना कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल। शीतला नगर से आप हैं शिव चंद्राकर और भगवान चंद्राकर। पाहरा अहिवारा दुर्ग से यह खत है पोषण बंछोर, चंद्रकिरण, प्रीति और छाया बंछोर का। अगला नाम सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। आप हैं पीपल नीम चौक अमोड़ा केशकाल से सुनील यादव, शिव कुमार यादव, तनिष्का और नौबत यादव। बेडी से हैं राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमड़े, चंचल वैष्णवी ढोमड़े और अर्जुन गावनेकर। ये पत्र है चीतलवाड़ी अकोला से अमोल इंगले, अर्चना इंगले, सर्वेश, अधीरा इंगले और राजवी का। ग्राम टूंकिया बालोतरा राजस्थान से आप हैं कृष्ण कुमार डाबी, भूपत कुमार डाबी,

राधा देवी, अर्चना विक्रम और साक्षी डावी। ये पत्र है गांव जामथड़ा कच्छ भुज से गंगा वणकर, प्रीति, जूली, गीता, महिमा, विशाल, विजय, विराट और वणकर परिवार का। और इस गीत की फरमाइश आई है रजौनी महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, उदय भानपाल, जय हिंदपाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा विमलेश और दिव्यांश पाल का। आप सबकी पसंद पर पेश है मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का ये नगमा।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म हमराज से। साहिर की रचना है और रवि ने धुन बनाई है। महेंद्र कपूर के गाए इस गीत की फरमाइश की है आप सबने। मालेगांव बुराला धरण से हैं दत्ता घायल, सुनीता बाई घायल, सानिका और गजानन घायल। गीदम रोड जगदलपुर से टी राजू राव, टी सुनील राव, शिवानी राव, कृष्णा तुलसी, भाग्य लक्ष्मी, आनंद राव, मनीषा, श्रवण कुमार, नानू, काव्या और श्रुति राशि राव। वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से वंदना मराठा, कुमारी देविका चौधरी, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी और ललिता नारायण खर्चे। भाटापारा दतरेंगी से आप हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा। दतरेंगी से विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिमा, रीना यदु और लक्ष्मीना यदु। आप हैं ताजपुर मोरपा से कारी भाई राय, श्रीमती मीनाकारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिक्की, रिंकी, नीतू, मोहम्मद फारूक और ललन मिश्रा। ढोली सकरा से आप हैं जयंत कुमार बैरागी। लोनीगुड़ा बस्तर से ये पत्र है चंदन नाग, हरीश नाग, कमल नाग, उदय नाग और बाल सिंह नाग का। आप हैं छिंदवाड़ा दरभा से ये पत्र है रायधर कश्यप, रामधर बघेल, दुखू राम मौर्य, मोती राम मौर्य, डमरू राम मौर्य, सोनू राम बघेल, नीलकंठ सिन्हा और भीमा राम मंडावी का।

हरीश नाग, कमल नाग, उदय नाग और बाल सिंह नाग का। आप हैं छिंदवाड़ा दरभा से ये पत्र है। रायधर कश्यप, रामधर बघेल, दुखू राम मौर्य, मोती राम मौर्य, डमरू राम मौर्य, सोनू राम बघेल, नीलकंठ सिन्हा और भीमा राम मंडावी का।

अब सुनिए आशा भोसले का गाया, असद भोपाली का लिखा और गणेश का संगीतबद्ध गीत, ठाकुर जरनैल सिंह फिल्म से। फरमाइशी खत आप सबके हैं। वरुण जवलका से महेंद्र सरकटे, विजया और मिलिंद सरकटे, भले सर महासमुंद से आप हैं श्रीमती रेवती सिंह, छगन सिन्हा, द्वारिका सिन्हा और सुदन साहू, लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राधा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी, महामायापारा ग्राम दरचूरा से यह पत्र है, फिरंता साहू, दुलौरिन साहू, कामेश्वरी कुमारी और प्रीतम कुमार साहू का, यहीं से ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा और मोतीलाल साहू, बेरडी से फरमाइश आई है हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक, प्राची और तनु करमरकर की, गोला बाजार बक्सर से आप हैं श्रद्धानंद आर्य, अभय नंद आर्य, परमानंद, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित, अगला नाम दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा बचेली से बलराम सेन, इंदु सेन, पुष्पराज सेन, रितिका सेन, पोषण सेन, पंचू सेन और दिव्या सेन का। इसी गीत की फरमाइश आई है मामड़पाल धरबाह से गणपत बघेल, मनीष और अनंत बघेल की, मुल्लाड़ा महाराष्ट्र से आप हैं वासुदेव बोधवड़े, माधुरी और आकाश बोधवड़े, यहीं से अनीता गाठोड़े, रमेश राव और लोकेश कुमार गाठोड़े, जुनवानी दुर्ग छत्तीसगढ़ से आप हैं सुरीत रमेश साहू, तारा विद्या साहू, जितेंद्र किशन साहू, हीरेंद्र नीलकंठ साहू, सुनीता ऋषिवन साहू, चंद्रहास संजीव, त्रिलोक साहू, रणजीत साहू और राजा भिलौरी बेमेतरा छत्तीसगढ़ से आप हैं रोहिणी डागेश्वरी साहू, खुलासा देवी, छविता, पूनम साहू और भामिनी साहू, यहीं से देवव्रत, राघवेंद्र साहू, विधि, दीपिका, कविता, रिद्धि सिद्धि, डिविशा और हेमंत साहू। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से आप हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहित।

पत्नी ऋतिक और बलबीर सिंह। अगला नाम विद्यानगर तेंदुखेड़ा से ओम प्रकाश नेमा, श्रीमती किरण आकाश नेमा, विकास और नंदिनी नेमा, छत्रपति, शमाजी नगर औरंगाबाद से आप हैं प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा बोरगांवकर, प्रांजलि और सोहम बोरगांवकर, यहीं से हैं सदानंद विराज, अंशुमन और ओवी, आप हैं तीन महुआ खापरखेड़ा रायसेन मध्य प्रदेश से, तुलसीराम साहू, मुकेश कुमार साहू, हेमंत कुमार, आरती, ममता गोमती और रागिनी साहू। और ये पत्र आया है उमरिया मध्य प्रदेश से, संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई सिंह, विकास सिंह, ओम प्रकाश सिंह, शुभम विश्वकर्मा और अरुण विश्वकर्मा का। साथी शहडोल मध्य प्रदेश से आप हैं, सोनू, मोनू और गोलू खान, घंटाघर चौखंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, आप सबकी पसंद पर पेश है आशा भोसले का गाया ये गीत।

तोहफा इस फिल्म का घर पर मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी वीपी रंजू अशोकपुरी सुशीलपुरी बीकेपुरी कैलाश अनीता ममता मेघा और पूजापुरी यहीं से गगन कपूर गुंजन कपूर और लालसा कपूर साथ में है रामा मल्लिक कुणाल और निधि मल्लिक अब हैं हरीशपुरी सतीशपुरी राकेश विनोद पाली डीसी और अरुणपुरी यहीं से नेहापुरी एकता शम्मी सुनील वीकेपुरी और आरएसपुरी चारमीनार चौक गंडई पंडरिया से आप हैं दरियानामल अनीता मोटवाली राजेश मुकेश मोटवानी गांधीबाग नारायण नागपुर से अशोक कुमार सावलानी झूलेलाल चौक तिल्दा से

आप हैं हरीश कमल सेतपाल, भूमिका और सुशीला दादी। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस तपस्या और करिश्मा कामले। आप हैं यादव मोहल्ला सनावत से, दिलीप मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान और योगेश मालाकार। रामगंज खंडवा के श्रोता हैं विजय महोबिया, कविता, संजय, नंदिनी, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, डॉली, देवराज और महोबिया और भैयू दादा। गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री। आप हैं देवरी भाटापारा से, बेड़ी से राजेश सोनी, कंचल सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने और अर्जुन गावनेकर। सोरई ललितपुर उत्तर प्रदेश से हैं संतोष नामदेव, अभय नामदेव, अनिल, अजीत, अनीता, ज्योति, संजना और भारती नामदेव। यहीं से पूर्वी रूही, शक्ति, भक्ति, अनु, अनन्या, आदर्श, दीपक और लव नामदेव। बिरसिंहपुर पाली मध्य प्रदेश से संतोष राव, भारती राव, बाई सिंह, विकास सिंह, ओम प्रकाश सिंह, अरुण और शुभम विश्वकर्मा। ये पत्र बुलढाणा महाराष्ट्र से हैं वासुदेव बोधवड़े, माधुरी और आकाश बोधवड़े का। ललित उत्तर प्रदेश से हैं कैलाश नारायण नामदेव, दीपक, द्रौपदी रामदेवी, ब्रिजेश कुमारी, अखिलेश कुमारी, लखनलाल। कासम कॉलोनी सनावत से यूनुस खत्री, इद्रीस नूर मोहम्मद खत्री, इरफान मीना, कासिफ मीना और माहिरा। पनवाड़ी महोबा से आप हैं देवी दीन अहिरवार, सुनीता अहिरवार, दिनेश कपिल और पूजा अहिरवार। छिंद डी है पुजारी पारा कोंडा गांव से, इसी गीत की फरमाइश की है सेतुराम चक्रधारी, मंगतिन चक्रधारी, आशीष कुमार और अस्तिका चक्रधारी ने। भाटापारा छत्तीसगढ़ से आप हैं रोहित लक्ष्मी और ऋषभ अंश लक्ष्मी। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा और रिमझिम गुप्ता। भंडार सिमनी कोंडा गांव से आप हैं सुभाष चक्रधारी, कविता, मुस्कान, अनुष्का और भवानी चक्रधारी। अगला नाम एकता कॉलोनी रोहतक हरियाणा से सीताराम कांगड़ा का, और आप हैं पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा। आप सबकी चाहत पर आइए सुनते हैं इंदिवर की रचना आशा भोसले और एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाजों में। गीत की तर्ज बनाई है बप्पी लाहिरी ने।

आइए अब सुने राजेंद्र कृष्ण की रचना आशा भोसले और मोहम्मद रफी के युगल सुरों में। मदन मोहन की बनाई तर्ज है। फिल्म है नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे। गीत सुना चाहा है इन श्रोताओं ने। तेलीपारा बिलासपुर से रज्जन साहू, बेबी ईशानी साहू, छन्नूलाल श्रीवास और अनीता श्रीवास। जतुका किशनपुर से आलम दिलकर, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज आलम और चांदनी नाज। विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत, चेतन नाहटा और दीक्षा कुश मूणत। आप हैं बोरखेड़ा पित्रामल उज्जैन से। बुड़गहन छत्तीसगढ़ से ये पत्र है राम दुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति का। नागर कोहका राजनांदगांव से आप है जग्गर राम साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा देवी, दुष्यंत प्रांजल और समीक्षा साहू। मन बघेरा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं योगेश सारवा और आशा सारवा। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से आप हैं रोशनलाल देवांगन, कौशल्या हेमलता और डिम्पल देवांगन। अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट, अंजलि रुद्राणी और कृष्णा केवट। हसदा छत्तीसगढ़ से कमलेश साहू। नगरी से आप हैं खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा, शुभम सेजल साहू। देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री। सतोसा बकावन से के श्रोता हैं गेनूराम बघेल, तनुजा बघेल, सुभाष और गोमती बघेल। मगरलोड छत्तीसगढ़ से आप हैं कोमल सेन। चूड़ी लाइन मुंगेली से ये पत्र आया है मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक और मोहम्मद अल्ताफ का। रायपुर से आप हैं मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन और मोहम्मद हसनैन रजा। अब है मित्तला महोबा उत्तर प्रदेश से नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, भूपेंद्र गौर, जानवी राजपूत और विनीता सिंह। फतेहपुर उत्तर प्रदेश से रोहित यादव, बेटा यादव, पंकज अंगद, आयुष, आर्यन और आदर्श यादव। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, धनेश तिवारी, सावन नायक, अंकिता और वैदेही जोशी। पाकुड़ झारखंड से हैं उत्तम भगत, श्वेता भगत, किसुतासु, अन्नावानंद और सत्यम आनंद। लोरमी मेघापारा के श्रोता है मनोज कुमार साहू, धनंजय, कृष्ण कुमार, गायत्री और कुसुमलता साहू। हलवाईयान शेरकोट बिजनौर के श्रोता मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू साजदा रानी और हिना कौसर। बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से फरमाइश की है मुन्ना भगत और गुड्डी भगत ने। और आप हैं डोंडी लोहरा दुर्ग से देवशंकर तामुरिया। पेश है आप सबकी पसंद पर ये गीत।

गणेश धाम परसुली खेरथा बाजार बालोद से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलाउदास जयदास देवेश दास धनवंतिन बाई मोतिम बाई मानिकपुरी रुआ बांधा भिलाई से सुशील जैन श्रेया जैन कल्पना सौरभ शौर्य और शुभम जैन जवाहरगंज जबलपुर से जिनेंद्र जैन महेंद्र और सत्येंद्र जैन नयानगर सुपेला सुपौल से श्वेता रंजन रजनीश कुमार आनंद कुमार पप्पू और चिलना सरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी सविता राधे राकेश रंजन राजीव रंजन विद्यार्थी फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा इंद्रजीत कौर बेबी मनमीत और मनविंदर सिंह पांधा मेहसौल सीतामढ़ी बिहार नूरमहल से मुसरत जहानाज तलत जहानाज फरज जहां रिफत जहां नुजहत जहां साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज कलेर बिहार से बेगम निकहत परवीन और सदफ आरजू महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव इंद्रपाल यादव राघवेंद्र अरविंद रागिनी रिया दिव्यांशी रेणु और रोनिका यादव दत्रेंगी छत्तीसगढ़ से भागवत प्रसाद वर्मा गुलाबदास अभय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर वंदना गौहर मयंक और तन्वी गौहर आदर्श नगर मलोट पंजाब के श्रोता राज शर्मा मीना शर्मा योगेश और सौरभ शर्मा पन्ना मध्य प्रदेश से पसंद करने वाले श्रोता हैं कौशल किशोर मट्टू संगीता मट्टू हर्षित और वैभव मट्टू मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू और योगेश साहू मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से आप हैं मुकेश कश्यप सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तन्मी लक्ष्य सोनी और मोहिनी ऋतिक बिरखेरा हमीरपुर के श्रोता हैं मनीराम पाल मलखान सिंह पाल सुधांशु हिमांशु प्रांशी निवेदिता ज्योति मानसी सुदीप और सुशीला पाल आप हैं शिवकोठी ओमकारेश्वर से राकेश पप्पू सेन धर्मेंद्र सेन और मुकेश सेन यहीं से ओम सेन और पिंकी सेन इसी अगले गीत की फरमाइश सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश से आई है बाबू यादव श्रीमती मनशा यादव दुर्गेश सीमा अन्नु और अरुणेश यादव की आप हैं हमीरपुर उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा साहिल मंजू रंजना वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा और ये पत्र आया है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का आप सबकी चाहत पर अब सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म राजकुमार का नगमा शब्दकार हसरत जयपुरी संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने

श्रोता सुमन कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनिए। आनंद बख्शी की यह रचना है जिसकी धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है आया सावन झूमके। गीत के लिए फरमाइशी खत आप सबके हैं। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और डागला परिवार, जरूर वरूर महाराष्ट्र से बाबा साहब वाडोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कनीरे और कार्तिक युवराज। अब हैं मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, माया कुमार, संदीप गुगलानी, मीनाक्षी तिवारी और सुनीता शर्मा। बाजार पारा बेमेतरा से फरमाइश आई है भारत लाल सिन्हा, लव कुमार और लक्की सिन्हा की। हिच्छा महासमुंद से आप हैं अदालत दास वैष्णव, मानस शांति वैष्णव, ऋचा गायत्री वैष्णव, भीषम दास मानिकपुरी। शाहूनगर यवतमाल से ये पत्र है राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन मनवर का। यहीं से आप हैं रोशनी और बेबी प्रियांशी मनवर। अगला नाम पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश नेहा और वान्या सिंगरौल का। मेहरनगर उमरखेड़ से आप हैं अभिजीत गौहाड़कर, सरिता सिद्धांत, प्रिंस एकांश, श्वेता, सुमित वैशाली, शैलेश और ध्वनि गौहाड़कर। कांकेर भानुप्रतापपुर से आप हैं प्रकाश तिरसुनिया, विकास तिरसुनिया और मनोहर निषाद। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार के श्रोता ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। आप हैं औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। कलानौर के श्रोता हैं नरेंद्र शर्मा, किरण नितिन और मयंक शर्मा। यमुनापुरम से धीरेंद्र सोलंकी, सुनीता सोलंकी, निष्ठा शौर्य और मून सोलंकी और यहीं से MS अब्बासी। भूट चौराहा बुलंदशहर से पंकज सिंह, चंचल सिंह, ऋषिका, आकृति और वंशराज सिंह। आप हैं ऊपर कोट मोहल्ला चौखुनटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी।

शाहनवाज अब्बासी, सरफराज फद्दीन, सुहा नरजान और अबान अब्बासी। इस गीत की फरमाइश आई है कनेरा मोहल्ला पटियाला से, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका और वंश बत्ता का यह पत्र है। अगला नाम पनवाड़ी उत्तर प्रदेश से, शिवनारायण पांचाल, देवनारायण, लक्ष्मी प्रसाद, मोहित, प्रीति, नीतू, विनय, नेहा, सत्यम, मोहिनी, पवन, अनुज, गुड्डी और अंकुश पांचाल का। और आप हैं डोंगरगांव, राजनांदगांव से राष्ट्रपाल और राधिका गजभिए। आप सबकी पसंद पर सुनते हैं आया सावन झूम के फिल्म का ये नगमा।

प्रोग्राम का आखिरी नगमा आइए सुनते हैं फिल्म काली घटा से। लता मंगेशकर की आवाज़ है, साथ में है मोहम्मद रफ़ी और गीत की रचना आनंद बख्शी की है, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत की फरमाइश आप सबने की है। राज पैलेस भवनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक और आर्यन वर्मा, शिव मंदिर

जांभरून से आप है दुर्गादास जोशी, गंगाधर जोशी, संजय जोशी, आशीष पृथ्वीराज, साध्वी और गणेश हारगांवकर। भोकरी तालुका रावेर से अरशद तरवी, आरिस अरसलान और यूनुस तरवी। यहीं से हैं भैया तरवी, रीना तरवी, सनी बाबू, रोजूबाई, परू मुबारक, विलास, मनोहर ठाकुर और तैमूर बारे। मोहत से मुशर्रफ खान तरवी, जरीना मुबारक, परवेज, रोजमीन और उनके परिजन। नेहरुआट भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत साहू, राघवेंद्र साहू। अगला नाम जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया और एंजल भाटिया का। आप हैं गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले। खरगोन मध्य प्रदेश से फरमाइशी खत है ध्रुवांश सोनवड़े, सुनीता सोनवड़े, खुशी, प्रियांश, आशीष, पूनम, कृष्णा और शुभम सोनवड़े की ये फरमाइश है। आप हैं मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से शुभचंद्र बजाज, विट्टा बजाज और साहिल। अगला नाम है गांधी चौक रोपट पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक और मीका सिंह का। और आप हैं बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। यहीं से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रंजल राय। आप हैं शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। आप सबकी पसंद पर पेशा प्रोग्राम का आखिरी नगमा काली घटा फिल्म से।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे हैं काली घटा फिल्म का ये गीत, और इसी गीत के साथ श्रोता सुमन कार्यक्रम से मुझे रानू को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: यह था आज का कार्यक्रम श्रोता सुमन। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। 2 बजने को है दोपहर समाचार। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे हैं।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिड डे न्यूज। द हेडलाइंस। Samvidhan Hatya Divas being observed today. Prime Minister Narendra Modi pays homage to those who defended democratic values during the emergency. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar calls for stronger collaboration amid global challenges, invokes Vasudhaiva Kutumbakam at Jeju Forum in South Korea. BRICS Energy Ministers meeting begins in Gurugram under India's BRICS 2026 chairship. Powerful earthquakes strike Venezuela back-to-back, causing multiple building collapses. State of emergency declared. South Africa

गीता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार दो शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। और मैनचेस्टर में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मैच में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां पढ़ी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये कविता मात्र पंक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर थोपे गए दर्द, घुटन और प्रतिबंधों की एक जीवंत और सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी की कालजयी पंक्तियां आज भी उस कालखंड के काले अध्यायों को आवाज देती हैं।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चो में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका पर दबाव डाला गया, मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित हुई।
3: जुडिशरी के खिलाफ पत्रकारिता के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव, विपक्षियों को जेल में बंद करना और गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना। मैं इमरजेंसी के अंडरग्राउंड में प्रधानमंत्री की भूमिका की तारीफ करूंगा। सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड को उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था। और आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि देश की जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई।
0: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऊर्जा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। गुरुग्राम में आज ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लक्ष्यों और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा क्षेत्र के निर्माण के वास्ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट दृढ़ ढांचे और ऊर्जा भंडारण प्रणाली का तेजी से विस्तार कर रहा है।
4: फ्यूचर एनर्जी सिस्टम्स मस्ट बैलेंस,
5: भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों में स्थिरता और विश्वसनीयता के बीच संतुलन होना चाहिए। भारत ऊर्जा क्षेत्र की पूरी श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अब तक 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह बदलाव और बड़े स्तर पर जारी रहेगा।
4: ट्रांसफॉर्मेशन विल कंटिन्यू एट स्केल।
0: ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की ये बैठक कल तक जारी रहेगी। इसमें ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है।

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अवसर दिए जाने चाहिए।
1: The global south should be enabled.
2: वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। इससे वैश्विक विकास के नए अवसर पैदा होंगे और साझा प्रयासों से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। हम केवल कुछ देशों पर नियमों और मानकों को बनाए रखने के लिए निर्भर नहीं रह सकते। दुनिया को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण रखना होगा।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने अमरीका के वॉशिंगटन DC में अमेरिका के विदेश उपमंत्री जैकब एस हेलबर्ग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि बैठक में भरोसेमंद और विविध आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के छठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ED ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। पंजाब पुलिस ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान में अमृतसर जिले में सीमा पार से संचालित अवैध हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एक अफगान नागरिक और

0: शाला द्वारा फोरेंसिक रिपोर्ट में कथित हेरफेर की विस्तृत जांच चल रही है। इस बीच श्री भगवंत मान ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और ये उन्हें बदनाम करने के अभियान का एक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच न्यायालय की निगरानी में कराने संबंधी जनहित याचिका पर आज तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। याचिका में अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे से संबंधित सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित करने की मांग की गई है। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने राज्य सरकार को इस मामले में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए एक हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये और घायलों को 1-1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी गठित की गई है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो गई है।
1: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशन को मॉडल में ही कन्वर्ट करके वो सारे एयरपोर्ट्स को भी इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं। और यही विश्वास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की इस सेक्टर पे रखते हैं कि एक सिविल एविएशन सेक्टर में एक रिफॉर्म, एक कार्यक्रम अगर करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है।
0: यह सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के अंतर्गत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है। शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत की खबर है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने भारत के लोगों की ओर से वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से विस्तारित किया गया है ताकि नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसमें QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे के अंतर्गत दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 575 अंक की उछाल से 77,566 पर, जबकि निफ्टी 173 अंक की वृद्धि के साथ 24,195 पर कारोबार कर रहे थे। और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया। इससे पहले मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्व कप के ग्रुप चरण के अपने तीनों मैच में पहली बार जीत दर्ज की। मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। आईसीसी महिला टी20

0: क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। बात मौसम की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में 30 जून तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। साथ ही कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंह रौल, नारायणी सिंह रौल, नोमेश सिंह रौल, नेहा और वान्या सिंह रौल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है, दूसरों को सम्मान देने वाला व्यक्ति स्वयं सम्मान का अधिकारी बन जाता है। इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा। जेल रोड कानपुर से रोशन आसमा, सरफुद्दीन, फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम थापा। स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीना तमान इदरीसी, नाजिया, शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू, नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी। कृष्णा पार्क दिल्ली से असलम आसमा कुरैशी और अकरम आसमा कुरैशी। आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और आइए चलते हैं एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनूठी गुफाओं के बारे में। जैसा कि हमने बताया था कि अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में तो सभी जानते हैं, वहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन भारत में कई ऐसी गुफाएं हैं जिनका नाम लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन वे पुरातत्व और मानव विज्ञान के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बोर्रा की गुफाओं पर। आपको शायद ये नाम अनजाना लग रहा होगा, तो आपको बता दें स्थानीय भाषा में इन गुफाओं को बोर्रा गुहलू कहा जाता है। बेशक ये बहुत जाना माना नाम तो नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी और गहरी गुफाओं में से एक है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहां पर स्थित हैं। ये गुफाएं आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध बंदरगाह विशाखापत्तनम से लगभग 90 किलोमीटर दूर अनंतगिरी की पहाड़ियों में स्थित हैं। इनकी गहराई 260 मीटर से भी अधिक है। श्रोताओं, माना जाता है कि ये गुफाएं लगभग 10 लाख वर्ष पुरानी हैं। लेकिन ये जानना भी बहुत रोचक होगा कि इन गुफाओं का निर्माण आखिर कैसे हुआ। श्रोताओं, यहाँ एक नदी है जिसका नाम गोस्थानी है। गोस्थानी नदी की छोटी छोटी जलधाराएं यहाँ की चूना पत्थर से बनी पहाड़ियों पर

0: लाखों वर्षों से बहती रही हैं। इस नदी की धार में एक खास प्रकार का अम्ल या एसिड है जिसे ह्यूमिक एसिड कहते हैं। इसने चट्टानों को खरादना शुरू किया और लाखों वर्षों में एक विशाल गुफा बना दी। सच में प्रकृति का करिश्मा आश्चर्यजनक है। श्रोताओं, इन गुफाओं की सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ के खरादे हुए पत्थर छत से लटकते हुए और फर्श से ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं। नदी के लगातार टपकते पानी ने यहाँ के पत्थरों को अद्भुत आकार प्रदान किया है। श्रोताओं, सुखद आश्चर्य होता है कि नदी के पानी द्वारा खरादे गए पत्थरों की प्राकृतिक आकृतियां इतनी अनोखी और वास्तविक हैं कि लोगों ने इनके नाम रख दिए हैं, जैसे शिव पार्वती, माँ बच्चा, ऋषि की दाढ़ी, मगरमच्छ, गाय इत्यादि। है ना बड़ी अद्भुत बात? सच में श्रोताओं, प्रकृति बड़ी अद्भुत शिल्पकार है। और तो और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि गुफा के बीचों बीच एक ऐसा पत्थर है जो बिल्कुल शिवलिंग की तरह दिखाई पड़ता है जिस पर पानी टपकता रहता है। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं। तो श्रोताओं, ये तो बात हुई गोर्रा गुफाओं की। आइए बात करते हैं आखिर इसकी खोज कैसे हुई, ये जानना भी बहुत जरूरी है। सन 1807 की बात है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज ने इसकी खोज तब की जब वे चट्टानों पर नदी के प्रभाव का अध्ययन करने इस क्षेत्र में आए। जब उन्होंने इन गुफाओं में प्रकृति द्वारा लाखों वर्षों में निर्मित इन अद्भुत आकृतियों को देखा तो प्रकृति के इस करिश्मे को देखकर वे भी चकित रह गए। फिर उन्होंने विधिवत इन गुफाओं का दस्तावेजीकरण किया और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इन दिनों ये गुफाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। इन गुफाओं को देखने बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक और भूगर्भ शास्त्री आते हैं। तो जब हम प्रकृति के करिश्मे को देखते हैं तो हमें ये मान लेना चाहिए कि आकर्षण सिर्फ चकाचौंध और दिखावे में ही नहीं होता। सच्चा आकर्षण तो वहाँ है जहाँ हम अवलोकन करके ये समझ लेते हैं कि प्रकृति कितनी अनोखी और विस्मयकारी है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अद्भुत विस्मयकारी आंध्र प्रदेश की बोर्रा गुफाओं की। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गिजू भाई बधे का। ये कार्यक्रम भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद गिजू भाई बधे का के शैक्षिक चिंतन और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अनुप्रयोगों की जानकारी देता है। गिजू भाई बधे का जी ने मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को भारतीय परिप्रेक्ष्य में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उनकी बहुचर्चित पुस्तक दीवा स्वप्न के बारे में भी इस कार्यक्रम में जानकारी दी गई है।
1: गुरु भूमि यानी गुरुओं और शिक्षकों की भूमि। भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था ने असंख्य विद्वानों को जन्म दिया। शल्य चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत और चिकित्सा विज्ञान में महर्षि चरक और बाल रोग विशेषज्ञ जीवक के बारे में भला कौन नहीं जानता।
2: खगोल विज्ञान और गणित में आर्यभट्ट, वराह मिहिर और भास्कराचार्य का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। और भी बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने विद्या के हर क्षेत्र में शिक्षा दी और ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया।
1: यदि हम आधुनिक भारत की बात करें तो इसमें कई विलक्षण विभूतियां हुईं, जिनका शैक्षिक चिंतन और दर्शन सदा स्मरण रखा जाएगा।
2: उन विलक्षण आधुनिक विभूतियों में मुख्य रूप से हैं श्री अरविंद, भगिनी निवेदिता, रविंद्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और गिजू भाई बधे का।
1: साथियों, आज हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतक गिजू भाई बधेका जी की, जो एक गुजराती लेखक और महान शिक्षा शास्त्री थे।
2: गिजू भाई बधेका का जन्म 15 नवंबर 1885 को गुजरात राज्य के सौराष्ट्र के

0: मित्तल नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम गिरिजा शंकर बधेका था, लेकिन वो गिजू भाई के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। उनके मन में बच्चों के प्रति अविरल स्नेह और गहरी संवेदना थी।
1: कहते हैं कि उनकी बचपन की शिक्षा बहुत पीड़ादायक थी। उन दिनों रटंत पद्धति का ही बोलबाला था। शिक्षा का अर्थ अक्सर पिटाई और बेंत खाना हुआ करता था। अपने बचपन की यातनापूर्ण शिक्षा का उनके बाल मन पर भारी प्रभाव पड़ा। बचपन की शिक्षा की इस पीड़ा को वो कभी भूल नहीं पाए।

0: प्रणाम मास्टर जी।
1: प्रणाम। हाँ तो बच्चों, कल मैंने तुम लोगों को डेढ़ का पहाड़ा सिखाया था और कहा था कि सबको याद करके आना है। याद किया है ना सबने? तो इसका मतलब हुआ किसी ने ठीक से याद नहीं किया है। बिजू, तुम सुनाओ।
2: जी मास्टर जी, मैंने कोशिश
1: कोशिश वोशिश मैं नहीं जानता, खड़े होकर सुनाओ।
2: जी जी, डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूना तीन।
1: अरे जल्दी जल्दी बोल, मेरी बेत भूल गया क्या?
2: जी जी जी, सुनाता हूँ। डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूनी।
1: तुम सबके लिए मेरी बेत ही ठीक है। इधर इधर आओ सामने।
2: जी
1: कान खोल कर सुन लो तुम सब, यदि कल ठीक से याद नहीं करके आए तो सबका इससे भी बुरा हाल करूंगा, समझे?
3: गिजू भाई ने अपनी औपचारिक शिक्षा समाप्त की और उच्चतर अध्ययन के लिए बंबई चले गए, जो आज मुंबई कहलाता है।
4: साथियों, उनके जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जिसने उनका जीवन बदल दिया। गिजू भाई 1913 में पिता बने। बेटे के जन्म के तुरंत बाद जब इस युवा पिता ने अपने नवजात बेटे को गोद में उठाया, तब उनकी आंखों के सामने उनका अपना दारुण बचपन घूम गया। वो गहरी सोच में डूब गए और सोचने लगे।
5: एक प्रतिष्ठित परिवार के हर बच्चे की तरह मेरे बेटे को भी एक दिन स्कूल जाना होगा, और स्कूल जाने का मतलब है छोटी छोटी गलतियों के लिए रोजाना बेत की मार खाना। तो क्या ये भी उसी प्रकार मार खाएगा जैसी मार हमने खाई थी? मैं जानता हूं कि ये स्कूल जाएगा, लेकिन क्या मार खाने के लिए, अपमानित होने के लिए? नहीं। क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे बच्चे सीखें लेकिन बिना तनाव के, भय मुक्त होकर? इस पर जरूर कुछ सोचना पड़ेगा। समाज को इस दिशा में कुछ करना ही होगा।
3: गिजू भाई ने 1920 में एक बाल मंदिर यानी विद्यालय की स्थापना की और वकालत छोड़कर पूरी तरह बाल शिक्षा को समर्पित हो गए। यहीं से शुरू हुए बाल शिक्षा पर उनके अनेकानेक शैक्षणिक अभिनव प्रयोग। वो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को सरल, सुगम और सरस बनाने

0: मानते थे, इसलिए अपने द्वारा स्थापित विद्यालयों को उन्होंने बाल मंदिर कहा।
1: सन 1922 में भावनगर के तख्तेश्वर मंदिर के पास उन्होंने एक और बाल मंदिर खोला, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी के कर कमलों से हुआ।
0: इसी भावनगर में उन्होंने देश के शिक्षकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय मोंटेसरी सम्मेलन का आयोजन किया और शिक्षकों के लिए अध्यापन मंदिर या शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को पूर्णतया आत्मसात करने के बाद उन्होंने उसके सिद्धांतों को भारतीय संदर्भ में पूरी तरह अपनाने का प्रयास किया।
1: एक बार किसी पत्रकार ने गांधी जी से गिजू भाई के बारे में कुछ लिखने को कहा, तब गांधी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा था,
2: गिजू भाई जैसे महान व्यक्ति के लिए कुछ लिखने वाला मैं कौन होता हूँ? शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों ने मुझे हमेशा मुक्त किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि उनका ये महान कार्य आगे बढ़ चलेगा।
1: गांधी जी राष्ट्रपिता कहे जाते थे, तो गिजू भाई को बाल शिक्षा के क्षेत्र में उनकी माता तुल्य करुणा और योगदान के कारण लोग उन्हें मोछाई माँ अर्थात मूछों वाली माँ भी कहते थे।
0: बच्चों को शिक्षा देने के बारे में गिजू भाई अक्सर कहा करते थे,
3: शिक्षक बंधुओं, कहानी बच्चों को रटाना नहीं, खूब रस ले लेकर अभिनय करके उन्हें कहानी समझाओ, उनसे प्रेम से बात करो, उन्हें हंसाओ, वो सिर्फ सूचनाओं से अबोध हैं, अज्ञानी नहीं है। यदि बच्चा सप्ताह में 5 दिन शिक्षक के साथ 5 या 6 घंटे बिताता है तो क्या उसे सच्चा प्यार और सम्मान नहीं मिलना चाहिए?
1: अपनी साहित्यिक कृतियों में उन्होंने भाषा, लिखावट, भूगोल, इतिहास और अन्य सभी विषयों के शिक्षण के लिए अनेक रोचक और सृजनात्मक विधियों को सविस्तार समझाया है। साथियों, आज हमारे बीच एक शिक्षक मौजूद हैं, श्री जीतेश कुमार जी, जिन्होंने गिजू भाई की शिक्षण पद्धतियों को अपनी कक्षाओं में अपनाया है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं।
4: नमस्कार।
1: तो जीतेश जी, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में शिक्षण के लिए गिजू भाई द्वारा बताई गई पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है
4: जी,
1: तो हमें और हमारे श्रोताओं को बताइए कि वो कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं।
4: देखिए, वैसे उनकी तो बहुत सारी पद्धतियां हैं
1: जी,
4: लेकिन कुछ खास हैं जिन पे मैंने काम किया है और मैं काम कर रहा हूँ। उनमें एक है नाट्य प्रधान पद्धति। हम सभी जानते हैं कि बच्चे भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले और नकल करना बहुत पसंद करते हैं
1: जी,
4: तो नाटक और कहानी के द्वारा किसी भी कठिन संकल्पना या घटनाओं के क्रम को बड़ी ही आसानी से समझाया जा सकता है
1: जी। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके अलावा कोई और पद्धति है
4: जी? और है, एक है युगल और सहभागिता पद्धति।
1: युगल और सहभागिता पद्धति
4: जी, इस पद्धति के बारे में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है
1: जी,
4: वो ये है कि इसमें बच्चे समूह शिक्षण की अपेक्षा कम समय में सीखते हैं।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है
4: जी। इसके अलावा एक पद्धति और है।
1: हाँ हाँ, बताइए।
4: प्रश्नोत्तरी पद्धति।
1: प्रश्नोत्तरी पद्धति
4: जी, इसमें बच्चों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है कि वो प्रश्न पूछें।
1: अच्छा।
4: और वो पूरे आत्मविश्वास से बेझिझक कक्षा में प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करते हैं। जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि इन सारी पद्धतियों को मिला करके जो सीखने का प्रतिफल है
1: जी,
4: वो बहुत ही शानदार है।

0: अच्छा
1: जी।
0: तो दोस्तों ये थे हमारे साथ जितेश कुमार जी। तो जितेश कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारी के लिए।
2: साथियों अभी आपने गिजू भाई द्वारा बताई गई कुछ शैक्षणिक पद्धतियों के बारे में जाना। बाद में धीरे धीरे गिजू भाई के उसी शैक्षिक चिंतन पर आधारित विद्यालय गुजरात महाराष्ट्र और उत्तर भारत के अनेक राज्यों में फैल गए और हजारों बच्चों को उनकी नूतन शिक्षण विधियों से दीक्षित किया जा सका।
0: गिजू भाई ने 100 से भी अधिक बालोपयोगी पुस्तकें लिखी। उन्होंने शिक्षकों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं। उनकी एक बहुचर्चित पुस्तक है दिवा स्वप्न। बाल शिक्षा के जगत में गिजू भाई की ये एक अनुपम कृति है। गुजराती भाषा में पुस्तक का पहला प्रकाशन सन 1931 में हुआ।
2: इस पुस्तक में गिजू भाई ने अपने शैक्षणिक प्रयोगों के बारे में बताया है, प्राथमिक शिक्षा की रूढ़िवादी प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है, बालकों में बढ़ रही शिक्षा के प्रति निरस्ता के कारणों की विस्तार से चर्चा की है। दरअसल वो रटंत शिक्षण पद्धति के विरुद्ध थे।
0: गिजू भाई के अनुसार
3: शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। विद्यालयों को बाल विकास की एक प्रयोगशाला होना चाहिए जिसमें बालकों के विकास के अनुरूप संपूर्ण साधन और सामग्री हो ताकि बालक स्वयं प्रयोग कर सकें और अनुभव प्राप्त कर सकें।
0: आदर्श शिक्षक होने के साथ साथ वो एक महान शिक्षाविद, चिंतक, विचारक और लेखक भी थे। चौवन वर्ष की आयु में 23 जून 1939 को शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित इस कर्मठ और विलक्षण कार्यकर्ता का निधन हो गया।
2: उनके नाम पर कई शिक्षक सम्मान स्थापित किए गए हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले शिक्षकों को दिए जाते हैं। उन्हें शिक्षा समुदाय और हम सबका कृतज्ञतापूर्ण नमन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गिजू भाई बधे का, एक विलक्षण शिक्षा शास्त्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार और विकास सांगवान, कलाकार शिमाइला परवेज, प्रवीण शर्मा, असर नवाज उस्मानी, सुनील लोहिया और परवेज गौहर, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना।
5: श्रोताओं अभी आपने सुना ये कार्यक्रम गिजू भाई बधे का।

आइए अब सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत, जिसके द्वारा आप जान पाएंगे कि एक बच्चे के मन की भावनाएं क्या क्या हैं और वो अपने अभिभावकों और शिक्षकों से क्या

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
3: सुनो ना।
2: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001424।
3: ओ 8700।

0: 4242 लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001 4242 पर।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
0: आपका बिजनेस है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
0: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001 4242 पर।
0: 8700001 4242।
2: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। शाम 4 बजे अपनी विशेष सभा के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 4 बजे हैं, थोड़ी ही देर में विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम शुरू हो गया है संदेश टू सोल्जर्स। और संदेश टू सोल्जर्स हमेशा की तरह से आज हमारे

0: तो आपने तो सैनिक स्कूल एक या दो नहीं तीन तीन स्टैब्लिश किए हैं,
1: जी
0: तो
1: जी
0: जाहिर है हमारी उस पर बात होगी। लेकिन सर हम शुरुआत करेंगे अपने आज के शो की, और हम आपके बारे में जो हमने थोड़ा सा एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया है, ज्यादा हम आपसे ही बातचीत में जानेंगे कि शुरुआत आपकी किस तरह से हुई और
1: जी
0: आपने जो आर्मी ज्वाइन की, इंडियन आर्मी, तो कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली या फैमिली बैकग्राउंड किस तरह से रहा?
1: जी जी मैं मूलतः लखनऊ का रहने वाला हूँ एंड आई कम फ्रॉम अ एकेडमिकली ओरिएंटेड फैमिली, जिसमें कि मूलतः ज़्यादातर लोग एकेडमिक्स और उससे जुड़े हुए अलाइड एस्पेक्ट्स में उन्होंने काम
0: अच्छा
1: किया पूरा का पूरा। तो आई एम द एल्डेस्ट अमंग्स थ्री सन्स ऑफ माई पेरेंट्स।
0: जी
1: तो घर में सभी लोगों का बेसिकली अकेडमी की तरफ रुझान ज़्यादा था। तो टू सेलेक्ट अ प्रोफेशन लाइक फोर्सेस, इट वॉज अ लिटिल डिफिकल्ट एंड ऑकवर्ड वन फॉर एवरीबडी कि
0: ओके
1: भाई ये कैसे। बट हाँ, मेरा शुरुआत से ही मन था, आई वॉज एनसीसी कैडेट, तो बड़ा मन था कि हम फौज ही ज्वाइन करें। तो इसी से प्रेरणा लेते हुए देन आई क्लेयर फॉर, आफ्टर डूइंग माई ग्रेजुएशन, क्लेयर फॉर कम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज और
0: अच्छा
1: फिर आई एम ए ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में आई गॉट कमीशन इन द जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री फ्रॉम इंडियन मिलिट्री अकेडमी। तो हमारी रेजिमेंट जो है एक बड़ी यूनिक रेजिमेंट है, जिसमें कि सारे के सारे ट्रूप्स जितने भी हैं
0: जी
1: वो सारे के सारे स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से ही आते हैं। तो वी हैव
0: अच्छा
1: सब्जेक्ट्स फ्रॉम जम्मू से लेकर वैली तक पूरा का पूरा, प्लस हाई हाईलैंडर्स भी हैं जैसे कि द्रास में कारगिल से लेकर इस साइड उरी और पुंछ तक का पूरा पूरा।
0: ओके, मतलब पूरा वो
1: हाँ,
0: एक
1: तो
0: बड़ा
1: हमारे हमारा
0: रीजन।
1: ट्रूप्स का जो कॉम्पोजिशन है वो
0: जी
1: कम्प्लीटली JNK का ही है। तो ये
0: ओके
1: अपने आप में बहुत ही यूनिक चीज़ है, यही हमारी ऑपरेशनल एज भी हमको मिलती है, इसी की वजह से हम ऑपरेशनली इतना अच्छा कर भी पाते हैं JNK में,
0: ओके
1: क्योंकि आप उन लोगों के साथ में ऑपरेट कर रहे हैं जिनको, जो कि उस टोपोग्राफी को बहुत अच्छे से जानते भी हैं। तो इस तरह करते करते फौज में काफ़ी टाइम कटा एंड देन आई वॉज गिवन द टास्क टू सेट अप न्यू सैनिक स्कूल्स। तो वहाँ से
0: जी
1: एक अकेडमिकली ओरिएंटेड जर्नी भी आगे स्टार्ट हुई,
0: यानी कि जो एकेडमी का आपका जो फैमिली का रहा, तो वापस वो
1: वो
0: आप
1: वापस घूम फिर के
0: वापस
1: वापस
0: घूम फिर करके आया। लेकिन
1: जी
0: सर जिस तरह से आपकी शुरुआत हुई, जो आपने सर्व किया, जो सेंसिटिव एरियाज कहा जाए, बहुत ही टफ, मतलब उनको फ्रंटियर्स कहा जाता है कि
1: जी
0: जम्मू
1: जी
0: कश्मीर से लेकर के अगर नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें, तो वो बहुत ही टफ रहा होगा, बहुत ही चैलेंजिंग रहा होगा। उसके बाद के तो टास्क बाद में आए, वो
1: बिल्कुल
0: कैसा था?
1: बिल्कुल। मिलिट्री के अंदर में इन्फेंट्री इज जनरली द कटिंग एज, जहाँ पे जिसको किसके लिए कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं माना जाता है।
0: अच्छा
1: तो इन्फेंट्री को सर्व भी करना पड़ता है पहाड़ों पे। तो जहाँ जहाँ पे यूनिट रही, जहाँ जहाँ पे हम लोग डिप्लॉय रहे, वहाँ वहाँ पे एंटी मिलिटेंसी और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में जो भी योगदान दे पाए हम लोग वो देते रहे।
0: अच्छा
1: हाँ जी, तो डिफिकल्ट, इट इज़ इंडी डिफिकल्ट, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक आप कट ऑफ रहते हैं चीज़ों से।
0: अच्छा
1: विंटर जो वैकेटेड पोस्ट होती हैं वहाँ, जहाँ से 5-5, 6-6 महीने भी आपको लग जाते हैं दोबारा वापस नीचे उतरने में। तो ऑपरेशनली इट्स अ डिफिकल्ट इन योर,
0: ओके
1: यस।
0: तो उसमें सर कोई ऐसा इंसिडेंट रहा होगा जो आज भी आपके साथ जुड़ा हो, आपको याद रहा हो, या आपको सताता हो, या आपको याद आता हो?
1: जी जी देर नंबर ऑफ सच इंस्टेंसेज। एक बार ऐसा था कि पोस्ट पे काफ़ी टाइम रहने के बाद जब बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ जाती है
0: जी
1: तो आपकी आंखें और आपका दिमाग अट्यून्ड हो जाता है टू सी, बिकॉज आप ऑपरेशन में भी उसमें जा रहे हैं, एम्बुश में भी उसी बर्फ में जा रहे हैं।
0: सिचुएशन में
1: तो
0: बिल्कुल
1: एवरीथिंग इज वाइट इन फ्रंट ऑफ यू, वेयरिंग वाइट क्लोथ, योर इग्लू इज वाइट, योर द आइस इन फ्रंट ऑफ यू इज वाइट। तो ग्रीनरी एक बहुत हम किसी भी इंसान के जीवन का बड़ा एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है।
0: बिल्कुल
1: तो पोस्ट से नीचे उतर के आने के बाद में नॉर्मल सब्जी खाना, लौकी को देखना या चलती हुई बकरी और जानवरों को देखना, ये सब चीज़ें बड़ी अम्यूजिंग से लगने लगती हैं कुछ टाइम के लिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कम डाउन एंड टेक अ विकेट, टेक अ ब्रेक ऑल्सो फॉर अ वाइल, वो बड़ा आवश्यक हो जाता है। तो इस तरह के दुनिया भर के तमाम इंसिडेंसेस हैं।
0: जी
1: ऑपरेशनली मैं नहीं जाऊँगा बिकॉज वो चीज़ एक थोड़ा सा
0: अलग
1: उसकी अलग
0: लेवल।
1: सैंक्टिटी होती है। बट हाँ,
0: जी
1: फॉर एनी इंडिविजुअल इट इज़ अ यूनिक एंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ एंड एक्सपीरियंस, बड़ा
0: ओके
1: ही अलग तरीके का।
0: तो आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे खास मेहमान हैं कर्नल वरुण वाजपेयी, VSM, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं। और आप बात करेंगे आगे कि किस किस तरीके के फेजेस आए उनकी लाइफ में, क्या क्या चैलेंजेस सामने आए, और कब उनको VSM से नवाजा गया। तो आप बने रहे हमारे साथ हमारे प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में आकाशवाणी रेनबो पर। आप हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से भी दुनिया भर में, और आप हमें SMS, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर, और साथ ही आप हमें कॉल करके भी बात कर सकते हैं। हमारे आज के मेहमान कर्नल वरुण वाजपेयी VSM से, नंबर है दिल्ली का कोड 01123421085, 2342108 5।

0: 102.6 देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स, आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ। और आज के हमारे खास मेहमान हैं कर्नल वरुण बाजपेयी, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित। सर, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आपका हमारे शो संदेश टू सोल्जर्स में।
1: जी धन्यवाद, थैंक यू।
0: सर, हमने बात करी कि किस तरह से आपने शुरुआत करी, और काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका जो है वो शुरुआती एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आपने कहा कि कहीं भी कोई फैमिली में भी दूर दूर तक कोई आर्मी से जुड़ा हुआ नहीं था, तो ये काफ़ी पहला ही चैलेंज रहा आपके लिए। फिर उसके बाद आपने 3 नए सैनिक स्कूल एस्टैब्लिश करने में बेहद ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया
1: जी।
0: बल्कि मिजोरम का सैनिक स्कूल तो आपने सिंगल हैंडेडली ही खड़ा किया
1: जी।
0: क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े और कैसे आपने उनको टैकल करा और उसको कामयाब बनाया
1: जी? मेरी पोस्टिंग सैनिक स्कूल गोपालगंज बिहार में एज अ रजिस्ट्रार आई थी, तो वहाँ पर तकरीबन 1.5 साल रहने के बाद में मुझे ये टास्क दिया गया कि मिजोरम में कैपिटल आइजोल से 85 किलोमीटर डाउन साउथ ऑन द इंडो बर्मा बॉर्डर के पास में एक छोटा सा जिला है, इसका एक छोटा सा हैमलेट है बेसिकली, चिंगचिप करके, वहाँ पे आपको सैनिक स्कूल स्टैब्लिश करना है। तो फॉर मी, मेरे लिए बड़ा ही यूनिक सा एक्सपीरियंस रहा कि इतने सिक्लूडेड से एरिया में जा, जन था कि भाई राष्ट्रीय भावना और ये अवसर सबको दिए जाएँ, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो, कितना भी फार फ्लंग क्यों ना हो। तो इस उद्देश्य के साथ पे 2017 में मैं मिजोरम पहुँचा, और वहाँ पे चिंगचिप जगह है जो कि सरचिप डिस्ट्रिक्ट के अंदर में छोटा सा एक एरिया है, वहाँ पे हम

0: सैनिक स्कूल को स्टैब्लिश करने का बेड़ा उठाया,
1: ओके
0: और तकरीबन साहब 7 महीने लगे हम लोग को, दिसंबर से लेकर अगले साल मई जून तक का, जिसमें बिल्डिंग भी बनवाई गई।
1: अच्छा।
0: जिन लोगों ने अपना लैंड डोनेट किया था उनको भी गवर्नमेंट ने इनकम पास किया साथ में, और हमने उन सबको जॉब भी दिए वहाँ पे।
1: अच्छा।
0: सो एक बार एक तो एक तरीके से स्टेक होल्डर्स को बढ़ा के हमने सबको साथ में लेके काम किया।
1: साथ में लेकर
0: शुरुआत में बड़ी दिक्कतें भी आई, चर्च को एक कुछ अपने अप्रिहेंशन थे, बिकॉज दैट इज अ प्राइमरली अ क्रिश्चियन बिलीफ स्टेट, तो चर्च से हमको मैनेज करने में कभी कभी दिक्कतें भी आई। बट बाद में जब उनको लगा कि नहीं यहाँ पे इनका पर्पस तो ये है कि भाई इससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, यहाँ के बच्चों को आगे फौज में अवसर बनने का, फौज ज्वाइन करने का अवसर मिलेगा, तो देन इट वाज अ गुडविल विच वाज एस्टैब्लिश। फिर चर्च ने ही हमारा बड़ा हेल्प भी करी कि बाद में स्कूल का इनॉग्रेशन करने के टाइम पे आप मतलब उन्हीं के बेंचेस उन्हीं के वो टेबल तक आई। बट इट वाज अ ट्रेमेंडस एक्सपीरियंस अपने आप में। और सबसे अच्छी बात थी, सबसे बड़ा योगदान शायद चिमचक का ये रहा है कि स्कूल से शुरुआत हुई थी इंडियन आर्मी के अंदर में गर्ल स्टूडेंट्स को लेने की, जो कि बाद में एनडीए तक था। तो 2018 में हमारा पहला बैच आया था जिसमें लड़कियों को भी हमने शामिल किया था।
1: अच्छा।
0: इस तरीके से अभी सभी सैनिक स्कूलों में गर्ल कैडेट्स भी हैं और एनडीए में भी लड़कियां पास आउट हो रही हैं, आईएमए भी जा रही हैं।
1: अच्छा।
0: तो ये अपने आप में बड़ा सुखद और बहुत ही एक रिमार्केबल एक्सपीरियंस था।
1: बिल्कुल, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जैसे आपने बताया कि जो चैलेंजेस आपको सामने करना पड़े वो तो अब पहला स्कूल खड़ा करने में, तो क्या आगे जो आपने बाद में किए उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, वो किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा, क्या वो चैलेंजेस फिर से वही सब दोबारा से सामना करना पड़ा या आसान हो गया था?
0: नहीं, एक बार चीजों को कर लेने के बाद थोड़ा तो मतलब मनोबल बढ़ जाता है, चीजें आसान भी हो जाती हैं। अरुणाचल वॉज ओके, झुंझुनू हैड इट्स ओन चैलेंजेस, बिकॉज झुंझुनू क्या है, झुंझुनू एक ऐसा जिला है देश का जहाँ पे हर घर में फौजी है बेसिकली।
1: अच्छा।
0: तो अगर हम निकालें कि ऑन एवरेज दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फौजीज इस अच्छा। जिले में सबसे ज्यादा फौजीज हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर में। तो यहाँ पे बच्चों को उन क्लास 6 में जो बच्चे आते हैं वो बिल्कुल अपनी मदर के फोल्ड से निकल के बाहर आते हैं ना, कि घर में तो उनको हाथ से भी खाना खिला दिया जाता है कभी कभी। ऐसे बच्चों को स्कूल में ला के उनको सेटल करना, उनको बताना कि बच्चों कैसे उठना है, कैसे बिस्तर लगाना है, कैसे अपने शूज को पॉलिश करना है, कैसे अपने ड्रेस को लगाना है, कैसे यू हैव टू स्टे इन दैट स्टेट ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ऑल्सो, कैसे कैसे अपना अपनी दिनचर्या को आगे लेके आना है, पढ़ना कैसे है,
1: पूरा लाइफस्टाइल।
0: तो सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी स्कूल को एस्टैब्लिश करने में इस टाइप के ये होता है कि जब आप जाते हैं एज अ फाउंडर प्रिंसिपल तो आपके साथ में आपके कुछ लोग ही होते हैं जो कि अलग अलग कॉलेज से पूल होके आए होते हैं, फिर ग्रेजुअली धीमे धीमे भर्तियों के माध्यम से टीचरों को लिया जाता है, कुछ स्टाफ को लिया जाता है, उसके बाद में बच्चे आते हैं। तो इतने कम स्टाफ के साथ में उनका मैस चलाना, उनको ट्रेनिंग करवाना, उनका पूरा मेडिसिन सबका इंतजाम भी करवाना, डे टू डे चैलेंजेस आर मतलब एक फाउंडर प्रिंसिपल के तरीके से मेरे पास मेरा दिन शुरू होता था सुबह 6 बजे एंड आई हैड टू वाइंड अप ओनली मतलब जब बच्चे सो जाते थे जाके। तो झुंझुनू वाज इटसेल्फ अपने आप में अमेजिंग। और सबसे अच्छी बात है कि इन बच्चों में इतना जोश था साहब कि झुंझुनू में इन्होंने मतलब उस सैनिक स्कूल को एक ओएसएस में कन्वर्ट कर दिया। इट इज अ ग्रीन कैंपस नाउ, इतना सुंदर है कि अगर आप इंटरनेट से भी देखेंगे तो आपको फोटोग्राफ देख के या मंत्रमुग्ध हो जाएंगे।
1: तो जबकि उसमें बताया जाता है कि झुंझुनू अपने आप में बहुत ही गर्म एक रीजन होता है, बड़ा गर्म इलाका है, तो उसमें इस तरीके से इसको बना पाना, तो ये मतलब आपकी अपनी कोशिश रही, इसमें कितने लोगों ने साथ दिया, और जो बच्चे आपने जैसे कहा कि वो तो जाहिर है वो तो सीख रहे हैं आपके साथ, तो क्या वो भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूटर रहे?
0: बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे तो स्कूल का एक अहम हिस्सा बन गए थे, हम जो भी कर रहे थे बच्चों को साथ में लेके कर रहे थे। देखिए साहब,
1: तो एक बड़ी टीम हो गई,
0: एक बड़ी टीम हो गई। द एंटायर ऑब्जेक्टिव वाज वेरी सेम कि ये अच्छे इंसान बने पहले, ये अच्छे सोल्जर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर अपने आप बनेंगे बाद में।
1: बिल्कुल,
0: टू इनकल्केट अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग ना, वो सेंस सिखाना, वो इंग्रेन करना उनके अंदर में, दैट वॉज द बिगर एंड द लार्जर एम। एक्चुअली मैं बड़ा खुश हूँ कि इसमें से कई बच्चे अभी आर्मी में ऑफिसर बन चुके हैं।
1: अच्छा।
0: कई लड़कियां बन चुकी हैं जो वहां पे गई थी, तो आई एम श्योर ये एक मूवमेंट है जो देश में बहुत दूरगामी परिणाम देगा आगे आगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जो बीज आपने वो बोया वो अब आहिस्ता आहिस्ता पौधा बन के पेड़ बन रहा है और फल फूल रहा है और सब तरफ फैल रहा है।
0: बिल्कुल।
1: तो ये जो सिचुएशन आपने वहाँ की बताई, उसमें उन बच्चों को जैसे आपने कहा कि उनके घरों से उनके माओ की गोद से निकाल करके लाना, उनको डिसिप्लिन सिखाना, पूरा लाइफस्टाइल बदलना, उनको एक एक चीज सिखाना, वो मैनेजमेंट जो था, वो आपकी जो टीम थी उसमें कितने लोग थे और किस तरीके से आपने उसको मतलब प्लान किया, मैनेज किया, ऑर्गेनाइज किया?
0: शुरुआती दौर में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ये दो लोग होते हैं, उसके साथ साथ में 5 टीचर्स लिए आते हैं, 5 टीचर्स और करीब 6-7 का और स्टाफ। तो पूरे एक बड़े से कॉलेज को मैंने 25 एकड़ के आसपास के कैंपस को या 50 एकड़ के कैंपस को शुरुआत में मैनेज करने के लिए ले देके आपके पास में गिनती की यही 12-15 लोग होते हैं
1: बस,
0: यही आपकी बैकबोन होते हैं, यही आपके लेफ्ट राइट आपके आँख कान नाक सब कुछ होते हैं, तो इन्हीं से ही सारा काम करना होता है। तो सबसे बिगेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मोटिवेशन, कि सबको मोटिवेट करके एक लार्जर एम से अलाइन करना कि हम सबका उद्देश्य देखिए साहब ये है, ये पहला बैच है, इसकी नींव अगर

0: रखी जा गई तो कम से कम ये आगे चल के सस्टेन करेगा आगे जाके।
1: बिल्कुल, और ये तो मतलब हमेशा के लिए हमेशा एक के लिए। बहुत बड़ी मिसाल भी बन गया। तो क्या कभी उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ा, कभी ऐसी मुश्किलें आई जहां लगा कि अब शायद ये हम पूरी तरीके से कामयाब शायद ना हो पाए?
0: नहीं सर, चैलेंजेस बहुत आए, बट दिमाग में ये चीज बहुत जरूरी बहुत क्लियर थी कि ये एक टफ फेज है, बट हाँ इससे निकल के आने के बाद में ये स्कूल जो तैयार हुआ है ये आगे से, देखिए हम सब शायद फेड हो जाएंगे कितने कितने टाइम पे आके, बट ये संस्थान रहेगा, इसकी एथॉस रहेगी, इसकी कार्यशैली रहेगी, और जो जो चीजें अभी करी गई ये शायद चलती रहेंगी आगे तक
1: हमेशा के लिए, हमेशा बन गया और वो हमेशा ही वहां से नए बच्चे निकल करके आते रहेंगे।
0: जी जी,
1: तो ये
0: जी,
1: बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं कहूंगा कि ये सबसे बड़ा अचीवमेंट आपके पूरे करियर का, अगर मैं गलत नहीं कह रहा।
0: मैं बिल्कुल आप मैं मानता हूँ आपकी बात, ये सबसे सैटिस्फाइंग फेज था हमारे करियर का, और क्योंकि एक ऐसी चीज थी कि आप उन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं जिनको आपको, जिनमें आपका भविष्य दिख रहा है आपका उनका, तो ये अपने आप में बहुत ही सुखद, बहुत ही अमेजिंग फेज था करियर का।
1: सर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो आपको अनथक कड़ी मेहनत, एग्जेम्पलरी फोरसाइट, जबरदस्त फुल प्रूफ प्लानिंग, लीडरशिप और अपने कर्तव्य से बढ़कर दिए गए अटूट समर्पण के लिए, यही सब काम उसमें शामिल थे जो राष्ट्रपति द्वारा आपको विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था, तो कैसा महसूस हुआ आपको उस वक्त, वो क्षण, वो मोमेंट्स, और यही वो आपका काम था जिसकी बदले आपको BSM से सम्मानित किया गया
0: जी,
1: तो वो जो मोमेंट था।
0: देखिए साहब, कभी भी किसी रिकग्निशन के लिए काम नहीं किया, काम तो अपनी सेवा भाव से अपने दम से किया पूरा का पूरा
1: जी।
0: हाँ बस ये था कि तीन स्कूल स्टैब्लिश करना अपने आप में एक अचीवमेंट था, जिसको हमने अचीवमेंट की तरह तो नहीं लिया, बट हाँ जिन लोगों ने, जो मेरे ऊपर से उच्च अधिकारी थे, उन्होंने उसको अचीवमेंट माना और उसके बाद में राष्ट्रपति जी से ये सम्मान मिला, तो अपने आप में ये बहुत ही सुखद अनुभव था। इट वॉज एक्चुअली ट्रेमेंडस अचीवमेंट।
1: सर ये आपके लिए अचीवमेंट था, आपके लिए एक बहुत बड़ा एक मेडल था और ऑनर भी था। आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके जो मिलने वाले थे, उनका क्या रिएक्शन था? ये एक अलग सी चीज है
0: जी,
1: बड़ा इंटरेस्टिंग रहा हो तो वो बताइए हमें।
0: मुझे याद है जिस दिन ये अवार्ड डिक्लेयर करा गया था, हमारी एक कोर्समेट ने मुझे कॉल करके बताया कि भाई तुम्हारा नाम अवार्ड की लिस्ट में है, तो अपने आप में बस सबसे सुखद अनुभव था वो वाला। पर हाँ ये फौज में बहुत चुनिंदा लोगों को ही इस तरह से अवार्ड दिए आते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो अपने आप में ये अवार्ड दिया जाना बहुत सुखद अनुभव था और बहुत प्रोत्साहन भी मिला इस चीज़ से कि आगे भी अच्छे करते रहना है।
1: बिल्कुल जी। सर एक चीज़ यहाँ पर हमें बताइएगा कि जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं और सैनिक स्कूल का जो प्रोसीजर होता है कि कैसे वो आए, एडमिशन लें, फिर आगे बढ़ने के लिए उनके ऊपर क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो थोड़ा सा बताइएगा हमारे लिसनर्स को।
0: जी देखिए, सैनिक स्कूल भारत में करीब 31 सैनिक स्कूल हैं एज ऑफ नाउ। इन सभी स्कूलों में जो एडमिशन होता है वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से होता है, जिसको कि NTA कंडक्ट कराता है। तो जो भी बच्चे क्लास 5 पास कर चुके हैं या 5

0: एडमिशन लें, फिर आगे बढ़ने के लिए उनके ऊपर क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो थोड़ा सा बताइएगा हमारे लिसनर्स को।
1: जी देखिए, सैनिक स्कूल भारत में करीब 31 सैनिक स्कूल हैं एज ऑफ नाउ। इन सभी स्कूलों में जो एडमिशन होता है वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से होता है, जिसको कि एनटीए कंडक्ट कराता है। तो जो भी बच्चे क्लास 5 पास कर चुके हैं या 5

0: हो जाता है। तो सर इसके अलावा भी कोई क्राइटेरिया होता है या कोई वेबसाइट है जिसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं या कोई और प्रोसीजर है?
1: यस यस, अगर गूगल करेंगे सैनिक स्कूल एडमिशंस की वेबसाइट भी अलग है, सैनिक स्कूल सोसाइटी की वेबसाइट भी अलग है, और इन सभी स्कूलों के अलग अलग स्वयं की वेबसाइट भी है जिसपे कि जो लोग एडमिशन चाहते हैं वो जाके जानकारी भी ले सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, एवरीबडी हैज द डेटा विद हिम, तो सब लोग उस पे जाके देख सकते हैं, जिसको जहां पे चूज करना है दे हैव ऑप्शन।
0: ओके, तो ये इन वेबसाइट से और सैनिक स्कूल सर्च करेंगे गूगल पर तो सारा प्रोसीजर तो सामने आ जाएगा उसके थ्रू। लेकिन आपने कहा कि जो पांचवी पास आउट कर रहे होते हैं बच्चे वो
1: या जो पास आउट हो चुके हैं
0: हाँ,
1: 12 साल की लिमिट होती है,
0: 12 साल की,
1: तो 10 से 12 के बीच में ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं।
0: ओके, हमारे साथ हैं आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे स्पेशल गेस्ट कर्नल वरुण वाजपेयी VSM। आगे भी हम उनसे बातचीत रखेंगे जारी और कुछ और भी उनके पहलू पर जिंदगी के और करियर के डालेंगे रोशनी। आप बने रहें हमारे साथ रेनबो पर। आप हमें व्हाट्सएप करके सवाल कर सकते हैं 9868107070 पर।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हमारा स्पेशल शो संदेश टू सोल्जर्स। और हमारे स्पेशल गेस्ट हैं आज के कर्नल वरुण वाजपेयी VSM। सर, हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से आपने 3 नए सैनिक स्कूल को एस्टैब्लिश किया, कितना चैलेंजिंग था और कितने ज़्यादा आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, और वही आपकी मेहनत और वही चैलेंजेस जो आपने एक्सेप्ट किए और उनको फुलफिल किया, जिसकी वजह से आपको विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति द्वारा। तो हमने आपकी फीलिंग्स ही पूछी और हम फीलिंग्स अब देखना चाहेंगे। हमारे पास कुछ मैसेजेस आए हैं व्हाट्सएप पर, हम देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। ये है मैसेज, जय हिंद सर जी, रजनीकांत हैं ये रघुनाथ पाटिल वार्ड 1 से। और इसके अलावा मैसेज है, हेलो सर, माय हार्टेस्ट सैल्यूट टू ऑनरेबल गेस्ट टुडे एंड जय हिंद टू ऑल आवर इंडियन आर्मी फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टुवर्ड्स द कंट्री। आई बो माय हैट टू देम माय सेल्फ। अंजलि लोध फ्रॉम काकरोला द्वारका सेक्टर 15 दिल्ली। वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्लीज शेयर माय मैसेज टू रेस्पेक्टेड सर।
1: थैंक यू सो मच।
0: तो आपका मैसेज जो है अंजलि, हमारे जो गेस्ट हैं आज के कर्नल वरुण वाजपेयी, उन्होंने सुन लिया है। और एक मैसेज और है, ये शरद का मैसेज है, वो गुड इवनिंग सर, आपको सल्यूट कर रहे हैं शरद।
1: धन्यवाद।
0: तो ये तो ही बात जो हमारे मैसेजेस आए हैं, आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर और कॉल कर सकते हैं दिल्ली के कोड के साथ 011।

0: कर्नल वरुण वाजपेयी, उन्होंने सुन लिया है। और एक मैसेज और है, ये शरद का मैसेज है, वो गुड इवनिंग सर, आपको सल्यूट कर रहे हैं शरद।
1: धन्यवाद।
0: तो ये तो ही बात जो हमारे मैसेजेस आए हैं, आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर, और कॉल कर सकते हैं दिल्ली के कोड के साथ 011।

0: प्लस जो हमारे
1: जी
0: यहाँ दो कॉलेजेस हैं, कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज और कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इनका
1: अच्छा
0: प्रबंधन और प्लस डे टू डे एकेडमिक मैनेजमेंट पूरे इंस्टीट्यूट का, वो एक रजिस्ट्रार के माध्यम से किया जाता है।
1: ओके okay.
0: तो आई
1: तो ये बहुत ही एक अहम भी और बहुत ही मतलब टफ होता है, क्योंकि अब बिल्कुल ही एकेडमिक्स में आकर के उस चीज़ को
0: एब्सोल्युटली
1: संभालना।
0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली कमिंग फ्रॉम अ इन्फेंट्री बैकग्राउंड एंड कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड विच वॉज हार्ड कोर ऑपरेशनल बैकग्राउंड, से एक एकेडमिक मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन वॉज अ डिफरेंट चैलेंज ऑल टुगेदर। मैं तो
1: जी
0: उस प्रकार का व्यक्ति था कि मुझे हेमेटोलॉजी और हेपेटोलॉजी के बीच में ढंग से फर्क नहीं पता था, मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी मेडिसिन
1: जी
0: साइंसेज और क्लिनिकल साइंसेज के बारे में
1: तो पहले आपको खुद सीखनी पड़ी वो।
0: जी। बट हाँ, 3 साल 4 साल हो गए वहाँ पे। उन 4 सालों में द एक्सपीरियंस हैज़ बीन ट्रमेंडस, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली और बहुत चीज़ों को कंट्रीब्यूट भी किया हम लोगों ने। सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स को हमने बढ़ा के उनकी संख्या काफ़ी बढ़ी वहाँ पे, तो पहले 28 थे, अब करीब 41 हैं।
1: अच्छा
0: हाँ, ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो कि इंडिया में क्लिनिकल सर्विसेज देने वाले इंस्टीट्यूटों में नंबर 3 पे आता है,
1: ओके
0: एम्स दिल्ली और चंडीगढ़ पीजीआई के बाद में।
1: ओके
0: और यूपी के करीब 26-28 करोड़ पॉपुलेशन का एक सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के लिए यहीं पे एक अवसर मिलता है।
1: अच्छा
0: तो ये अपने आप में बहुत ही ट्रिमेंडस अचीवमेंट रहा। ये रहा कि भाई लोगों को हेल्प भी करी करी काफ़ी
1: जी
0: करी,
1: जी
0: और नए एकेडमिक कोर्सेज को, नर्सिंग कॉलेज को रीइंस्टेट करने में, उसकी जो ग्लोरी बनती है उसको वहाँ पे लाने में, तो उसमें काफ़ी योगदान किया गया।
1: जी तो सर, अब जैसे आजकल के बच्चे हैं वो भी उसके लिए क्या आप कह सकते हैं कि करियर के लिए या अपने आप को और अपग्रेड करने के लिए, तो पीजीआई उसमें किस तरीके से अपना योगदान देता है, रोल प्ले करता है, तो किस किस तरह से इसका फायदा उठाया जा सकता है?
0: देखिए, पीजीआई लखनऊ में है और एक चंडीगढ़ में भी है। जो लखनऊ वाला पीजीआई है, दैट इज पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट,
1: ठीक है
0: एंड इसमें यहाँ पे एमबीबीएस कोर्सेज नहीं होते हैं, बट
1: जी
0: एमडी और एमएस कोर्सेज होते हैं और डीएम और एमसीएच कोर्सेज होते हैं, जो कि और प्लस पीएचडी भी हैं, जो कि
1: ओके
0: सुपर स्पेशलाइज कोर्सेज हैं। तो इनके लिए आपको ग्रेजुएट होने के बाद में नीट पीजी और नीट सुपर स्पेशलिटी एग्जाम में अपियर करना पड़ता है, और जो लोग
1: अच्छा
0: एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं,
1: जी
0: जहाँ पे इनके अच्छे नंबर आते हैं, तो रैंक के माध्यम से उनको रिस्पेक्टिवली कॉलेज अलॉट किए जाते हैं। तो ये चूज कर सकते हैं, ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री,
1: जी
0: ऑटोनोमस है, और सबसे अच्छी बात है यहाँ के डिपार्टमेंट्स पुराने हैं, यहाँ की लेगेसी बहुत रिमार्केबल है, और जिस तरीके से एक संस्थान चल रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे एक शिक्षा की पद्धति बनाई गई है, वो बहुत यूनिक और रिमार्केबल है।
1: सर, जैसे हमने बात करी थी कि इसके जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें और उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, बदलाव लाए जा रहे हैं, तो वो किस तरीके के हैं और उनसे कितना फ़ायदा हो रहा है अभी?
0: बहुत सारे बदलाव हैं। देखिए, आप प्राइमरी केयर होता है, फिर टर्शरी केयर, फिर ना सेकेंड प्राइमरी होता है,
1: अच्छा
0: सेकेंडरी होता है, टर्शरी केयर होता है, उसके बाद क्वार्टनरी केयर भी होता है। तो अब संस्थान एक नए लेवल पर जा रहा है, कुछ स्तर पर जा रहा है, जहाँ पे टर्शरी केयर के बाद में अब हम क्वार्टनरी केयर की बातें करने जा रहे हैं। जहाँ
1: अगर हम एक लेमैन के हिसाब से समझें या
0: जी,
1: आम
0: जी, जी,
1: आम भाषा के हिसाब से,
0: जी,
1: तो उसको कैसे हम इसको
0: जी,
1: समझेंगे कि ये कौन कौन से आप
0: हाँ,
1: जो जो ये बता रहे हैं आप
0: संस्थान में, जैसे कि टर्शरी केयर होता है जिसको हम बोलते हैं कि सुपर स्पेशलाइज केयर होता है, कि
1: अच्छा
0: जैसे कि आपके ट्रांसप्लांट्स हो गए, जैसे
1: ओके
0: कि आपके इंपॉर्टेंट सर्जरीज हो गई,
1: अच्छा, मतलब
0: ट्रीटमेंट्स
1: तो
0: हो गए,
1: सेंसिटिव या बहुत ही
0: यस
1: गंभीर
0: जेनेटिक ट्रीटमेंट्स हो गए,
1: अच्छा
0: तो इनका भी एक हायर लेवल होता है, इसको हम बोलते हैं क्वार्टनरी केयर, जिसमें मल्टीपल स्पेशलिटीज को अमैलगमेट करके एक जगह पे
1: अच्छा
0: किसी भी पेशेंट के सारे रोगों का उपचार एक साथ करने की पद्धति निकाली जाती है। तो इन चीज़ों को अभी हम लोग लेके आ, डायरेक्टर साहब मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं, एंड वी विल टेक इट फर्दर इन अ बिग वे नाउ। सो पीजीआई इज गोइंग टू बी ऑन अ डिफरेंट पेडेस्टल ऑल टुगेदर।
1: ओके
0: हाँ, तो प्लस यहाँ पे ये यह है कि भाई जो जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आएंगे उनको जो एक्सपोजर मिलेगा यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ पेशेंट को देखने में, डिफरेंट प्रॉब्लम को क्योर करने में ना, वो बहुत रिमार्केबल होगा
1: सर। लेकिन एक चीज यहाँ पर हम ये भी महसूस करते हैं आपसे बातचीत करते हुए कि जो चैलेंजेस आपको सैनिक स्कूल एस्टेब्लिश करने में आए होंगे,
0: जी
1: ये तो मुझे और भी टफ महसूस हो रहा है कि इसको अपग्रेड करना, इतने हाईली सेंसिटिव जो ट्रीटमेंट आपने बताए उनको और बेहतर।
0: देखिए सर, दोनों के चैलेंजेस डिफरेंट थे। सैनिक स्कूल में आई वाज द लीडर एंड आई हैड ऑल द पीपल हु अंडर मी एंड आई कुड यूज देम एट माय ओन डिस्पोजल। यहाँ पे एक टीम है जो कि अलग अलग कॉम्पिटेंसीज, कैपेबिलिटीज और अलग अलग एनवायरनमेंट से आती है, तो यहाँ पे एक टीम भावना को लेकर चलना और उनको सबको समन्वय के साथ लेकर चलना आगे, वो अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, बिकॉज बड़ा इंस्टीट्यूट है, ज्यादा लोग भी हैं, तो दोनों के अलग अलग चैलेंजेस हैं। यहाँ पे हम लखनऊ में बैठे हैं, वहाँ पे आप आइजोल से 85 किलोमीटर डाउन साउथ थे जंगल में, एक
1: अच्छा
0: तरीके से जहाँ पे बहुत मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी वहाँ पे, जहाँ फोन तक नहीं मिलता था उस टाइम पे, तो इन सब में अलग अलग चैलेंजेस हैं, दोनों के अलग अलग वो हैं, प्रारूप हैं, बट द फैक्ट इज कि यस बोथ आर इक्वली चैलेंजिंग एंड दैट इज व्हाट कीप्स मी गोइंग।
1: जी
0: जी
1: तो लेकिन कभी आपको ऐसा लगा कि आप बहुत ही एग्जॉशन आपको महसूस हो, आपको लगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे भी ब्रेक चाहिए, ऐसा कभी आपको लगा?
0: देखिए सर, ब्रेक सबको लेना भी चाहिए, टफ टाइम्स आते हैं, बट टफ टाइम्स में वही कहावत

0: नहीं कि भाई टफ टाइम्स डोंट लास्ट ना, बट टफ पीपल डू।
1: एग्जैक्टली
0: तो भाई टफ पीपल डू लास्ट, तो वही वाली एक सच्चाई है कि जो इंसान मजबूत है, जो इंसान सहनशील है, जिसके अंदर में अपने आप को दोबारा एनर्जाइज करने का दम है, तो वो लगा रहेगा, रास्ता निकाल लेगा अपने आप।
1: तो बिल्कुल वो
0: जी
1: जोश और जज्बा बरकरार रहना चाहिए, तो आप कभी भी थमते या रुकते नहीं है, आप एक छोटा सा ब्रेक लेकर फिर आगे बढ़ते
0: फिर
1: हैं।
0: आगे बढ़ते हैं
1: सर
0: बिल्कुल।
1: इसी में पीजीआई के बारे में बात करें कि आपने पीजीआई के नर्सिंग कॉलेज को रीस्ट्रक्चर, इसका पुनर्गठन भी किया, तो वो कैसे किया गया, क्योंकि ये भी एक अलग, एक पूरा एक अपने आप में काम था, कार्य था।
0: जी, देखिए नर्सिंग कॉलेज एक, नर्सिंग एक बैकबोन है हमारी क्लिनिकल सर्विसेज की।
1: ओके
0: अच्छे नर्सेज ही अच्छे केयर को दे पाएंगे।
1: ठीक
0: डॉक्टर्स ने इलाज करना है, सर्जरी
1: बिल्कुल
0: करनी है, बट उसके
1: जी
0: बाद में पोस्ट ऑपरेटिव केयर है या किसी भी मरीज की देखभाल है, केयर है, वो तो नर्स के जिम्मे आती है। तो अच्छा नर्सिंग का करिकुलम बनाना, अच्छे नर्सेज को ट्रेन करना, तो हम लोगों ने लखनऊ में इस कॉलेज को पूरा रिस्ट्रक्चर किया। कॉलेज चल रहा था पहले से, पर
1: जी
0: उसके अंदर में बहुत ही जो ब्रॉड लेवल के बदलाव हम लोग लेके आए, हमने कोर्स को, करिकुलम को रिस्ट्रक्चर किया, टीचर्स को लेके आए अच्छे, जो हमारा ट्रेनिंग को हमने और प्रोएक्टिव बनाया, अकाउंटेबल बनाया,
1: जी
0: और उनके मेट्रिक्स को हमने किया। तो यूपी गवर्नमेंट ने अपने अपने अपने जो मेजर्स को लगाया वहाँ पे, तो जिन मेजर्स पे एक समय पे हम 38-35 नंबर्स पे आ रहे थे, वहाँ पे वी रीच टू द लेवल ऑफ 92, एंड
1: ओके
0: पीजीआई वॉज नॉमिनेटेड एज अ मेंटर इंस्टीट्यूट, जिसमें हम पूरे स्टेट की या जहाँ जहाँ प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस भी हैं, इन सबको मेंटर करने के लिए हमको दिया गया कि आप उनको मेंटर भी करिए और बताइए कैसे आप कैसे अपने स्टैंडर्ड को ऊपर लेकर जाया जाता है। तो ये
1: तो ये
0: अपने
1: भी
0: आप
1: एक
0: में
1: बहुत बड़ा अपने आप
0: जी
1: में
0: जी
1: अचीवमेंट
0: जी
1: था,
0: जी
1: और जाहिर है वो बहुत टफ भी रहा होगा, तो
0: हाँ
1: इसमें इसमें फिर किस तरीके का आपको।
0: इसमें सबका योगदान है, कॉलेज के प्रिंसिपल का, कॉलेज के फैकल्टी का, बाकी बाकी लोग जो इन्वॉल्व थे, बट
1: जी
0: हाँ सबको लेके चलना हो, ये बोलना कि नहीं साहब हमको इस स्टैंडर्ड को लेके ऊपर बढ़ाना है, और
1: जी
0: जो जिस चीज के लिए भी ये जाना जाता है वो स्टैंडर्ड को हमको अचीव करना है, तो दैट इज हाउ वी कुड डू इट एंड इट इट केम टू अ लेवल।
1: बिल्कुल सर, लेकिन एक चीज यहाँ भी है कि एक तो होता है कि आप एक बुनियादी तौर से मतलब बिल्कुल रूट से एक नई चीज खड़ी कर रहे हैं, और एक है कि रीस्ट्रक्चर उसको
0: जी
1: करना,
0: जी
1: तो वो मुझे लगता है कि ज्यादा टफ रहा
0: यस
1: होगा।
0: रिस्ट्रक्चरिंग में सबसे पहला जानना ये जरूरी होता है कि किन चीजों से आप लैग कर रहे हैं।
1: हाँ
0: जब आप ये जान जाते हैं कि भैया ये चीज हमको पुल डाउन कर रही है, देन उनको स्ट्रीमलाइन करना और उनके अलाइड चीजों को साथ में इकट्ठा करना, वो एक अलग टास्क होता है। तो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप जो लोग कॉम्पिटेंट हैं,
1: जी
0: जो इस काम को कर सकते हैं, कैसे आप उनको मोटिवेट करें, कैसे आप उनको एनर्जाइज करें, कैसे आप उनको कुछ ऐसे पर्क्स दें जो उनको थोड़ा अच्छा महसूस कराएं,
1: ठीक ठीक
0: और
1: ठीक
0: कैसे उनको एक सिस्टम में लेके साथ चलने के लिए प्रेरित करते रहें, दैट इज वेरी वेरी
1: तो
0: इंपॉर्टेंट।
1: ये जितनी भी चीजें रही हैं यहाँ
0: जी
1: पर, वो जो आपका जो आर्मी का बैकग्राउंड था, वो जो
0: जी
1: ट्रेनिंग थी,
0: जी
1: वो सब जो सीख कर आप आए, तो वही यहाँ पर ज्यादा असरदार साबित हुई, उसी ने ही सबसे बड़ा इसमें आपको सपोर्ट दिया, हेल्प की कि आप ये
0: बिल्कुल
1: सब कुछ बहुत अच्छे से कर पाए, इतने
0: बिल्कुल
1: ऑर्गेनाइज मैनर में कर पाए।
0: बिल्कुल मिलिट्री की ट्रेनिंग हैज बीन द बैकबोन, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कैसे आप हर एक व्यक्ति को साथ लेके चलें, कैसे आप उसको
1: जी
0: अपनी टीम का हिस्सा बनाएं, देखिए पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं,
1: बिल्कुल
0: हर इंसान की कॉम्पिटेंसी में, हर इंसान की केपेबिलिटी में फर्क होता है, पर इन केपेबिलिटीज को, कॉम्पिटेंसी को कैसे हार्नेस करा जाए,
1: जी
0: कैसे उसको सिस्टम में ज्यादा ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए, कैसे उनको लेके चला जाए, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। एंड डेफिनेटली मिलिट्री की ट्रेनिंग हैज बीन द बैकबोन फॉर द एंटायर एफर्ट एक्चुअली।
1: यानी कि वो जैसे हम अक्सर हम बात करते हैं जब भी हमारे पास आर्मी ऑफिसर सोल्जर्स आते हैं, तो वो यही बताते हैं कि आर्मी जो है वो हम उसका एक पार्ट जब बन जाते हैं तो वो एक अलग जिंदगी है, वो एक जिंदगी गुजारने का तरीका भी है,
0: जीवन शैली है,
1: जीवन शैली है, वो एक लाइफ
0: इट्स अ वे
1: स्टाइल
0: ऑफ लाइफ,
1: बिल्कुल
0: इट्स अ
1: अलग है
0: वे
1: वो,
0: ऑफ लाइफ,
1: और
0: यस
1: बहुत ही स्पेशल है मैं
0: एब्सोल्युटली
1: समझता हूँ। तो
0: एब्सोल्युटली
1: वो जैसे अब कहा जाता है कि एक थोड़ा बहुत वक्त जो है हर एक सिटीजन के लिए कंपलसरी करना चाहिए कि थोड़ा बहुत समय वो उस ट्रेनिंग को दें ताकि वो उस डिसिप्लिन को भी समझें और सीखें, और उनके मन में जो है वो देशभक्ति की भावना को लेकर के भी एक
0: जी
1: जज्बा पैदा हो।
0: जी
1: तो इस चीज में किस तरीके का हम कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसी पॉलिसी, अगर हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं।
0: देखिए साहब, भारत बहुत बड़ा देश है और हमारी फोर्सेस आर स्ट्रांग इनफ, सो कंपलसरी जो कंस्क्रिप्शन होता है कि भाई सबको सबको सैन्य में सेवा करनी करनी है,
1: जी
0: वो शायद यहाँ संभव ना हो पाए, बट हाँ ये ज़रूर है कि एनसीसी हो गया, स्काउट्स हो गया, इन सब की ट्रेनिंग के माध्यम से हमारे पास एक एक युवा पीढ़ी मौजूद है जो कि
1: जी
0: फौज ज्वाइन करने के लिए तैयार है। आज भी देखिए भर्तियों में कितना भीड़ लगती है, आज भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यूज में दे आर सो मेनी एप्लीकेंट्स,
1: जी
0: 10-12 लाख लोगों में से कुछ चुने हुए 400 लोग, 300-350 लोग अकेडमी पहुंच पाते हैं,
1: बिल्कुल
0: तो देर इज लॉट ऑफ

0: इनरिच्ड, वी हैव अ लॉट ऑफ यंग पीपल. हाँ, ये ज़रूर है कि गवर्नमेंट को अच्छी स्कीम्स लेके आनी चाहिए जिससे कि वो लोगों को मोटिवेट करें, जो जिससे कि एटलीस्ट एक सैनिक होने पे जो प्राइड है ना वो बरकरार रहे,
1: बरकरार रहे.
0: तो वो एक बहुत बहुत वो दशवार है. एग्जैक्टली
1: एग्जैक्टली सर, एक चीज यहाँ भी बताइएगा कि जैसे जो शुरुआत है कि जब आप चाहते हैं कि आप इस ट्रेनिंग का हिस्सा बने, जैसे आपने बताया कि एनसीसी से शुरुआत हो सकती है और भी कई सारे ऐसे, तो कब से कर सकते हैं, क्या उसके लिए मिनिमम क्राइटेरियाज हैं, एज फैक्टर है, एजुकेशन है, वो भी बताइएगा.
0: आई ऑल्सो गॉट अ चांस टू स्टे इन एनसीसी बटालियन ऑल्सो. तो एनसीसी में क्या होता है, दो विंग होते हैं, जूनियर डिवीजन होता है, सीनियर डिवीजन होता है. तो जूनियर डिवीजन में तो ए सर्टिफिकेट मिलता है, बट हाँ सीनियर डिवीजन की शुरुआत होती है क्लास ऑलमोस्ट 9-10 से.
1: अच्छा,
0: तो 9-10 से वो बच्चा जा सकता है सीनियर डिवीजन में और वो अपना एनसीसी का 11th 12th आते जाते अपना बी सर्टिफिकेट पास कर लेता है और 12th के बाद में वो ग्रेजुएशन के टाइम पे अपना सी सर्टिफिकेट कर सकता है. बट सी सर्टिफिकेट करने का एडवांटेज ये है कि उससे उस पर्टिकुलर कैडेट को एग्जाम में अपीयर करने से छूट मिल जाती है.
1: अच्छा,
0: तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में एक एनसीसी का एक कोर्स चलता है जो कि विच इज इक्विवेलेंट टू अ नॉर्मल कोर्स, जिसमें इसके बाद में यू गेट अ कमीशन एज अ लेफ्टिनेंट फ्रॉम द एकेडमी. तो एग्जाम आपको एसएससी एग्जाम पास करने की वजह से आपको एग्जाम में अपीयर करने की छूट मिल जाती है. यू हैव टू अपीयर स्ट्रेट फॉर द एसएसबी. एसएसबी आपने पास कर लिया.
1: अच्छा,
0: तो आप यू कैन गो एंड ज्वाइन द एकेडमी विद अ रेगुलर कोर्स. तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एडवांटेज है. तो मुझे लगता है कि एनसीसी को ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस में कंपलसरी करना चाहिए और सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके ऊपर में और ध्यान देना चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी युवा पीढ़ी को ना एक लार्जर नेशनल एथॉस में इंक्लूड कर सकते हैं.
1: कम से कम उनके अंदर वो चीज, वो
0: राष्ट्रीय भावना और वो राष्ट्रीय स्पिरिट को वी कैन अपहोल्ड दैट स्पिरिट.
1: अपहोल्ड, बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज उनमें बरकरार रहनी चाहिए और उसके अंदर वो जोर से जज्बा और देश से जुड़ने का भी एक ना उसके पास एक माध्यम होगा. हाँ भाई, क्यों वो अपने देश से मोहब्बत करता है और उस पर जान निछार करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है. सर, हम आगे बढ़ेंगे, आपसे बात करेंगे और हम पीजीआई के अंदर, जैसे आपसे हमने बात करी, इतनी लंबी बात करी हमने, और उस पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या उसमें टेक्निकली की भी अब एडवांसमेंट हो रहा है, एआई का भी इसमें शामिल किया जा रहा है जैसे जैसे अब आगे बढ़ रहा है. तो जाहिर है एआई हर जगह पर है, तो क्या उसमें उसकी भी कहीं पर जो है शामिल किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है उसको?
0: जी जी बिल्कुल.
1: तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे संदेश टू सोल्जर्स में और हम चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई गाना बताएं ताकि हम यहाँ पर आपके लिए प्ले कर सकें.
0: आप बॉर्डर का गाना चलाइए, संदेश से आते हैं.
1: तो आज के हमारे गेस्ट हैं संदेश टू सोल्जर्स के कर्नल वरुण वाजपेयी VSM. आप सुन रहे हैं 1.6 देश के नंबर 1 रेडियो आकाशवाणी रेडियो पर संदेश सोल्जर्स शायद के साथ, और ये हमारे आज के गेस्ट कर्नल वरुण वाजपेयी की पसंद का ट्रैक. आप भी एंजॉय करें और आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं हमारे आज के गेस्ट से. 9868107070 नंबर है हमारा.

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स। हमारे आज के संदेश टू सोल्जर्स के खास मेहमान हैं कर्नल वरुण वाजपेयी VSM, और हम बात कर रहे हैं वरुण से। हमने बात करी 3 नए सैनिक स्कूल जो उन्होंने एस्टैब्लिश किए, उसके अलावा उनके आर्मी के बैकग्राउंड के बारे में बात की, और हमने बात करी PGI लखनऊ के बारे में। सर, हम आगे बढ़ेंगे और हम जानना चाहेंगे कि PGI लखनऊ की आपने बात करी, इतना प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, तो अब AI का तो यूज़ हर जगह है, हर चीज़ में है
1: जी।
0: तो हमारी जो मेडिकल फील्ड है और जो ट्रेनिंग है उसमें भी अब AI का बहुत यूज़ हो रहा है, तो PGI किस तरीके से AI के बारे में सोच रहा है या यूज़ कर रहा है?
1: देखिए, आज का दौर ऐसा है कि आप AI से अपने आप को अलग नहीं कर सकते
0: जी।
1: AI हम सबके जीवन का हिस्सा बन गया है, चाहे आप मोबाइल यूज़ करें, चाहे आप किसी चीज़ को सर्च करें, कुछ भी करें
0: जी।
1: AI हैज़ बिकम अ प्रिंसिपल वे टू लिव योर लाइफ नाउ।
0: तो गलत है कि मतलब किस तरह से आप इसको देखते
1: जी
0: हैं?
1: नहीं, मैं इसको पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ। देखिए साहब, टेक्नोलॉजी कोई भी चीज़ जब नहीं आती है तो इनेबलर होती है, कुछ चीज़ को इनेबल भी करती है, उसके अपने पिटफॉल्स भी होते हैं
0: जी।
1: उसको दिक्कत नहीं आती जो उसके लिए तैयारी पहले से कर लेता है। अब जैसे अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो वहाँ पे भी AI का बहुत बड़ा रोल होने वाला है डायग्नोस्टिक में।
0: अच्छा,
1: बहुत बड़ा रोल होने वाला है चीज़ों को समझने में। अब जैसे आप, छोटी सी बात है, मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट एटलीस्ट मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि क्लिनिकल साइंसेज में, डायग्नोस्टिक में AI विल बी हैविंग अ मेजर रोल नाउ। कि आपने MRI करा, MRI को पढ़ने के लिए आपको क्लिनिशियन चाहिए, हमेशा चाहिए होगा। देयर विल ऑलवेज बी अ मैन बिहाइंड टेक्नोलॉजी, दैट यू कैन नॉट निगेट दैट, उसको आप नहीं दूर कर सकते। बट हाँ, 10 चीज़ों को कंपेयर करके, 10 AI के जो AI का जो डेटा बेस है उससे, उस इमेज को कंपेयर करके जो एक इन्फ्रेंस निकल सकता है
0: जी,
1: और उस डायग्नोसिस के बाद में जो बेटर इलाज निकल सकता है, इन सब चीज़ों में AI का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो PGI में बहुत बड़े स्तर पे अभी AI को हम लेके आएंगे अपने क्लिनिकल टूल्स के अंदर में, सर्जिकल टूल्स के अंदर में, और टेक्नोलॉजी को हम ऐसे एम्बेड करें, कैसे उसका कंस्ट्रक्टिव यूज़ करें, उस पर काफ़ी विचार विमर्श चल रहा है, काफ़ी काम चल रहा है
0: जी।
1: आई एम श्योर आने वाले टाइम पे AI से आप दूर तो नहीं जा पाएंगे
0: जी। AI विल, अक्सर लोग बताते हैं कि सर, अब जो एक मेडिकल एग्जामिनर है वो किसी रिपोर्ट को देखता है, अगर उसको वो एनालाइज करता है, तो वो हो सकता है कि वो किसी हद तक परफेक्टली शायद उसको डायग्नोस ना कर पाए उस डिजीज़ को, लेकिन ये बताया गया है कि AI बहुत ही कम समय में एकदम परफेक्ट उसको एनालाइज कर लेती है, तो ये किसी हद तक,
1: मैंने भी कुछ रिपोर्ट्स ऐसी देखी हैं जहां पे ये देखा गया है कि AI का जो असेसमेंट रहा है वो क्लिनिशियन के असेसमेंट के बिल्कुल पास रहा है, कभी कभी उससे बेटर भी हुआ है, और स्कोप ऑफ एरर काफ़ी कम कर दिया है उसने। मैं ये बात तो हमेशा बोलूंगा कि देर विल ऑलवेज बी अ इंडिविजुअल और मैन और अ क्लिनिशियन बिहाइंड एनी टेक्नोलॉजी, तो ह्यूमन इंटरफेस को तो आप निगेट नहीं कर सकते, बट ये जरूर है कि AI के माध्यम से, AI के आने से जो हमारा परफेक्शन है, हम उसके और पास पहुंच सकते हैं, अपनी हम ट्रीटमेंट की पद्धतियों को, अपने इलाज की शैलियों को हम और रिफाइन कर सकते हैं, एंड वी कैन रियली रीच आउट टू द रियल कॉज ऑफ द इलनेस इन अ शार्पर एंड अ फास्टर वे। दिस कैन डेफिनेटली बी अ बिग रेवोल्यूशन नाउ।
0: सर, AI पर हमने बात की, और AI तो बिल्कुल जैसे आपने कहा कि जिंदगी का हिस्सा बन ही चुका है हर फील्ड में, हर इंडस्ट्री में
1: जी।
0: हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर भी, जो फौज पर उसका क्या असर होता है, जो नए बच्चे जाते हैं उनका भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं मैसेज ले लूं जो मैसेज आए हुए हैं। ये मैसेज आया है, जय हिंद सर, सेवा मेडल के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं शबनम BK दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से, और इनका सवाल भी है सर
1: जी,
0: इनका सवाल ये है कि किस आधार पर सैनिक स्कूल में दाखिला मिलता है, कृपया बताएं। हालांकि इस पर बात हमने की
1: जी जी जी,
0: तो एक बार और प्लीज अगर बता।
1: देखिए, ऑल इंडिया एग्जामिनेशन के माध्यम से एडमिशन होता है
0: जी।
1: क्लास 5th पास बच्चे जो होते हैं वो एलिजिबल होते हैं
0: जी।
1: 10 से 12 साल का एज लिमिट होता है। क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन किया जाता है। एग्जाम NTA कराता है, और सैनिक स्कूल एडमिशन्स की एक वेबसाइट है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसमें सारा डेटा दिया हुआ है, और किस तरीके से क्या क्या करिकुलम होता है, कैसे एग्जाम में क्या चीज़ चेक करी जाती है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स और साइंस।
0: अच्छा।
1: वो सारा कोर्स करिकुलम, एग्जामिनेशन का पैटर्न, सब कुछ मिल जाएगा। और इवन कोर्स में एग्जामिनेशंस को के अपीयर करने के लिए जो गाइड्स होती हैं, किताबें होती हैं, कोचिंग्स होती हैं, वो भी उपलब्ध हैं। तो आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन फिंगर टिप्स पे है आपके। यू जस्ट हैव टू गूगल सैनिक स्कूल एडमिशन, देन यू कैन गेट द एंटायर इन्फॉर्मेशन।
0: ओके
1: जी,
0: आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधे सीधे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, और ऑनलाइन अप्लाई भी आप वहीं से कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: सर, एक मैसेज और है, गुड आफ्टरनून वाजपेयी सर एंड RJ सर, जय हिंद। जय हिंद टू यू एंड ऑल इंडियन आर्मी। आई सल्यूट ऑल ऑफ यू फॉर द डेडिकेशन एंड फेयरलेसली सर्विस टू आवर नेशन। I give respect from bottom of my heart, myself, Shankar Lod, from Gomo district, Dhanbad, Jharkhand. Vande Mataram, Bharat Mata Ki Jai.
1: Bharat Mata Ki Jai.
0: तो ये इनका मैसेज था, और भी मैसेजेस अभी हम देखते हैं, लेकिन हम सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं कि क्या फौज

0: पर भी सोशल मीडिया का असर होता है, क्योंकि सोशल मीडिया को लेकर के कई कंट्रीज हैं ऐसी जो हम अभी पहले भी बात कर रहे थे कि 16 साल तक के बच्चों के लिए उन्होंने उसको बैन किया हुआ है।
1: जी
0: तो
1: जी
0: वो जाहिर है उसके अपने जो भी उसके हार्म्स हैं, जो भी उसके ड्रॉबैक्स हैं इसकी वजह से। तो हमारे यहाँ भी जो बच्चे हैं उसी दौर से गुजर रहे हैं, जो बच्चे यही बच्चे जो होते हैं फिर ये जो इसी दौर से गुजर रहे होते हैं हम
1: जी
0: उसी जिंदगी में लाइफ स्टाइल में,
1: जी
0: तो वो सोशल मीडिया के भी काफ़ी काफ़ी तक हमने देखा है कि वो थोड़ा सा उसके इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो एनडीए में जब ये जाते हैं तो सोशल मीडिया का उन पर किस तरीके का इम्पैक्ट होता है, क्या होता है, कैसे आप महसूस करते हैं वो, आपने अपने तौर पर जो चीज़ें देखी होंगी वो, तो उसको कैसे हैंडल भी करते हैं ये भी बताइएगा।
1: जी जी देखिए साहब, सोशल मीडिया इज़ अ डबल एज्ड स्वॉर्ड नाउ, दुधारी तलवार है, जिसके
0: जी
1: पॉजिटिव भी हैं बिकॉज इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट हो रही है, लोगों को जानकारी मिल रही है,
0: जी
1: अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं,
0: जी
1: बट क्या ये कम्युनिकेशन रियल है, क्या ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है? तो इसका उत्तर ना है।
0: बिल्कुल
1: ये तो एक ऑनलाइन मोड का कम्युनिकेशन है जिसमें आप वर्चुअली बात कर रहे हैं एक दूसरे से।
0: जी
1: तो इस वर्चुअल एलिनेशन से होता क्या है कि हमारी कलेक्टिव साइकोलॉजी पर फर्क पड़ने लग जाता है।
0: ओके
1: तो यही क्लास 12th पास लोग जो जवान जा रहे हैं फौज में, ये भी
0: जी
1: फोन पे ही इनका इनका फोन का एडिक्शन है। यही लड़के जब एनडीए जा रहे हैं तो ये भी उसी दौर से गुजर रहे हैं, सेम सोशल स्टाटा से, सेम सोशल सेगमेंट से इनको लिया जा रहा है। तो सोशल मीडिया का एडिक्शन अपने आप में उसके दुष्प्रभाव तो

0: इसको इस पे बैन लगाया
1: बैन
0: है,
1: किए हैं जी।
0: दे ऑल आर डेवलप्ड कंट्रीज। सो इन सब कंट्रीज में भी इस चीज़ का दुष्प्रभाव देखा जा रहा है कि कैसे इससे एक जवान पीढ़ी, एक पूरी पौध खराब हो रही है।
1: बिल्कुल
0: जैसे हम बात करते थे ड्रग्स का दुष्प्रभाव क्या है और ना बुरी हैबिट्स का दुष्प्रभाव क्या है, तो
1: जी,
0: ये भी अपने आप में इसका बुरी मतलब डबल एज सॉर्ड तो है ही। आप जैसे
1: एग्जैक्टली
0: मैंने
1: जी
0: पहले
1: मैम
0: बोला,
1: जी,
0: इसका दुष्प्रभाव दिख रहा है अभी कि कैसे इंसान आपस का कम्युनिकेशन खराब हो गया है और कैसे इंसान इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और दुनिया भर के स्नैपचैट और इन सब चीज़ों पे, कि उसको उनसे वही उसका एक कंफर्ट जोन बन गया है जिससे बाहर
1: जी
0: निकल के
1: जी
0: आने
1: जी
0: में
1: जी
0: बड़ी
1: जी
0: तकलीफ हो रही
1: सर
0: है।
1: एक चीज़ ये भी बताई जाती है, साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि जो ब्रेन है हमारा वो इस तरीके से डिजाइन है नेचुरली कि वो कंफर्ट को ही
0: जी
1: एक्सेप्ट करता है, प्रेफर करता है,
0: जी जी
1: वो एफर्ट्स पर जाना ही नहीं चाहता।
0: जी
1: तो इससे बचने का कोई तरीका, जो क्योंकि जो फौज बच्चे जा रहे हैं, नए बच्चे जा रहे हैं 12th पास करके जा रहे हैं, तो क्या उसका असर फिर वो लॉन्ग टर्म में नुकसान बन सकता है, हार्म कर सकता है?
0: देखिए साहब, ये बहुत सबसे ज़रूरी बात है कि पेरेंट्स को इसलिए जागरूक होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए
1: जी
0: कि वो अपने बच्चों को उतना ही एक्सपोज करें उनके ग्रोइंग अप ईयर्स में मोबाइल और लैपटॉप पे जितना आवश्यक है। हर चीज़ मोबाइल और हर चीज़ लैपटॉप के माध्यम से अवेयर कराना, उससे पढ़ाना ज़रूरी नहीं है, किताबें भी ज़रूरी हैं।
1: किताबें जो
0: देखिए
1: है वो
0: साहब,
1: ऑनलाइन
0: आप
1: अगर आ गई तो उसका क्या कर
0: बिल्कुल
1: सकते हैं?
0: एयरपोर्ट जाइए, आप देखिए साहब, एक टाइम था कि बहुत लोग किताबें देखते मिलते थे, किताबें
1: जी
0: पढ़ते मिलते थे,
1: बिल्कुल
0: मैगजीन्स बिकना बंद हो गई, न्यूज़पेपर्स का सर्कुलेशन काफ़ी कम हो गया है। तो देयर द टाइम व्हेन यू हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नहीं, पढ़ना के और भी तरीके हैं, कुछ चीज़ें हैं ऑनलाइन, आप नहीं
1: जी,
0: जा सकते दूर उनसे, बट येस यू हैव टू गो बैक टू द कन्वेंशनल वेज ऑफ लर्निंग, ये बहुत आवश्यक है।
1: ये बहुत जरूरी है। और
0: जी
1: सर इसका जैसे हमने कहा कि जो फौज में नए बच्चे जाते हैं उन पर
0: जी
1: जो असर पड़ रहा है वो आपने क्या महसूस
0: हाँ
1: किया है,
0: जी
1: और उसका फिर मतलब निवारण क्या है, मतलब उसे कैसे बचा जाए ताकि उसका नेगेटिव असर फिर लॉन्ग टर्म में उस तरफ ना जाए?
0: देखिए फौज में, आर्मी में तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसके अगेंस्ट में अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए हैं कि
1: अच्छा
0: किस तरीके से दूर रहना है। देखिए फौज में बहुत सारी चीज़ें स्पियोनाज भी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें मतलब ना कोई इंसान आपको गलत तरीके से आपको टैप कर सकता है ताकि आपसे
1: जी
0: इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाए, तो इन सब से भी, ये भी सोशल मीडिया के तरीके से ही होता है। तो फौज ने तो इनफैक्ट फेसबुक पे और बहुत सारे ऐप्स पे बैन लगा दिया है कि भाई
1: अच्छा
0: कि एज सर्विंग सोल्जर यू कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ दोज ऐप्स ना।
1: अच्छा मतलब
0: हाँ
1: सोशल मीडिया अकाउंट
0: यस,
1: भी
0: अकाउंट
1: नहीं
0: भी
1: बना सकते
0: डिलीट
1: हैं?
0: कर दिए गए हैं, बैन लगा दिए गए
1: अच्छा
0: हैं, क्योंकि उन सब से भी आपकी इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट होती है। आप भूल जाते हैं कभी कभी, आप कैरी ऑन हो जाते हैं भाई कि इन चीज़ों को लेके कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट देन समबडी इज़ मॉनिटरिंग यू ऑन द सोशल मीडिया इन चीज़ों से।
1: ओके
0: प्लस आपको पता ही है कितने स्कैम्स चलते हैं, कितने फाइनेंशियल स्कैम्स भी हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया इज़ अ नेसेसरी ईविल, आई अंडरस्टैंड, बट द फैक्ट इज़ कि उसको कैसे कंस्ट्रक्टिव यूज़ करना है ये बताना, समझाना, सिखाना बहुत ज़रूरी है।
1: तो सर ये तो बहुत टफ काम है, क्योंकि जिस तरह से हम अभी बात कर रहे हैं कि वो एडिक्शन इतना बढ़ चुका है कि वो बच्चा हो या बड़ा हो तो उसे वो छूट नहीं पा रहा है,
0: छूट नहीं पा रहा है
1: तो
0: लोग,
1: क्या उसके लिए कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए या कुछ ऐसा नया सिस्टम बनाना चाहिए कि जिससे उनको मतलब बचाया जाए
0: देखिए कुछ चीज़ें
1: जब
0: तो
1: डेवलप कंट्रीज ऐसा कर रही हैं तब?
0: जी जैसे डेवलप कंट्रीज ऐसा कर रही हैं, कुछ चीज़ें पॉलिसी फ्रेमवर्क में आनी चाहिए हम लोग के कि भैया एक बच्चे की ग्रोथ के जो बेसिक ईयर्स होते हैं उनमें सोशल मीडिया का रोल उतना ही होना चाहिए जितना आवश्यक है। प्रॉब्ली दे वील कम टू अ टाइम, एक समय ऐसा भी आएगा जब भारत में भी ये चीज़ें बैन करनी पड़ेंगी, अदरवाइज तो इस चीज़ों का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा दुष्प्रभाव हो गया है कि इनसे एक जनरेशन के अंदर में इम्पैक्ट
1: जी
0: आ गया है, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल दोनों।
1: जी तो ये जो बातचीत आपसे रही है सर ये बहुत ही इंसाइटफुल रही। आपने अपने जो करियर के बारे में बताया, आपने जितने बड़े बड़े अचीवमेंट बताए अपने सैनिक स्कूल और पीजीआई को लेकर के, वो बहुत ही इंस्पायरिंग है और बहुत ही मोटिवेटिंग है। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे जिससे सुन रहे होंगे
0: जी
1: उनको भी गाइडेंस मिला होगा, खासतौर पर सैनिक स्कूल के एडमिशन को लेकर के जो लोगों ने हमसे बात की।
0: थैंक यू सो
1: तो
0: मच,
1: हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना समय निकाला और यहाँ पर आए आप, और बहुत बहुत धन्यवाद
0: थैंक यू
1: आपके
0: सो
1: आने के
0: मच
1: लिए।
0: जी।
1: कर्नल वरुण वाजपेयी हमारे साथ रहे। कर्नल वरुण वाजपेयी VSM विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं, इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका संदेश टू सोल्जर्स में हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।

संदेश टू सोल्जर्स, ये विशेष कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव 396.8 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे है, प्रस्तुत है इस सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। इंग्लैंड के ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में भारत और बांग्लादेश के मध्य खेले जाने वाले आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप

2026 का आंखों देखा हाल हम मीडियम वेव पर आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे शाम 6:30 बजे से शाम 6:45 तक, पुनः शाम 7:00 बजे से रात 8:45 तक और फिर रात 9:15 से मैच की समाप्ति तक। शाम 5:05 पर हल्बी बोली में होगा समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार। शाम 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। आपको बता दें शाम 6:30 बजे से हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम आप सुन पाएंगे FM बैंड 100.1 MHz और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। इसमें शाम 6:35 पर आप सुन सकते हैं बुद्री और साथी का गाया हल्बी गीत। शाम 7:00 बजे कार्यक्रम बस्तर के स्वर, शाम 7:21 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। रात 8:00 बजे लोक गीतों के कार्यक्रम डांडामाली में सुनिएगा ध्रुवी गीत, गायक कलाकार होंगे चबरू राम बघेल और साथी। हमारा बस्तर इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा रात 8:30 बजे। इसमें सुनिएगा बस्तर की धुरवा जनजाति के बारे में सुखराम बघेल से ली गई भेंटवार्ता, भेंट करता होंगे नारायण सिंह बघेल। रात 9:15 पर सुनिएगा लोक गाथा केकड़ा और बुढ़िया विषय पर रुद्र नारायण पानीग्राही की वार्ता। रात 9:30 बजे कार्यक्रम घुमगली में आप सुनेंगे नाटगीत, गायक कलाकार होंगे लीपधर और साथी। गैर फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा रात 10:00 बजे और रात 10:30 बजे आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत। ये थी सभा के शेष कार्यक्रमों की जानकारी। लीजिए अब सुनिए कल की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। कल सुबह 10:00 बजे छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव से विशेष भेंटवार्ता, सुबह 8:30 बजे इनसे मिलिए कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे। कल की हमारी प्रातःकालीन सभा में प्रातः 6:05 पर होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। चिंतन आप सुनेंगे सुबह 6:20 पर। आलेख और स्वर होगा राजीव निगम का। श्री रामचरित मानस का गायन सुनिएगा सुबह 6:25 पर। स्वर होगा अनुराधा पौडवाल का और संगीत निर्देशक होंगे सतीश भाटिया। बेड़ा खाड़ा चौगोट का प्रसारण होगा सुबह 6:35 पुनः दिन में 1:05 पर। हुलहुली कार्यक्रम में सुबह 6:40 पर आप सुनेंगे धावड़ा वीर देवपाड़, वादक कलाकार होंगे पाकलू और साथी। सुबह 7:05 पर होगा कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर, आकर्षण होंगे सुभाष पांडे की लिखी झलकी मुर्गा लड़ाई, प्रस्तुति होगी जी श्याम की और होगी फिल्मी गीतों की मधुरिमा। लोक साहित्य पत्रिका मोजो माटी का प्रसारण आप सुनेंगे सुबह 9:00 बजे, संपादन और प्रस्तुति होगी बलबीर सिंह कच की। सुबह 9:30 बजे होगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। गुलशन कार्यक्रम में सुबह 10:00 बजे मेरी पसंद के तहत सुनिएगा उद्घोषक की पसंद के फिल्मी गीत। लोकगीतों के कार्यक्रम गुर्दू में सुबह 10:30 बजे आप सुन सकते हैं मोतीलाल बघेल और साथियों के गाए हल्बी गीत। लोक गाथाओं के कार्यक्रम रुस रुसा में सुबह 11:00 बजे आप सुनेंगे लोक गाथा आधा राजा का पांचवा भाग, गायिका होंगी सुमरी बाई। एक ही कलाकार कार्यक्रम पेश करेंगे सुबह 11:30 बजे जो केंद्रित होगा निर्देशक राज खोसला पर। दोपहर 12:00 बजे होगा कार्यक्रम कला और कलाकार और दोपहर 12:30 बजे ग्रामीण महिलाओं का अपना कार्यक्रम होगा घर द्वार। श्रोता सुमन सुनिएगा दिन में 1:10 पर और दोपहर 2:30 बजे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT प्रसारित किया जाएगा। कल की सायंकालीन सभा में शाम 5:05 पर गोडी बोली में सुनिएगा समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार। शाम 5:10 पर होगा कार्यक्रम युववाणी। शाम 6:35 पर सुना जा सकेगा भीमसेन बघेल और साथियों का गाया हल्बी लोकगीत। बस्तर के स्वर कार्यक्रम होगा शाम 7:00 बजे और ग्रामीण कार्यक्रम आम चुकाव होगा शाम 7:21 पर। रात 8:00 बजे घलर कार्यक्रम में आप सुनेंगे जगार गीत, स्वर होगा बुरी बाई और साथियों का। पीलाबन काजे गोट होगा रात 8:30 बजे, प्रस्तुति होगी संतोष कुमार बघेल की। कार्यक्रम नंजर सुनिएगा रात 9:15 बजे। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे धनेश्वर दास से बलबीर सिंह कच की ली गई भेंटवार्ता। हल्बी खेल पत्रिका में रात 9:30 बजे होगी नबीता बघेल से ली गई भेंटवार्ता, भेंट करता होंगे

0: बलबीर सिंह गंज और रात 10 बजे होगा फोन इन कार्यक्रम लोकरस। प्रस्तुति होगी जयराम कवासी की, संयोजन होगा चंद्र ऋषि ठाकुर का। ये थी जानकारी आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी जगदलपुर है। अब प्रस्तुत है हल्बी बोली में सामसामायिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार।
1: जुहार, समसामयिक विषय मन में आधारित कार्यक्रम मन संगे मैं हितप्रीता ठाकुर। सुनते लोग मन, आज जो आम से ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उपरे बस्तर संभाग जो धुरिया ठान पर गन और कोंटी साकड़ी ने रलो ठान गांव मन ने होलो योगाभ्यास कार्यक्रम गोठ उपरे आसे। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मोह का 21 जून के देश भर ने होलो योगाभ्यास कार्यक्रम चो मंजी छत्तीसगढ़ चो बस्तर संभाग चो हुन बाट घाट नोहलो कोंटी साकड़ी चो गांव पर गन मन निजे ठाने पहिल हार योगाभ्यास चो कार्यक्रम करतो बोली। जिठाने केबे माओवादी मन चो डर भय लागून असन प्रकार कार्यक्रम मन होक नहीं सकते रहे। एमन ने गोटो बीजापुर जिला चो कोनी कोनी कोंटी साकड़ी चो ठान पर गन मन बले आसे, जिठाने लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मोह का योग करते दखा दिला। केबे माओवादी मन चो गढ़ रलो जिला के कुर्रे गुट्टा डोंगरी ने रलो FOB ताड़पाला ने तैनात सुरक्षा बल चो अधिकारी अरु जवान मन ए दिने सामूहिक योगाभ्यास करला। ब्लैक फॉरेस्ट चो नाव ले जान पहचान पावलो ये 5,000 फीट डेंग डोंगरी केबे तो कुख्यात माओवादी मन चो सबले बड़े रतो मुरगुड़ा आसन रली। बरस 2025 चो अप्रैल मई महीना ने सुरक्षा बलमन बाटले चलालुविती ऐतिहासिक ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने माओवादी मन के एथा लिखित तो होन रली। इथा कई दिन तक चल्लो अभियान ने भारी मात्रा ने हथियार अरु 450 ले आगर IED बरामद करतोर होन रली। ए बात नहलो गांव अरु संवेदनशील परगन निरलो सुरक्षा शिविर ने 21 जून के योग सत्र चो उदिम करतोर होली। ए सफाई चुमंजी खास गोट ये रली कि समाज चो मुख्य धारा ने फिरून इलो आत्मसमर्पित माओवादी मन बले ये बरक होलो ये योगाभ्यास कार्यक्रम ने भाग धरला। जेके दखून ठान चो लोग बले योग करतो काजे पूरे इला। बीजापुर चो जिला पंचायत संसाधन केंद्र ने होलो कार्यक्रम ने जनप्रतिनिधि मन, अधिकारी मन, कर्मचारी मन, सुरक्षा बल मन आरु आम नागरिक मन संगे संग आत्मसमर्पित माओवादी मन बले योग लागून हरिक दखा पड़ली। ए मोका योग चो भिने भिने आसन मन संगे से एचोले होतो बीती फायदा लाभ चो जानकारी बले देतोर होली। ए मोका ने आत्मसमर्पित माओवादी मन रोजे दिनिया योग करतोर आरु समाज चो मुख्य धारा ने रहून सकारात्मक जीवना जीवतो का जे संकल्प धरला। असने चे कोंडागांव जिला चो शासकीय आदर्श आवासीय कन्या महाविद्यालय परिसर ने होलुबीती जिला स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम ने देव खरगांव ने रलो पुनर्वास केंद्र चो पुनर्वासित माओवादी मन बले बड़े हरिक ने योग करला। इमो का सफाई योगाभ्यास करून स्वस्थ जीवना जीवतो का जे योग के आप लो रोजे दिनिया चो भाग बनातो का संकल्प धरला। कार्यक्रम ने कांकेर सांसद भोजराज नाग अरु बस्तर विकास प्राधिकरण चो उपाध्यक्ष लता उसेंडी पुनर्वासित माओवादी मन संगे भेंट करून हुन मन के नवा मुरियानी काजे शुभकामना बली दिला। ये पुनर्वास केंद्र ने एवे 21 जान आत्मसमर्पित माओवादी आसत जे मन के समाज चो मुख्य धारा ने जोड़तो काजे अरु आत्मनिर्भर बनातो काजे लाइवलीहुड कॉलेज बाटले कौशल विकास चो प्रशिक्षण देतो होए से। ए मन ने 3 जान प्रशिक्षणार्थी मन के असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन अरु 3 जान के 2-व्हीलर सर्विस असिस्टेंट चो प्रशिक्षण देतो होए से। और फिर 15 जान पुनर्वासित लोग मन के झपके से बढ़ई राजमिस्त्री इलेक्ट्रीशियन सिलाई अरु वाहन चालक संगे संग भिने भिने व्यवसायिक ट्रेड मन ने प्रशिक्षण देतो होए दे। ए बरक 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस चो विषय स्वस्थ आयु के लिए योग रली। योग गोटोक जूना बलो ने दादी पीढ़ी बेरा चो देह पाए मन ध्यान अरु भगवान ध्यान चो विधिया आसन आए जिचो उपजास भारत ने होली। योग शब्द संस्कृत ले धरलोत होली से अरु एचो अरस आय मिस्तोर जुड़तोर संगीरतोर जे देह पाए अरु मन चेतन की मिसाय से।
0: हल्बी बोली में ये था समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार। ये आकाशवाणी जगदलपुर है। शाम के 5:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो आदाब सत श्री अकाल खम्मा गणी वड़कम जोहार दोस्तों, आ गए हैं हम वापस आपकी आज की शीतल शाम को और भी मधुर व हसीन बनाने
1: लेकर आप सभी के लिए आपके पसंदीदा गीत को जानकारी भरी बातें और चटपटे मनोरंजन कार्यक्रम के साथ।
0: जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने दिल बहलाने वाले, लबों पर मुस्कुराहट लाने वाले, लम्हों को और भी खूबसूरत बनाने वाले कार्यक्रम युववाणी में,
1: जहां मैं हूं आपका रेडियो दोस्त हर्ष ठाकुर
0: और मैं हूं आपका कंपेयर साथी स्नेह श्रीवास्तव।
1: स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा अभिवादन। नमस्कार।
0: और बताओ हर्ष, क्या हाल है? शुरुआती बारिश में भीगने का मजा तुमने लिया या नहीं?
1: अरे ये मैं कैसे मिस कर सकता हूँ, एक बार के लिए मैं अपने गर्लफ्रेंड का कॉल मिस कर दूँ, ये मिस नहीं कर सकता मैं इसने। बारिश में भीगने का सुख और घर पहुंचकर कपड़ों से कीचड़ निकालने का दुख, मैंने दोनों ही बहुत अच्छे से महसूस किया है। तुम बताओ, तुमने इस खूबसूरत मौसम में पकौड़ा का आनंद लिया या नहीं?
0: ना आनंद ना स्वाद, तुमने बनाकर मुझे पूछा ही कहाँ हर्ष।
1: अरे स्नेह, शिकवा और शिकायत छोड़ो, इस सुहाने मौसम को देखो। वैसे एक बात बताओ, आजकल आजकल अगर किसी को इस बारिश में या कहीं भी 10 मिनट के लिए सिर्फ अकेला छोड़ दिया जाए तो वो सबसे पहले क्या करता है?
0: बहुत आसान जवाब है इसका हर्ष, वो मोबाइल उठाएगा, सोशल मीडिया एप्स यूज करेगा और बस 5 मिनट वीडियो देख रहा हूँ बोलकर देखते देखते 1 घंटा गायब हो जाएगा।
1: बिल्कुल स्नेह, आज इंसान को शोर से दिक्कत नहीं है, खामोशी से है, वो भीड़ से थकता नहीं लेकिन अकेले बैठने से घबराता है।
0: हाँ हर्ष, यही तो हमारी आज की चर्चा का विषय है, अकेले समय बिताने का महत्व।
1: दोस्तों ध्यान दें, अकेलापन और अकेला रहना दोनों एक जैसी चीज नहीं है।
0: हाँ हर्ष, अकेलापन वो है जब इंसान लोगों के बीच रहकर भी खाली महसूस करे, लेकिन अकेले समय बिताना वो है जब इंसान खुद के साथ बैठकर खुद को समझे, खुद को सुने और खुद को थोड़ा बेहतर बनाए।
1: जब हम अकेले होते हैं तब सबसे जरूरी मुलाकात होती है खुद से। भीड़ में हम अक्सर वही बन जाते हैं जिसे लोग हमें देखना चाहते हैं, लेकिन अकेले में हम वही होते हैं जो हम सच में हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल हर्ष, अकेले बैठकर ही हमें अपने मन की आवाज़ सुन पाते हैं, हमें समझ आता है कि हमें क्या पसंद है क्या नहीं, किस बात से

0: मुलाकात होती है खुद से। भीड़ में हम अक्सर वही बन जाते हैं जिससे लोग हमें देखना चाहते हैं, लेकिन अकेले में हम वही होते हैं जो हम सच में हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल हर्ष, अकेले बैठकर ही हमें

0: समझ ही नहीं आता कि हम खुद क्या चाहते हैं।
1: हाँ स्नेह, और अकेले में बैठकर जब इंसान सोचता है तो वो दूसरों के नजरिए और एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बाहर निकलता है, अपने फैसले को अपने नजरिया से देखता है। और यही वजह है कि जो लोग कभी कभी अकेले समय बिताते हैं वो अक्सर ज्यादा क्लियर होते हैं, उन्हें पता होता है कि उन्हें किस दिशा में जाना है।
0: बिल्कुल सही हर्ष। और क्या कभी तुमने नोटिस किया है,
1: क्या
0: कई अच्छे आइडियाज हमें तब आते हैं जब हम अकेले होते हैं?
1: हाँ इसने, क्योंकि उस समय दिमाग पर बाहर की आवाज कम होती है, और जब बाहर का शोर कम होता है तब अंदर की आवाज साफ सुनाई देती है।
0: बिल्कुल सही हर्ष। किताबें लिखने वाले, गाने बनाने वाले, इन्वेंटर्स हो या थिंकर्स, ऐसे बहुत से लोगों ने अपने बेस्ट आइडियाज अकेले समय में ही खोजे हैं, क्योंकि अकेलापन सिर्फ खाली समय नहीं देता, हमें सोचने की जगह भी देता है।
1: दोस्तों, आप सभी समझ ही चुके होंगे अकेले में समय बिताना हमारे लिए कितना आनंदमय और फायदेमंद होता है, लेकिन इसमें एक और बात समझना बेहद जरूरी है।
0: और वो बात ये है दोस्तों कि अकेले में समय बिताने का मतलब ये नहीं है कि आप अकेले रहो, लोगों से दूर हो जाओ, किसी से बात मत करो।
1: हाँ दोस्तों, क्योंकि इंसान एक सोशल बींग है, हमें परिवार चाहिए, दोस्त चाहिए, हमें बातचीत चाहिए, हमें प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए।
0: बिल्कुल, लेकिन जैसे दूसरों के साथ समय बिताना जरूरी है, वैसे ही खुद के साथ समय भी जरूरी भी है, दोनों में बैलेंस होना चाहिए।
1: बिल्कुल इसने। और दोस्तों, अब अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि अकेले समय बिताएं कैसे, तो इसका जवाब है बहुत मुश्किल नहीं है, इसका जवाब बहुत ही आसान है।
0: जी हाँ दोस्तों, तरीके काफ़ी आसान है। दिन में कम से कम 25 से 30 मिनट बिना फ़ोन बिना टीवी के बैठिए, थोड़ा वॉक करें और सिर्फ अपने थॉट्स ऑब्जर्व करें, डायरी या जनरल लिखें या किताब पढ़ें, आप मेडिटेशन या डीप ब्रीथिंग भी कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अकेले समय को सेल्फ केयर, सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ ग्रोथ समझें।
1: अंत में बस इतना कहना चाहूँगा दोस्तों, अकेले में बिताया गया समय हमें दुनिया से दूर नहीं ले जाता, बल्कि खुद के और करीब ले जाता है।
0: बिल्कुल सही हर्ष। और चलो इसी के साथ दोस्तों, कार्यक्रम में हम आपको ले चलते हैं आगे और जानते हैं आज के कार्यक्रम में आपके लिए क्या है खास।
1: दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके लिए कार्यक्रम आज के फनकार, जिसमें आप सुनेंगे गायक कुमार सानू के गीत और उनसे जुड़ी कई दिलचस्प बातें, साथ ही जानेंगे देश दुनिया से जुड़े सामान्य ज्ञान के बारे में।
0: इसी के साथ खेल जगत की बातें होंगी कार्यक्रम खेल समाचार में, और सुनेंगे आप वार्ता दिव्या बघेल से बस्तर में पर्यटन और रोजगार विषय पर। और चलो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपने अगले कार्यक्रम आज के फनकार की ओर।

0: वातावरण छाया हुआ था। यही वातावरण धीरे धीरे उनके जीवन का आधार बन गया।
1: संघर्ष और मेहनत के लंबे दौर के बाद उन्होंने हिंदी फिल्म संगीत जगत में वह स्थान बनाया जिसकी कल्पना हर कलाकार करता है। अपनी मधुर आवाज और अद्भुत गायकी के बल पर उन्होंने करोड़ों श्रोताओं के प्यार और दिल जीते।
0: श्रोताओं का प्यार जीतकर उन्होंने बहुत ही बड़ा अपना
1: नाम किया।
0: हाँ, नाम किया वह से। तो चलिए सुनते हैं आज के फनकार का पहला गीत। प्रस्तुत है फिल्म जुर्म से। गीतकार हैं इंदिवर, संगीत से सजाया राजेश रोशन ने, और सुनिए कुमार सानू की आवाज़ में।

0: वाह लड़का, चलिए दोस्त।
1: मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
4: इस अभियान का नारा, टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए आप, जब टीबी की जाँच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात। ना शर्माना, ना घबराना, टीबी की जाँच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं।
5: हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा।
6: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप,
7: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: दोस्तों, कुछ देर के लिए कार्यक्रम आज के फनकार को देते हैं विराम और सुनते हैं वार्ता दिव्या बघेल से। विषय होगा बस्तर में पर्यटन और रोजगार।
8: नमस्कार साथियों, मैं हूं दिव्या बघेल और आज के चर्चे का विषय है बस्तर में पर्यटन और रोजगार। छत्तीसगढ़ का बस्तर अंचल अपनी अद्वितीय संस्कृति, घने जंगलों, जलप्रपातों और समृद्ध जनजाति विरासत के लिए जाना जाता है। हाल के वर्षों में बस्तर में पर्यटन एक बड़े रोजगार और आर्थिक परिवर्तन के माध्यम से उभर रहा है। चित्रकोट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित भारत का सबसे चौड़े जलप्रपातों में से एक है। यह इंद्रावती नदी पर बना हुआ है और अपनी घोड़े की नाल जैसी आकृति के कारण इसे भारत का नियाग्रा फॉल भी कहा जाता है। इस जलप्रपात की

कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे ऊंचाई लगभग 90 फीट है। वर्षा ऋतु में इसका दृश्य अत्यंत विशाल और आकर्षक दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ का दृश्य बहुत सुंदर होता है। रात में रंगीन रोशनी से जलप्रपात और भी आकर्षक लगता है। अब हम जानते हैं तीरथगढ़ जलप्रपात के बारे में। तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित एक अत्यंत सुंदर और प्रसिद्ध जलप्रपात है। यह कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है और अपनी सीढ़ीनुमा जलधारा और प्राकृतिक वातावरण के लिए जाना जाता है। यह जलप्रपात लगभग 300 फीट की ऊंचाई से कई स्तरों में गिरता है। चारों ओर घने जंगल और पहाड़ इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं। यहाँ का शांत वातावरण और प्राकृतिक दृश्य पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तीरथगढ़ जलप्रपात ट्रेकिंग और प्रकृति प्रेमियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहाँ जंगलों के बीच पैदल यात्रा, फोटोग्राफी और प्राकृतिक वातावरण का आनंद लिया जाता है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। यह अपनी हरियाली, वन्य जीवों, जैव विविधता और प्राकृतिक गुफाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ की प्राकृतिक वातावरण पर्यटकों को और प्रकृति प्रेमियों को विशेष रूप से आकर्षित करता है। यह उद्यान लगभग 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ घने सालवन, पहाड़ियाँ और अनेक दुर्लभ वनस्पतियाँ पाई जाती है। तेंदुआ, हिरण, जंगली भैंसा, पक्षियों की कई प्रजातियाँ और वन्य जीव यहाँ देखे जा सकते हैं और यहाँ प्रसिद्ध गुफाएं भी देखने को मिलते हैं, जैसे कुटुम्बसर गुफा। कुटुम्बसर गुफा यह अपनी प्राकृतिक संरचना और अंधेरी सुरंगों के लिए प्रसिद्ध है। कैलाश गुफा। कैलाश गुफा चूना पत्थर की सुंदर आकृतियों के लिए जानी जाती है। साथियों, अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय उत्सव के बारे में, जो है बस्तर दशहरा। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र का विश्व प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है। यह जगदलपुर में बड़े उत्साह और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। यह भारत का सबसे लंबा चलने वाला दशहरा उत्सव माना जाता है, जो 75 दिनों तक चलता है। यह उत्सव देवी दंतेश्वरी की आराधना को समर्पित है। बस्तर दशहरा का संबंध राम और रावण के युद्ध से नहीं है, बल्कि स्थानीय जनजातीय परंपराओं और देवी पूजा से है। विशाल लकड़ी के रथ को हजारों लोग रस्सियों से खींचते हैं, जो इस उत्सव का मुख्य आकर्षण है। इसमें बस्तर की विभिन्न जनजातियां अपनी सांस्कृतिक नृत्य और संगीत प्रस्तुत करती हैं। बस्तर दशहरा जनजातीय संस्कृति, लोक कला और सामाजिक एकता का प्रतीक है। यह उत्सव बस्तर की पारंपरिक पहचान को देश और विदेश में प्रसिद्ध बनाता है। बस्तर दशहरा केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि बस्तर की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और परंपराओं का जीवंत उत्सव है। देवी दंतेश्वरी की आराधना, विशाल रथ यात्रा और लोक कलाओं की प्रस्तुति इसे विश्व की प्रसिद्ध उत्सव दर्शाती है। पर्यटन बढ़ने से स्थानीय युवाओं को कई क्षेत्रों में काम मिल रहा है, जैसे होटल और रिसोर्ट व्यवसाय। होटल, लॉज और रिसोर्ट में मैनेजर, कुक,

0: वेटर और स्टाफ की जरूरत पड़ती है। स्थानीय युवक पर्यटकों को घुमाने टैक्सी और वाहन सेवा से आय अर्जित कर रहे हैं। बस्तर की बेल मेटल कला, बांस शिल्प और जनजातीय हस्तकला की बिक्री बढ़ रही है। पारंपरिक नृत्य, संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से कलाकारों को रोजगार मिलता है। ट्रेकिंग, कैंपिंग और जंगल सफारी जैसी गतिविधियों में युवाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है। यहाँ आने वाले पर्यटकों के कारण स्थानीय लोगों को गाइड सेवा, वाहन और परिवहन, भोजन एवं होटल व्यवसाय, हस्तशिल्प बिक्री जैसे क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त हो रहा है। दोस्तों, यहाँ घूमने का उपयुक्त समय जुलाई से फरवरी का समय सबसे अच्छा माना जाता है। वर्षा ऋतु में जलप्रपात का दृश्य अत्यंत मनमोहक दिखाई पड़ता है। राज्य सरकार द्वारा पर्यटन सुविधाओं, सड़क और निवेश परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इससे भविष्य में रोजगार के और अवसर बढ़ने की संभावना है और साथ ही कई रोजगार मेले और निवेश परियोजनाएं भी शुरू की गई है। धन्यवाद
1: दोस्तों।

0: कार्य किया जा रहा है। इससे भविष्य में रोजगार के और अवसर बढ़ने की संभावना है और साथ ही कई रोजगार मेले और निवेश परियोजनाएं भी शुरू की गई है। धन्यवाद
1: दोस्तों।

0: उनकी जोड़ी ने एक ऐसा जादू बिखेरा कि 90 का दशक मानो कुमार सानू के नाम हो गया।
1: सन 1990 में प्रदर्शित फिल्म आशिकी ने उन्हें लोकप्रियता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। इस फिल्म के गीत आज भी श्रोताओं की पसंद बने हुए हैं, तो चलिए सुनते हैं इसी फिल्म से गीत जिसे संगीत से सजाया नदीम श्रवण ने, लिखा समीर अंजन ने, सुनिए अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू के आवाज़ में।

0: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: कुमार सानू ने अपने लंबे सफर में अनेक संगीतकारों और गायों के साथ काम किया हुआ है और हिंदी के अलावा बंगाली, भोजपुरी, मराठी, गुजराती तथा अन्य भाषाओं में भी गीत गाया हुआ है।
4: लगातार 5 वर्षों तक सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार जीतना अपने आप में एक अनूठी उपलब्धि है। यह उपलब्धि उनकी लोकप्रियता और प्रतिभा का प्रमाण है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म DDLJ से, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत से सजाया है जतिन और ललित ने। सुनिए लता मंगेशकर और कुमार शानू की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, गीतों का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा। चलिए आपको सुनवाते हैं सामान्य ज्ञान से जुड़ी कुछ बातें।
1: स्नेह।
0: हाँ हर्ष,
1: क्या आप जानते हैं
0: और वो क्या
1: कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है?
0: हाँ हर्ष, मुझे इसका जवाब मालूम है, और इसका जवाब है जांघ की हड्डी, जिसे फीमर कहते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही, यानी कि तुम भी जनरल नॉलेज रखते हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: इसके साथ एक और प्रश्न पूछता हूँ, पृथ्वी पर मौजूद कुल कितना पानी खारा होता है?
0: लगभग 97% पानी खारा है हर्ष, केवल 3% पानी ही मीठा है।
1: क्या बात है। अच्छा ये बताओ, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है?
0: भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम है गंगा डॉल्फिन।
1: बहुत खूब। दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है बताओ?
0: दुनिया का सबसे बड़ा फूल ये है रेफ्लिसिया एर्नोंडी।
1: काफी अच्छा। अब चलो मैं तुम्हें समुद्र की ओर ले जाता हूँ, तो बताओ बताओ कि ऑक्टोपस के कितने हृदय होते हैं?
0: तुम्हें लगा होगा कि मुझे इसका जवाब नहीं मालूम, पर मुझे ये भी मालूम है, ऑक्टोपस के 3 हृदय होते हैं।
1: बिल्कुल सही जवाब, 3 हृदय होते हैं, यानी कि ऑक्टोपस अगर 2 दिल टूट भी जाता है, 2 बार ब्रेकअप हो भी जाता है, तो 1 दिल बचा ही रहेगा।
0: बिल्कुल सही।
1: एक अगला प्रश्न पूछ के देखते हैं कितना आता है तुम्हें। मनुष्य के मस्तिष्क में लगभग कितना अरब तंत्रिका कोशिकाएं होती है?
0: इसका जवाब है 86 अरब कोशिकाएं।
1: क्या खूब। एक और है, आखिरी का सवाल है, देखते हैं तुम जवाब दे पाओगे, यानी पहाड़ों पर ले जाता हूं तुम्हें।
0: पूछो, पूछो।
1: विश्व का सबसे सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है?
0: इसका जवाब काफी आसान है हर्ष।
1: क्या है?
0: और वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8849 मीटर है। दोस्तों ये थी सामान्य ज्ञान से जुड़ी कुछ बातें। अब वापस चलते हैं गीतों की दुनिया में और जानते हैं कुमार सानू के बारे में कई और रोचक बातें।
1: स्नेह।
0: हाँ,
1: मोहब्बत को जानने के लिए मोहब्बत करनी पड़ती है।
0: बिल्कुल,
1: ये तो आपने सुना ही होगा। बिल्कुल। और अगर आपको आज तक मोहब्बत नहीं हुआ है और आपको महसूस करना है कि क्या चीज मोहब्बत होती है, तो बस आंखें बंद करिए और सुनिए अगला गीत, फिल्म आंदोलन से, जिसे लिखा समीर अंजन ने, संगीत से सजाया नदीम श्रवण ने। सुनिए अलका याग्निक और कुमार सानू की मोहब्बत भरी आवाज में।

0: couples. Remember, it's never just a woman issue. Both partners are equal here. From lifestyle changes to advanced medical therapy like IVF, infertility treatments are available. It's time to break the stigma, start the conversation, and seek timely medical advice. Let us come together to be a voice for complete family. Thank you.
1: Issued in public interest by Zenova, a division of Gufic Biosciences.
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: दोस्तों, कुछ देर के लिए कार्यक्रम आज के फनकार को देते हैं विराम और जानते हैं खेल जगत से जुड़ी बातें कार्यक्रम खेल समाचार में।

0: दोस्तों पहला खेल समाचार निशानेबाजी से, तो चलिए सुनते हैं जिसमें वांशिका चौधरी और शिव नरवाल की भारतीय जोड़ी नंबर ISSF जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता। भारतीय जोड़ी ने कुल 469.7 अंक हासिल किए, वहीं पोलैंड की जोड़ी ने 471.9 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता और चीनी ताइपे ने 410 अंक बनाकर कांस्य पदक हासिल किया।
1: दोस्तों अगला खेल समाचार है खेल बैडमिंटन से, जिसमें त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद भारतीय महिला युगल जोड़ी ने अमेरिका ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में स्पेन की पाउला लोपेज और लुसिया रोड्रिगेज को 3 गेमों के कड़े मुकाबले में हराकर दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। हमारी इस जोड़ी ने साथ मिलकर स्पेन की जोड़ी को 21-12, 14-21, 21-13 से 51 मिनट तक चले पहले दौर के मुकाबले में पराजित किया।
0: दोस्तों अगला खेल समाचार महिला T20 क्रिकेट से, ICC महिला T20 विश्व कप 2026 में भारत की टीम चर्चा में बनी हुई है। भारत ने 3 मैच में 4 अंक हासिल किए हैं और उसका नेट रन रेट 2.511 है। अभी तक के मैच में भारत ने पाकिस्तान के 64 रन से और नीदरलैंड को 95 रन से हराया था, लेकिन हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उसे हार का सामना करना पड़ा। अब भारत का अगला मुकाबला बांग्लादेश से है, जो सेमीफाइनल की दौड़ के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
1: दोस्तों अगला खेल समाचार है फुटबॉल से। वर्तमान में हो रहे फीफा विश्व कप में हाल के मुकाबले में कई दिलचस्प नतीजे सामने आए हैं। पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इस मैच में पुर्तगाल का आक्रमण बेहद तेज दिखा। फुटबॉल जगत के स्टार स्ट्राइकर कहे जाने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भी और टीम को एक तरफा जीत दर्ज करवाई।
0: स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से हराया। स्विट्जरलैंड ने संतुलित खेल दिखाया और मैच अपने नाम किया।
1: इंग्लैंड और घाना का मैच 0-0 से ड्रॉ रहा। इंग्लैंड को जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन घाना की मजबूत रक्षा पंक्ति ने उन्हें रोक दिया।
0: बोस्निया

0: क्रोएशिया ने एक गोल की बढ़त बचाकर जीत हासिल की।
1: ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। ब्राजील की टीम को पूरे मैच में हवा रही कि उसने अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाया।
0: बिल्कुल हर्ष, इसी के साथ कोलंबिया ने डीआर कांगो को 1-0 से हराया। ये मैच भी काफ़ी कड़ा रहा और कोलंबिया ने सीमित मौक़ों का फ़ायदा उठाकर जीत दर्ज की।
1: मॉस्को ने हाल ही को 4-2 से हराया। ये मुकाबला रोमांचक रहा, लेकिन मोरक्को ने दूसरे हाफ में शानदार वापसी करते हुए जीत दर्ज की। तो दोस्तों, आज के खेल समाचार में बस इतना ही।

0: दोस्तों, आपने किसी ना किसी को गले से चैन चुराते सुना होगा। तो किसी को गाड़ी, तो किसी को साइकिल, तो एक बार के लिए किडनी तक चुराते आपने सुना होगा। मगर क्या आपने ये सुना है कि किसी का दिल चुरा लिया गया हो? हाँ, प्रेम में ये संभव है। जब इंसान प्रेम में पड़ जाता है तब इसी तरह की इलॉजिकल बातें वो करने लगता है।
1: तो चलिए दोस्तों, अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी से। सुनिए ये प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों इसी के साथ वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। कल शाम इसी समय फिर होगी आप सबसे मुलाकात एक नए आवाज और एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मैं हर्ष ठाकुर
1: और मैं इसने श्रीवास्तव।
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युवाणी कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6 बजे को है। थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। आज संविधान हत्या दिवस है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक

0: कविता को साझा करते हुए उनकी संवेदनाओं भरी इन पंक्तियों को सुनने का आग्रह किया।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस
0: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंताकयाला और बश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के ताई तागक, ओडिशा से भाजपा के देवशीष सामंतराय, तमिलनाडु से कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती और गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। भारत ने आज हरियाणा के गुरुग्राम में 2026 के ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों, उपमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में प्रमुख वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है, 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने वेनेजुएला सरकार और वहां के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अमेरिका के फुलटन में यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा, देविका सिहाग और किदाम्बी श्रीकांत सहित अन्य भारतीय खिलाड़ियों ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा, देविका सिहाग ने आज आसान जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने भारत के ही डी सनीत को पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 396.8 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम की 6:10 होने को है। अब छत्तीसगढ़ी में समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करते हैं।

प्रदेशमा बहुमंजिला भवन कोचिंग संस्थान होटल और व्यावसायिक दुकान के सुरक्षा व्यवस्था के विशेष ऑडिट कराए जाही मुख्यमंत्री हा दिन निर्देश आज संविधान हत्या दिवस में छत्तीसगढ़ के संग देशभर में आने आने कार्यक्रम आयोजित करे जाते और पल्स पोलियो अभियान के तहत 28 जून के प्रदेश में शून्य ले लेके 5 बछर तक के लैका मल्ला पोलियो के दवाई पिलाए जाही। अब समाचार विस्तार ले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा राज्य में जन सुरक्षा ला ध्यान में राखत हुए बहुमंजिला भवन कोचिंग संस्थान होटल और व्यावसायिक दुकान के सुरक्षा व्यवस्था के विशेष ऑडिट कराए के निर्देश दिन मुख्यमंत्री हा मुख्य सचिव ला राज्य भर में अग्नि सुरक्षा भवन सुरक्षा और आपातकालीन व्यवस्था के जांच कराए बर कहिन एकर तहत सबो जिला में विशेष निरीक्षण अभियान चलाए जाही। ए दौरान भवन के सुरक्षा फायर एनओसी अग्निशमन उपकरण आपातकालीन निकास बिजली व्यवस्था के जांच करे जाही। मुख्यमंत्री हा कहे है कि सुरक्षा मानक के अनदेखी करैया मनु पर नियम के अनुसार कार्रवाई करे जाही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और रसायन उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ले मुलाकात करीन ए दौरान जन स्वास्थ्य औषधि और उर्वरक क्षेत्र के संग आने आने विभागीय विषय में चर्चा हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हा केंद्रीय मंत्री ला जानकारी दीन कि राज्य में खाद्य वितरण व्यवस्था ऊपर लगातार निगरानी रखे जावा थे कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ घलो कार्रवाई करे जाते संगे संग राज्य सरकार नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग ला बढ़ावा देवा थे किसान मनला ए लाभ के जानकारी देबर जागरूकता अभियान घलो चलाए जाते। केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा हा छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवा के विस्तार और विकास मन के हित में उठाए जावत प्रयास के सराहना करत हुए हर संभव सहयोग के भरोसा दिलाई। एकर पहली काली मुख्यमंत्री हा नई दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ले मुलाकात कर छत्तीसगढ़ विशेषकर बस्तर क्षेत्र के विकास काम और जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा करी। ए दौरान श्री साय हा छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के स्थापना के प्रस्ताव घलो राखिन मुख्यमंत्री हा केंद्रीय बजट में देश में 3 नवा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के घोषणा के उल्लेख करत हुए आग्रह करीन कि एमाले एक संस्थान छत्तीसगढ़ ला दे जाए। उमना बताइन कि छत्तीसगढ़ में दुर्लभ औषधि वनस्पति और जड़ी बूटी प्राकृतिक रूप ले पाए जाते। केंद्रीय मंत्री हा राज्य में करे जा जन कल्याणकारी काम के सराहना करत हुए सहयोग करे बर बात घलो कहिन। नई दिल्ली प्रवास के दौरान आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा भारतीय जनता पार्टी ले मुलाकात करीन ए बेरा मा संगठन ले जुड़े आने आने विषय के संग प्रदेश के संगठनात्मक गतिविधि के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए ट्राइबल यूथ हॉस्टल के विद्यार्थी मन ले मुलाकात करके उकर उत्साहवर्धन करीन ए बेरा मा उमन हा छात्र मन ला मुख्य परीक्षा बर शुभकामना दीन। जानबा के मुताबिक यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा मा द्वारिका स्थित ट्राइबल यूथ हॉस्टल के 13 छात्र मन हा सफलता पाए हे। एमाले ज्यादा विद्यार्थी जनजाति ग्रामीण और सामाजिक रूप ले वंचित वर्ग के हरे। नगरी प्रशासन और विकास विभाग हा प्रदेश मा सबो नगरी निकाय के मरम्मत और रखरखाव बर 22 करोड़ रुपया ले ज्यादा के आपात निधि जारी करे हे। विभाग डहर ले चालू वित्तीय बछर के पहली तिमाही अप्रैल ले जून महीना बर ए राशि जारी करे गए हे। एकर तहत 14 नगर निगम ला 13.76 करोड़ रुपया जारी करे गए हे। उन्हें 56 नगर पालिका बर 5.18 करोड़ रुपया स्वीकृत करे गए हे। विभाग हा 124 नगर पंचायत बर घलो 3.66 करोड़ रुपया जारी करे हे। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ले गए विशेष भेंट वार्ता के प्रसारण आकाशवाणी डहर ले काली 26 जून के करे जाही। ए कार्यक्रम बिहनिया 10 बजे ले 10:25 तक प्रसारित होही। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर डहर ले तैयार एक कार्यक्रम के प्रसारण छत्तीसगढ़ के सबो आकाशवाणी केंद्र ले करे जाही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आपमन आकाशवाणी रायपुर ले।

0: सुना था।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता अब खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़बो बाचे समाचार कोती। आज संविधान हत्या दिवस मनाए जाते। ए बेरा मा देश भर मा आने आने कार्यक्रम आयोजित करे जाते। ए दिन 25 जून 1975 के लगाए गए आपातकाल के याद दिलाते, जब देश मा संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप ले प्रभावित होए रहिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा संविधान हत्या दिवस मा आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्य के रक्षा बर दृढ़ संकल्पित रहे लोगन मन ला श्रद्धांजलि दिन। सोशल मीडिया पोस्ट मा श्री मोदी हा कहिन कि आपातकाल संविधान ऊपर सीधा हमला रहिस। प्रधानमंत्री हा कहिन कि ए दौरान लोकतांत्रिक संस्था घलो निशाना मा रहिन। उहे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा सोशल मीडिया मा एक वीडियो साझा करत हुए आपातकाल ला भारतीय लोकतंत्र के सबसे काला अध्याय बताइन। उमन प्रदेशवासी मन ले लोकतंत्र सेनानी मन के त्याग और बलिदान ला याद करत हुए संविधान के रक्षा और लोकतांत्रिक मूल्य ला सशक्त बनाए के संकल्प लेके आह्वान करीन। पल्स पोलियो अभियान के तहत 28 जून के प्रदेश मा शून्य लेके 5 वर्ष तक के लईका मल्ला पोलियो के दवाई पिलाए जाही। उन्हें छोटे लईका मल्ला 29 और 30 जून के मापअप अभियान के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता और मितानिन घर घर जाके दवाई पिलाही। स्वास्थ्य विभाग हा बालक मल्ले अपील करे है कि उमन 28 जून के अपन तीर के पोलियो बूथ मा जाके लईका मल्ला पोलियो के दवाई जरूर पिलाए। राज्यपाल रमेन डेका हा लोक भवन मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिया ले शक्ति जिला के अधिकारी मन के संग चर्चा करके जनकल्याणकारी योजना के जानकारी लेन। राज्यपाल हा जल संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन ला सबले आगू राखे के निर्देश दिन। उहे राज्यपाल हा रायपुर के माना कैंप मा स्थित फिजिकल रेफरल रिहेबिलिटेशन सेंटर, सेरेब्रल पॉलिसी गेट लैब और दिव्यांग जनमन बर संचालित महाविद्यालय के निरीक्षण करके उहां उपलब्ध सुविधा के जायजा लेन। ए दौरान उमन हा दिव्यांग मनला ट्राइसाइकल घलो दिन। वरिष्ठ आईपीएस बद्री नारायण मीणा ला बस्तर रेंज के नवा पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त करे गए है। उमन बस्तर आईजी सुंदरराज पी के जगह ली ही। इस संबंध में गृह विभाग हा आदेश जारी कर दे है। श्री मीणा पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में आईजी के पद में तैनात रही। एकर पहली उमन दुर्ग रेंज के आईजी के रूप में अपन सेवा दे चुके है। जसपुर पुलिस आ काली 24 जून के जिला के सबो 766 गांव में एक संग जन चौपाल लगा के हेलमेट जागरूकता अभियान चलाइन। ए अभियान ला गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करे गए है। जसपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के राज्य प्रमुख सोनल राजेश शर्मा हा, SSP डॉक्टर लाल उमेश सीला वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रमाण पत्र और मेडल प्रदान करें। काली छत्तीसगढ़ के संग देश के आने आने जगह मा मुहर्रम श्रद्धा और आस्था के संग मनाए जाही। करबला मा सत्य और न्याय के रक्षा बर पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उखर साथी मन के शहादत के याद मा मुहर्रम मनाए जाते। ए बेरा मा ताजिया निकाले जाते और करबला के शहीद मन के सर्वोच्च बलिदान के याद मा मजलिस के आयोजन करे जाते। मुहर्रम के बेरा मा राजधानी रायपुर के संग राज्य के कतकोन शहर मा काली ताजिया निकाले जाही। रायपुर के करबला मा हजरत हुसैन के बड़का कुर्बानी ला याद करत हुए मजलिस यानी धार्मिक बैठक के आयोजन करे जाही। राजनांदगांव मा राज्य कर विभाग हा फर्जी बिलिंग के मामला मा कार्यवाही करत हुए मैसर्स आदेश्वर ट्रेड लिंक के संचालक आदेश्वर चौरडिया ला गिरफ्तार करे है। जांच मा करीब 76 करोड़ रुपया के कागजी लेन देन और 8 करोड़ 22 लाख रुपया के संदिग्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामला आगू आए है। विभाग के अनुसार फर्म हा बिना वास्तविक खरीदी के फर्जी बिल के जरिया ले कर लाभ लेके प्रयास करें। आखिर मा प्रमुख समाचार एक घौं फेर। प्रदेश मा बहुमंजिला भवन कोचिंग संस्थान होटल और व्यावसायिक दुकान के सुरक्षा व्यवस्था के विशेष ऑडिट कराए जाही। मुख्यमंत्री हा दिन निर्देश। आज संविधान हत्या दिवस मा छत्तीसगढ़ के संग देश भर मा आने आने कार्यक्रम आयोजित करे जाते और पल्स पोलियो अभियान के तहत 28 जून के प्रदेश मा शून्य लेके 5 वर्ष तक के लईका मल्ला

0: पोलियो के दवाई पिलाई जाही। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन एही सिरावत है। जय जोहार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपले केंद्रों से बोल रहे हैं। 6:20 होने को हैं। संस्कृत में समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: केवलं पंक्ति संग्रहः अपितु आपातकाले लोकतंत्रस्य उपरि आरोपितायाः वेदनायाः श्वसनावरोधस्य प्रतिबंधानां च सजीव अभिव्यक्तिः अस्ति इति।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी थी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चौ में

0: अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
1: सीख चौ में

0: दिवसीयं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रिणां सम्मेलनम् आरब्धम्। केन्द्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर अवदत् यत् आर्थिक वृद्ध्यर्थं सामाजिक प्रगत्यर्थं मानव विकासाय च ऊर्जा अत्यावश्यकी अस्ति इति। वेनेजुएला देशस्य राष्ट्रपतिपदासीना डेल्सी रोड्रिक्स वर्या अद्य प्रातः काले कराकस नगरे क्षेत्रं परितश्च 0.27 तीव्रतांकानां भूकंपानां कारणेन बहूनि भवनानि भग्नीभूतानि इति उक्तवती। तया आपत्कालस्य घोषणा च कृता। राष्ट्रपतिः अवदत् यत् शक्तिशाली भूकंपानां श्रृंखलायाः अनन्तरं 32 जनाः मृताः, 700+ जनाः व्रणिताः सन्ति इति। एतन्निमित्तं उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन वर्यः, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी च दुःखं प्रकटितवन्तौ। सामाजिक प्रसार माध्यमे प्रधानमंत्रिणा मोदिना उक्तं यत् भारतं सर्वैः पीडितैः सह ऐक्येन स्थितमस्ति, सर्वेभ्यश्च यथासंभव साहाय्यं प्रदातुं च आश्वस्तिम् अददात्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य भारते अमेजॉन संस्थायाः 48 बिलियन डॉलर इत्यस्य अभिलेख्य निवेशस्य स्वागतम् अकरोत्। श्रीमोदी नवदेहल्याम् अमेजॉन संस्थायाः मुख्य कार्यकारी अधिकारी एंडी जेस्सी इत्येतमपि मिलितवान्। अद्य प्रातः जापानदेशस्य ईशान्यभागे 7.2 तीव्रतायाः शक्तिशाली भूकम्पः अभवत्, येन न्यूनातिन्यूनं 4 जनाः आहताः। इवाते प्रान्तस्य पूर्वतटे प्रायः 40 किलोमीटर मिते गाम्भीर्ये 6.9 तीव्रतायाः कम्पनम् अभवत्। उपराष्ट्रपतिः राज्यसभायाः सभापतिश्च सीपी राधाकृष्णन वर्यः अद्य राज्यसभायाः नवनिर्वाचितान् पुनः निर्वाचितान् च 10 सदस्यान् सांसदत्वेन शपथम् अकारयत्। वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः अद्य युनाइटेड किंगडम देशस्य लंदन नगरस्य त्रिदिवसीयां आधिकारिक यात्राम् आरभत। यात्रावधौ सः भारत यूके व्यापक आर्थिक व्यापार अनुबंधस्य अग्रिम मासस्य 15 दिनांके प्रवृत्तस्य सहचर द्विगुण योगदान सम्मेलनस्य च कार्यान्वयनस्य सज्जतायाः समीक्षां करिष्यति। प्रियाः श्रोतारः, अन्ते क्रीडावार्तासु। विश्व पादकन्दुक क्रीडायाम् अद्य मोंटेरे नगरे दक्षिण कोरिया देशं विरुध्य 1-0 इति अंकाभ्याम विजयं प्राप्य दक्षिण अफ्रीका प्रथमवारं फीफा विश्व चषकस्य निर्णायक चरणं प्रति प्रविष्टः। समूह अ क्रीडायाम दक्षिण अफ्रीकायाः कृते एकमात्र गोल इत्युक्ते लक्ष्यभेदनं थापेलो मासेको इत्यनेन कृतम्। भारतदेशं विरुध्य बांग्लादेशः आईसीसी महिला टी20 विश्वचषके अद्य मैनचेस्टर नगरस्थे एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड क्रीडांगणे समूह अ क्रीडायां स्पर्धिष्यते। क्रीडा भारतीय समयानुसारं सायं 7:30 आरप्स्यते। प्रियाः श्रोतारः, मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। अद्य संविधान हत्या दिवसः आचर्यते। आपत्कालकाले लोकतांत्रिक मूल्यानां रक्षयन्त्रिभ्यः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना श्रद्धांजलिः समर्पिता। विदेश कार्यमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः वैश्विक समस्यानां मध्ये दृढ़तर सहयोगस्य आवाहनं कृतवान्। भारतस्य ब्रिक्स 2026 इत्यस्य अध्यक्षतायाः अंतर्गतं गुरुग्राम नगरे ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रिणां सम्मेलनम् आरभत। वेनेजुएला देशे एकस्यानन्तरं अपरत्वेन प्रबलः भूकंपः आगतः इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 396.8 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। मीडियम वेव पर लीजिए सुनिए इंग्लैंड के ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में भारत और बांग्लादेश के मध्य खेले जाने वाले आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 का आंखों देखा हाल। इसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे हैं। एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। हमारे केंद्र के कार्यक्रम अब एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर सुने जा सकेंगे। आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
2: पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बना था 2026 में उसी इंग्लैंड की भूमि पर हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम टी20 विश्व कप जीतने का ख्वाब देख रही है। लेकिन

दिनों इस राह में मिला एक स्पीड बंप, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली हार। पर कहते हैं हीरो वो नहीं होता जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वो होता है जो गिरकर फिर खड़ा हो उठता है। आज फिर वही मैनचेस्टर का मैदान है, सामने बांग्लादेश है और अपनी गलतियों से सीख बाउंस बैक करने की चुनौती है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट बॉल 20, मेरा नाम है दर्पण और मेरे साथ है मुदिता।

0: उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
1: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
2: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
3: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
2: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
3: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
2: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
3: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
1: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
4: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
3: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
5: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
3: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
5: आकाशवाणी से।
1: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
6: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में बहुमंजिला भवनों, कोचिंग संस्थानों, होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ऑडिट कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ सहित देशभर में आज मनाया जा रहा है संविधान हत्या दिवस। जशपुर पुलिस द्वारा 1,766 गांव में चलाए गए हेलमेट जागरूकता अभियान को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला और कल छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाएगा मुहर्रम। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुमंजिला भवनों, कोचिंग संस्थानों, होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को राज्यभर में अग्नि सुरक्षा, भवन सुरक्षा और आपातकालीन व्यवस्थाओं की जांच कराने को कहा है। इसके तहत सभी जिलों में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान भवन की सुरक्षा, फायर एनओसी, अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन निकास, विद्युत व्यवस्था की जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान जन स्वास्थ्य, औषधि और उर्वरक क्षेत्र सहित विभिन्न विभागीय विषयों पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी कि राज्य में खाद्य वितरण व्यवस्था पर सतत निगरानी रखी जा रही है, कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, साथ ही राज्य सरकार नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। इससे पहले कल मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर छत्तीसगढ़, विशेषकर बस्तर क्षेत्र के विकास कार्यों और जनकल्याण योजनाओं पर चर्चा की। इस दौरान श्री साय ने छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा। नई दिल्ली प्रवास के दौरान आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों सहित प्रदेश में संगठनात्मक गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। वहीं मुख्यमंत्री ने आज नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए ट्राइबल यूथ हॉस्टल के विद्यार्थियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। गौरतलब है कि यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में द्वारका स्थित ट्राइबल यूथ हॉस्टल के 13 छात्रों ने सफलता पाई है। इनमें से अधिकांश विद्यार्थी जनजातीय, ग्रामीण और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के हैं। आज संविधान

0: सेक्शन में अंडरब्रिज निर्माण के चलते आज से 29 जून तक कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन ने 10 ट्रेनों को रद्द करने के साथ ही 3 ट्रेनों को निर्धारित स्टॉपेज के पहले समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस बीच यात्रियों की सुविधा के लिए भुवनेश्वर और मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन के बीच एक फेरे के लिए स्पेशल ट्रेन कल 26 जून को चलाई जाएगी। यह ट्रेन कल भुवनेश्वर से रवाना होकर 28 जून को लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन पहुंचेगी। इस ट्रेन का स्टॉपेज रायपुर और दुर्ग स्टेशन में दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में बहुमंजिला भवनों, कोचिंग संस्थानों, होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ऑडिट कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ सहित देशभर में आज मनाया जा रहा है संविधान हत्या दिवस। जशपुर पुलिस द्वारा एक साथ 766 गांव में चलाए गए हेलमेट जागरूकता अभियान को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला। और कल छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाएगा मुहर्रम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जगदलपुर है। मीडियम वेव पर थोड़ी ही देर में आप सुन रहे हैं T20 महिला विश्व कप क्रिकेट मैच 2026 का दिल्ली से आंखों देखा हाल। शाम के 7 बजे है। FM बैंड और मोबाइल ऐप पर प्रस्तुत है कार्यक्रम बस्तर के स्वर।

0: राम राम सुमारी, राम राम
1: राम राम अरमा, राम राम
0: अमर लिसने
1: ओके
0: आले तुम्ही मैं तो अमर लो
1: हो
0: आले आमचे दादा दीदी मन संग बलवेट गाठो ने
1: हो
0: एची संगी बस्तर के सुपर कार्यक्रम सुन तो सफाय गांव कारी दादा दीदी सियान सजन और संजोरिया संगवारी मन की मैं अड़मा
1: मैं सोमारी
0: हमें दोनों करूं से राम राम, राम।
1: तो अड़मा
0: हाँ
1: पीला मन के काय बुलक्षित काय
0: नहीं बोल कु काय उन मन के बोल मैं दया करूं पड़े दे
1: हो रेडियो सुन तो सफाय नन्ना ने पीला मन के आम चो दोनों चो बाटले कुपी कुपी मया और लाने
0: हाँ दख दख सुमारी ने आमी तो मया दया खरल पीला जिला मन के मानतर आज काल तो जान सुख कसन जाले बेड़ा कमानी छो बुता छो मोर भले हो इसने
1: ओ का ये भी तो बारदार मोर का तो बुनाई उनाई चले से
0: आओ तो उन्हीं हिसाब ने गांव कार्य आम चे जोन बस्तरिया लोग
1: है
0: एमन आप चे सहयोग बल्लो ने एक दूसरे ले मदद कर तो भावना आम चे बस्तरिया लोग मन ने आसे ने
1: आसे का है मैं खूबे जगह दख ले सी का असन मिलून मिसुन बुता करतो विती का है मिलून मिसुन अड़मा मिलून मिसुन बुता करतो विती का है बुता जब के सरे से आर आम के जोन समय आने एक लो दुजान कर लो नुन सम विती बुता ने कुबे समय दा रहे से आर आम के कहे जातो समय बल रहे से उठा जातो सगा करे नहाले कहीं स्कूल नहाले अस्पताल बल ने उनने का है खुबे लोग बोलो ने बुता बल जब के सरे से आर उन बुता सर लो नाम जाओग बोल सकू ने
0: ये सब एक अगर लोग रलू अगर आपसे सहयोग मतलब खूबी जन कर लू तो ये जन बुता है उन झटके सर उन जाए इसने तो एक दूसरे की मदद कर तो बोल खूबी जरूरी है आगे जोगने का है बैठिया बनाते रहो इतने
1: बैठिया बने सत्य बल्ली
0: मानतरे वीकेंड एक आधुनिक कल जुग छो मतलब ने का जिकेंड एक लोग बाग मन ये बैठिया काम किए वीकेंड छोड़न दिला सो इतने
1: ओ का ये भी कल मसिंग मन हो तो के आले ये खूब बैठिया बुता है बोल सो दादा दीदी काय कल मसिंगे ये तो खूब पैसा खर्च लागे से बोल सुत ने आर कल मसिंग ने काय जब के समय समय बल जब के वैसे आर समय रहते रहते सरे से बुता बले उनी काजे आन चो दादा दीदी मन नहीं ज्यादातर हम चो कल मसिंग मन के काय मन कर सुत ने
0: हां मानतर असनाय काय सोमारी ने आर मेसा कल मसिंग चो चे पूरे लेवल नहीं होए
1: नहीं होए का
0: आम चे जोन आपसी भावना है उन सहयोग कर तो जोन मदद कर तो भावना है उन हमेशा रत्तो रहा है लोग बाग मन ने तेबे तो आम की काई ची पपड़ लो ने लोग मन खामे दे ने आम ही उन मनता ने काई काम करुन दिलो तो उन मन वाला आम स्थान काम करुन दे दे
1: तो जैसे ने बे बिया टीका होली ने बिया टीका बोले सपा ये बे तुम चकर बिया हो ऐसे बे

0: आर मैं नी लागे नाल गांव परच लोग नी जेल गेले उ तब भी असर हुआ
1: नी सर
0: उधर लोग के समाल को हुआ
1: नी हो
0: गांव परच लोग सहयोग कर देते भी तो सगा जगह के बोले समाल को हुआ है नी
1: ये तो सत्य है तो जन गांव करी लोग बगास तो मन आगत ले बोले ये बुता मन के करते रहो तो अरे बोले खरे सत कौन कौन तो था ना और कौन कौन तन भुलक ले बोले मानतर भुलक तो नु है ने जोन आपसी सहयोग आए कि आगे बढ़ाते रहते रहा और आप लोग काम बुता के बोले करते रहते रहे
0: हो ये गोर तो सत्य बोल ली अड़मा असन बुता मन के नी भूलक तरह यार दादा दीदी मन के बोले सुरता करते रहा कि असन बुता मन के कुबे लोग ने बुता जब के शुरू हुआ और समय बल बाच हुआ है
1: तो दख ये गोट की तो हमें सांग लू ने आले एदा आम चले गए जहला गोट मन आसोत आले एक गोट मन के बोले आम रहा हूं
0: आले तेवे
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेतनाथ सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेतनाथ सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: जीएसटी परिषद कमर्शियल बिजनेस के और सरल बनाली से बस ट्रक एम्बुलेंस ऊपर एवर एक समान 18% कर लागे दे आगे ये 28% रहे एचएस कोड क्लासिफिकेशन चो गिरधा कर लो बिना ऑटो पार्ट्स ऊपर एवर एक समान 18% कर होली से ये काम ले कल पुर्जा बना तो कंपनी अरु घेन तो लोग अरु सप्लायर्स चो चिपा गुचे दे एचए संगे कल पुर्जा चो अमरातो काम बले सरल हो दे बिजली ले चलतो बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर लागे दे ए मन्ने काही बदलाव नहीं होली से बिजली ले चलतो सपाई गाड़ी दुई चक्का बीती गाड़ी अरु तीन चक्का बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर चो लाभ मिलते रह दे असन ले ये मन सपाई कम जीएसटी दर बीती गाड़ी मंचो विकल्प बनू रह दे
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेतनाथ सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेतनाथ सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: जीएसटी काउंसिल तोरू

0: 18% टैक्स की सितोड़ मुन्ने अद 28% मत्ता एचएस कोड क्लासिफिकेशन किन परवा की वलेवा गाड़ी न सामान तपोरो इंजे ओंडोई 18% टैक्स की सितोड़ इत बुताते यू सामान पाड़नोर और सामान तच इयनोड़ा तिप्पाल कम आता और सामान तत्ता ओयना बूता सरल आयना उम्मीद मिंदे इलेक्ट्रिक गाड़ी न पर्रो मुन्नीटा लेकेन 1% टैक्स मंता नेलता माटा इद मिंदे की इलेक्ट्रिक गाड़ी नगा बाताय बदलाव आयो कोंडे इलेक्ट्रिक गाड़ी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक मुंड चक्काना गाड़ी 1% जीएसटी मौला तेने दोर किता अदेन के और सोबेर कम टैक्स ता गाड़ी बने मास मंता
1: समारी
2: हाँ
1: अली ये गुटमन के तम रालू ने
2: ओके
1: अली मोड़ा ने आज काय आनलू दक दक करूं दक
2: हाँ मुझे मोर आम च मोड़ा ने आज गोटोक वेड वार्ता आसे अड़मा ये मनात बुनकर अरे ये मन सांग सोत बुरसुदास हाँ तो अरे मन संगे बेट कर सोत श्री बलवीर सिंह कच अरे ये बुनकर बीता बुनकर बीती कसना एक ही जानुआ
1: आले थे बे ये वेड वार्ता क्या हमरा
2: आले थे बे
3: गांवकारी भाई बहन मन आज आमतन फिर गुटक सियान अमरला से एमन चनावा श्री भुरसुदास आरु एमन बोले ने कपड़ा बुन तो जन कला के कर सोत तो सियान सब ले आ गए तुम चो गांव चो नाव सांग देस ना
4: हम च गांव टोकापाल का
3: अच्छा टोकापाल बोले ने ये जन कपड़ा बुन तो जन कला है बोले बोले तुम चो परंपरा ले
4: हम चो पुरखती तक दादी पे पिता के ले
3: आसान
4: हम चो फोन कर लो चो
3: हां
4: उपजा साहब बोले
3: हां बोले ने कपड़ा बुन तो ही
4: बुन तो भी थी
3: हां हां तो कपड़ा जुन बुन तो काजे बोले काय काय स

0: तो उनके काय बोलत मंगटा बोलवा
1: मंगटा बोलवा
0: अच्छा
1: घरे बसून बीन तो बीती के
0: अच्छा
1: फिर ताना पूरा तराय उन पर जोर तराय और उन पर पाई कर तराय दुआर बाहर
0: अच्छा
1: पाँच ने उन पर बीन तराय
0: तो देखना बोले ने ये जो मोंगटा ने बीन तो काजे बोले ने एकला होइसे कि जान लागे से और लोग लागे सोता
1: बिन तो बेरा एकले बिन खो है और उन पाजिन पाई बेरा पाजिन करत बेरा लोग लागो है
0: अच्छा
1: धरक लाग तो का जी दुआरे बार में उनकी लमा तराय मार लगान बात पेरे बुरस कर तराय
0: अच्छा
1: देवे कराए हुआ है
0: हां
1: उनके बाद में बिन तो बेरा पेरे एक जन सूत लपट तो काय लागो है
0: अच्छा बोले कम से कम दो ही तीन जन लागे से
1: दो ही तीन जन लागे से
0: अच्छा
1: एकले काम न होय
0: जसन की ये बोलले सूत वगैरह फिर कहां ले तुम्ही मेरा एहसास
1: ये सर ले
0: सर ले अच्छा
1: और उन लाल बीती धागा उन कोट पाड़ ले अनुवाद
0: अच्छा
1: देता है अनुवाद इतवार दिन दिन
0: तो जसन की कौन कौन रंग बोल रहे तुम ही रंग लगाए सास की आगे ले
1: आगे बोना तरला जन ये बे हम च लगनी मेरे उन लाल रंग बोल तो बीती
0: अच्छा
1: तेब उन कोट पाड़ बाटले किन्नी ही तो बीती का अनुवाद
0: अच्छा
1: और कोनी कोनी तो रंग बीती है
0: उगड़ तो बीती बोले तुम्हें ये रंगीन सूत सी घेनुन बाती बनाए
1: हो घेनुन बनाओ नौला के आम इच बोल रंग आते रोल ये भी आल नी मेरे गुन्नी रंग तो बोले तेल लगवा जाड़ा तेल गोबर उनके पैर 8-15 दिन लगड़त रहे पाए गोबर संगे
0: अच्छा
1: उनके पैर उन आल चो गुंड में पाउडर में गरम करुन डूबत रहे
0: अच्छा
1: 3-4 बार डूब लोन पाछू कलर नहीं निकले उससे ना हो
0: अच्छा बोले सूत के डूब डूबा
1: सूत के हो
0: फिर उनके सुकान फिर बुनते रहे
1: फिर बुनते रहे
0: बोले ने ये तो खंड तकलीफ चुका
1: तकलीफ चुका है का उन पर काच तो रहा है नंदिन ने
0: अच्छा
1: उनके पानी खजा हुआ है आल बोलते भी थे
0: अच्छा हाँ तो बल्ले ने दक सूत बल्ले कसन है उन गोला भी थी आए कि उन
1: नहीं उन्हें अलग गोची गोची रहे से
0: अच्छा
1: उनके बैंड एक बैंडल रह हुआ है साहेब सर
0: अच्छा अच्छा बैंडल संग गोची
1: बैंडल संग रह हुआ उन दोनों ने सर पाँचों अलग अलग हिट हुए
0: अच्छा जसन की बल्ले ने कपड़ा मन तो कहीं अलग अलग हुए से ना
1: कपड़ा अलग अलग डिजाइन है का है?
0: अच्छा बल्ले सूत गोट की चोए से
1: गोट सूत गोट की है
0: अच्छा बल्ले कपड़ा मन अलग अलग है
1: कपड़ा अलग है उनके नाव अलग अलग आगे जो सियान मन ओंची पींदत हाँ है बायले मन सुंदर मोनी बंदी पाटा ठेकरा पाटा साड़ी धोती ये मन को पींदत धुरवा नाचा लोग कांस बंदी फेटा हुनवन धुरवाना चा लोग बड़े कपड़ा है सब
0: अच्छा
1: सबले ज्यादा कीमत भी सी है हां
0: तो जसन की बिया घरे होलन काय काय कपड़ा बुना हुआ इतना
1: बिया घरे एबे आदिवासी लोग का जोल माय लुगा दे 16 आदमी थी
0: अच्छा
1: माय चंद्र बोलवात माय लुगा
0: हां
1: और दूरवा दूरी लोग गोलन बंदी पटक देवात
0: अच्छा
1: माय लुगा
0: अच्छा बोले ने ये कसन कपड़ा मन तुम्हें बुन बुन आज बोले हुए
1: तुआल आए धोती आए ओंची आए पाटा आर सब बनाओ
0: अच्छा
1: जैसन सांगलन उसन बनाओ क्या
0: अच्छा जैसन की बाग मुंडी पाटा बोले हुए से ना
1: हुने बे बीन तो लोग बन मर लगा है नहीं आए
0: ऐसा अच्छा
1: उनके ताना बना तो बेरा उनके ताना बनान वाती सूत के बांधा तुम्हारे कपड़ा
0: अच्छा
1: और उनके पैर उन आल तो थाने डूबा और उनके फिर निकरान पे उनके लेफ्टन भत भी न ते उन बाग मुई पर तरे उन लोग नहीं आत मरला
0: अच्छा
1: जान लोग
0: हां बोले आजकल ये कपड़ा जबल मांग नहीं होय काहे ना लागे से कोन घेन तो लोग
1: ए ज्यादा नहीं घेन ते पर
0: नहीं घेन
1: आगे जी आसन
0: आसन तो दखली जने तू इतलो जोन कपड़ा मन जो नाव के सांगलिस ना तो आजकल बिल का ऐसा कपड़ा मन के
1: ए बे सुंदर मनी साड़ी धोती
0: अच्छा
1: बूंदी पाटा तू आ लोंगची ए चले से आदिवासी लोग सानी भी को
0: अच्छा बले बे बले चले
1: चले से
0: हां अच्छा तो नोआ हिसाब ने आजकल तुम काय कपड़ा बुनसास आजकल चो हिसाब ने
1: पिनोआ बोलतो रलोनी ए दुई पोटा बार भेजतो रल
0: अच्छा

0: नकी धोती बोल तो बीती 250 आए 200 आए
1: अच्छा
0: असन बोल तू आल मन बोल 400 500 आए 300
1: हां
0: हां जसन कपड़ा चो उसन मोल
1: मोल आए बोलो मात्र उता सूत ओगरा बोल तो लागे से
0: घेन पड़े सूत लागे से आची लागे तू आल ने आची ज्यादा खाऊ है
1: हां हां
0: सूत सारा चूतले रहु है तीन दांत के तीन और 300 बिकु से
1: अच्छा
0: चार आदमी तो 400 500 आए
1: हां हां तो बोलो महीना दिन ने किठा ना सन बोले
0: हफ्ता में दुई बार बनाऊ खुआ चार ठान कपड़ा
1: चार ठान
0: सुंदर मोनी बना तो रहल उन तो दिन भर ने बोल गोटक नहीं होय
1: तो बोले टेबले बोले बिक्री हिसाब ने बोले महीना दिन ने कितलो सन पैसा होय से जानना
0: जितलो कमाल उतलो मीर होय
1: अच्छा
0: कसन बोल ने हम ठगोली जाल तो नहीं होय
1: हां हां
0: 24 घंटा काम कर लु जाले हम शुक्रवार दिन का डूटन काट लो 1000 रुपया मिल हुआ है सोमवार दिन का डूटन काट लो 1000 रुपया 2000 रुपया हफ्ता ने हो गए
1: अच्छा
0: हां बोल 300-400 गुचान दे
1: हां
0: 700-800 रुपया मिल रहे से ची
1: अच्छा
0: हम के तेवे जीव से
1: हां उन तो आए बोले ने ये बोले तुम छो जन जीव ना खाओ ना बोलू बे बोले ई कपड़ा
0: ही दंदा है
1: अच्छा हम
0: छो रोल भी तक बेड़ा खाना आ से जानू हम के गरीब लोग के कहां से मिल रहे
1: हां उन तो आ छे मंतर भिकते रे ने बोले कहां भिक्षा घर चानू के सुत के हाट
0: ने नहीं हाट नहीं हुआ शुक्रवार हाट सोमवार हाट
1: अच्छा दुई सी हाट ने बिक्री हो
0: दुई हाट ने हो
1: अच्छा तो असन कोनी बुन तो काज बोल तुम के कहीं असन ऑर्डर असन दे सोत ना
0: दे सोत काय
1: दे सोत हां बोले ने कोनी बाहरी चो लोग बोल कुन कुन
0: ता बाहरी चे दे काय का वटे गेल बाबू खूब दूर आ से गटो
1: अच्छा
0: उन भाई बोले लिया रे दसरा का 10 ठान दुई पोट आदमी ली
1: अच्छा
0: ये रायपुर च फैले जो है
1: अच्छा
0: हां
1: हां बोले ने बाहरिल बोले ने
0: बाहरिल बोले सर
1: हां हां अरे सन की बिया भी होतर
0: बिया भी का जल पर गांव च लोग बोले सब सांगत जा सर
1: अच्छा बोले आगे सांगुन रे
0: आगे सांग सर
1: हां
0: दे बना दे
1: हां हां तो तुम ही होनी साहब ने फिर बनन बात दे सास बोले
0: ये पो सितकार बेरा ए वाट नहीं रहे हां
1: कहां
0: सिंधगढ़ च फोले
1: अच्छा बोले सुकमा बाटे
0: हां कोटरीपाल सिंधगढ़ च फोले
1: हां
0: सिंधगढ़ उतर जाता रहे
1: अच्छा
0: हां उन बाट बोल जान पहुंचा ना से तार घर ए उने उन कपड़ा वन नीला से
1: अच्छा
0: समाज बेरा दूर लोग तो समाज मीटिंग ने तू आल मन का घर एला दुहारार नीला
1: अच्छा
0: अरे बे बोल गेले सांगुची आते हो
1: अच्छा बोलले लोग मन ए बे बोल आगे जुगे कपड़ा मन के
0: हां
1: घेन सोत
0: बोल घेन सोत
1: तो तू चु आजकल ना कपड़ा मन के बोल कोन कोन बाट प्रदर्शनी काय काय असन ने निवास तू कोनी ता नी लिसिस
0: मोय नी नी लेस ने तो ने उने धक्का सा आबे ता रलो
1: हां हां
0: उने कपड़ा बिना बिना नु नीचे नहीं
1: अच्छा हां बोलले ने उन हाथ कर का विभाग बाटले
0: हां हां उन बाटले
1: हां हां बोले तुम स्थान बोले बुनाक बोलो नहीं
0: नहीं जी
1: अच्छा

0: तुमची पूंजीने छे?
1: आमची पूंजीने.
0: अच्छा.
1: मकिन डर लागू आहे कारण पैसा विचित्र बुडून जाऊ आहे. पाशी कहन करून गरीब लोक छुटू खोय काय आमची पूंजी नाही लटम घटम चलाता राह.
0: अच्छा. हां बोलले ना खुद पूंजी ने बनान बाते फिर विक्टर ने. तो बोलले ना देखना तुमचे घरे बोलू बेबे कितलो लोक सब जान आज बिजान बनाकलाय
1: पीला मन पर तो पीला नहीं जाना
0: असन. तो कसन मन नहीं सिखाना घरे रोलो बेरा कुछ
1: नहीं सिखत काय पर तो बात ध्यान दिला.
0: हां नहीं कोनी छुट्टी बेरा ओगरा ने
1: ना यून बाई जाने मोय जाने हम जे घरे
0: असन. तो जसन पीला मन नहीं सीख ला जाल फिर कला भूतुन जाए दे
1: उसने हो दका दे से आराम से गांव ने 25 30 जन सब कपड़ा बिनत रहो तागे.
0: अच्छा.
1: अब सब चांदला दुई जना से हम जी गोटो बेटा ले कार मोय.
0: अच्छा.
1: और सब पैसा आला.
0: अच्छा.
1: जितलो ये कपड़ा लो गैस ते बाटे कोसमी का काले बाजार ले घेनन घेनन ने उस मराठ बसा
0: हम
1: यहां ते खुद बनाओ.
0: अच्छा. बाकी मन दूसर बाटली घेनन बिक सकते. हां बोले तुम खुद बनाए
1: खुद बनाओ.
0: हां तो हालना भुरसु दादा तो इतना अच्छा तू जो बुन तो गोट के सांगले साल जुगार ना
1: जुगार
0: जुगार. सुमारी
2: आडमा
0: ये तो काय मजा रली ने भेट वार्ता
2: हो काय
0: आले ये मन संगे भेट करते रहो श्री बलबीर सिंह के अच्छा ये दादा रो भुरसु दास ने
2: हो काय
0: ये मन कपड़ा लता बना तो लोग मन रोत ने
2: हो
0: दक आम चतान मोडरा सरली ने
2: हो काय घडी वाट दकलो ने जातो वेरावल उमरली ने
0: हो
2: समय ने गेलो न आय भी ने तो समय ने गेलो ने समय नहीं उ कोई से ने
0: आले मैं मोडरा सकले से तो ये विदा मांगते वे
2: जातो पूरे बस्तर स्वर कार्यक्रम सुन तो सपा दादा दीदी सियान सजन संगजोरिया संगवारी मन के मैं सुमारी
0: और मैं अड़मा
2: आमी दोनों करू से
0: राम राम.

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बस्तर के स्वर, ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। एफएम बैंड और मोबाइल ऐप पर प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: जुहार सुमारी जुहार
1: जुहार अड़मा जुहार
0: अले हमर लुने समयाव तो के दे तो अमरुक चिपुर गए
1: ओ काय समय समया नीलन तो समयान बल जाउ खोय दे ने आमी तो बेट का ढोल हुड़मा ने
0: हां
1: दादा दीदी मन संग बल बेट गाठो होते बे
0: हां
1: तो किसानवाड़ी कार्यक्रम सुन तो सब पाए गांवकारी दादा दीदी सियान सजन बोड़ू बड़ाय और भाई बहन मन के मैं सोमारी
0: और मैं अड़मा
1: आमी दोनों करू से
0: जोहार दक सुमारी
1: हाँ
0: आमी तो जोहार बेटबल कर लू ने
1: okay.
0: और आम चो दादा दीदी मन का जे कहीं ना कहीं ज्ञान दिया चो गोड मन की धरो ने आम रोजे ने
1: okay.
0: तो आज ही बोले उसने चे आम चो लगे साग मांदी ने खाए फसल लगा लो ने कितरो फायदा हो दे उन गोट मन के सांगवा ने
1: okay.
0: दक आमी बस्तरिया लोग हाँ और आम चो बस्तर ने ज्यादातर खेती किसानी कर तो लोग मनासू
1: okay.
0: तो द काम चो बस्तर ने तो आगतले ज्यादातर बल्लो ने दाने ची कमाते रोत ने ए भी खिंडे काम चो जन किसान दादा दीदी मन खिंडे के जागरूक हो सद गुने भी साग साग सब्जी बल लगाए सो और आप लो जीवना के खिंडे के अच्छा बनाए सो
1: ने तो साग साग ने

0: अर्मा बल्ली साग साग ने साग बीतीने कितरो आमदनी हुए से ये सब के कितरो आमी आमदनी करुक सकूं ये सब साग सीत ने बल सीत तो मैं बलते रहे मचो बीती साग सब्जी ने बले कई प्रकार चो आमी साग सब्जी बल कमाक सकूं ने लहा बीती जसन हुए से तोरी लहा बीती बलन तोरी करेला बरबटी यार जुड़गा सेमी असन बीती लहा बीती बनू से ने असन बीती ने बल का समय समय अनुसार मडाल नहीं आम के आगर ले आगर आमदनी हुए से ओ
1: ये जन तो नाम दर लिस नहीं सुमारी ये जन फसल आई किंड जट की लाभ देतो भी था मतलब जट की पाकुन पाकु है ने तो आम के जो नाम चु लगे किंड कम समय आस जाले असन फसल मन के बोल दरुन बाती आम के एक दो पैसा अगर कमात रु बोले आए ने
0: ओ असन लाहा बीती मन का जाए नहीं आम के नहीं अड़मा जो कि हमी काकर बोलू से काकर छे गालो ने नहाले मांडो मांडो गाड़ू न डोरी मन लमान करी ऊपर पर लन काय हम जो साग पान बल नुकसान नहीं होए आर अच्छा नगत हो रहे दिने
1: और दकसन बलिस तो ये लहा बीती फसल के बोलूं बात ने ये ताय काय कुंद्रू बल रहे से कुंद्रू करेला उली लो लो बलोली ने कुमड़ा बले ने ऐसे ऐसा पाए ये तो कुमड़ा और लो बड़े लो की बड़े बड़े बीती साग हुए आए मानतर फिर बले खाकर लगा लू जालून बले खिंड आम की अच्छा है फायदा दे सके और ये जो फसल आई है आम की भूये बल नीलोंडे खबर चित खबर और हुआ है तो असन फसल के दर्द तो का जे लोग मन के इच के चाव आते ने
0: आटे वाले नीलो ने कसन सागा ये के काय तो असन ओली से एक कुबे दिन जो टूटाल बीती के आन लास असन टाइप च बोलो
1: पकन बात नहीं ने तो ये सफाय किंडे के जोन साग मंदी नहीं कर तो जोन फसल आए उनके किंडे के अच्छा ले उन्नत तरीका ले कर लो ने आम के आगर लाभ में रुक सके और ये चुका जी सब ले पहले यही तो आए कि उन चुका जा अच्छा बीज बल होता रहा है ने मंडा तो पूरे उन बीज अच्छा आसे कि नहीं आए उनके उपचार बल करो पड़े दे ते भी आम के उन जोन बीज लगा लो सुन अच्छा पौधा बने दे और आम के अच्छा बीती पल दे दिने
0: अच्छा पल दी अच्छा साग पान दिलो ने आम चो दे हैं पाए बले नंगत रह दे बीमारी सीमारी बल नी लगे ने नहाले नहालो पर उनका बुलवा चले साग पान ने बल कीड़ा उड़ा नी लगे ने
1: दख आमी तो ये गोट की सुरता कर आम दिले आम चो किसान दादा दीदी मन के ने आले आम चो लगे जाहला गोट मन आसोत आले ये जाहला गोट मन के बोले आम राव
0: आले ते भी
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने

0: भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: जीएसटी काउंसिल बुधवार नेट इन घोषणा की सरकार सीमेंट तपोर्रो जीएसटी मोला 28% तुन कम कीस इंजे 18% कीस इत्ता टैक्स तगा कमी कित्ता आवासीय आड़ व्यवसायिक प्रोजेक्ट तगा लागत दबाव कम आयना उम्मीद मिंदे ई लेकिन संगमरमर इंदनद और ट्रेवकिन ट्रेवटीन ब्लॉक इतके ओंडलेकटा बंडकल तगवेन टैक्स दर 12% से गटे मास 5% की सित्तोड़ ग्रेनाइट ब्लॉक तगवेन मुन्ने 12% मत्ता आदिंजे 5% जीएसटी लगे माता इदेन संगेन उसका चुन्नामता ईटा और बंडाकल तीन जोड़ाई की अनबूता तेवेन मोला 12% से कम मास 5% की सित्तोड़।
2: सोमारी
3: हाँ
2: ये झाला गुड मन की तो अमरालू ने
3: हो काय
2: आले आमचे मोडरा ने भेट वार्ता बोले आसे ने
3: हो
2: ताले ये भेट वार्ता नी कोन कोन आसत सांगुन दक
3: ओ भेट वार्ता है गिनी हाउस के बारे में आसे और ए डॉक्टर इतेश कुमार मिश्रा वैज्ञानिका और ए मन संग भेट कर सोत वेट करता चंद्रेशी ठाकुर ये गिनी हाउस कसन बीती आए जाए अड़मा एक बोले दादा दीदी मन लगम रहूं आल आ आमी बोले जानवा
2: आओ आले तेबे ये भेट वार्ता के बोले हमरा
3: आले तेबे।
4: किसान वाणी सुनने वाले आप सभी श्रोता भाई बहनों को चंद्र ऋषि ठाकुर का नमस्कार। श्रोताओं आज किसान वाणी में हम आपको जानकारी देने वाले हैं गिनी फाउल यानी चाइनीज मुर्गियों के पालन व प्रबंधन के बारे में। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हितेश मिश्रा। आप कृषि विज्ञान केंद्र कोंडा गांव में विशेषज्ञ हैं पशुपालन प्रबंधन में। तो सबसे पहले डॉक्टर हितेश मिश्रा जी आपका स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में।
5: बहुत बहुत धन्यवाद।
4: जैसे कि आज का विषय थोड़ा अलग है गिनी फाउल जिसे हम चाइनीज मुर्गी भी कहते हैं, तो आखिर आप सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बता दें कि ये गिनी फाउल क्या है।
5: मैं अपने किसान भाइयों को सबसे पहले बताना चाहता हूं कि गिनी फाउल एक जो विदेशी नस्ल की जो पक्षी है और ये गिनी जो द्वीप है अफ्रीका वहां से आई हुई है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि भारत में हर क्षेत्र में इसकी अनुकूलता है। इसे आप ठंडे में गर्मी में कहीं भी पाल सकते हैं और आमतौर पर इसको हम लोग तीतर के नाम से लोकल नाम से जानते हैं और लोग चाइनीज मुर्गी भी इसे कहते हैं चकोर कहते हैं। और ये जिसकी जो मांस है बड़ी स्वादिष्ट है कम वसा, इसके कारण इसकी जो अभी प्रसिद्धि है नाम है इसके कारण है।
4: इसे चाइनीज मुर्गी क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि ये अफ्रीका के गिनी द्वीप से आए हुए है, तो इसे चाइनीज मुर्गी क्यों कहते हैं?
5: बस इसका कुछ लुक ही ऐसा है कि छोटा सा नाक होता है, छोटी सी मुर्गी है और बढ़िया काले में सफेद डॉट डॉट इसके रंग होते हैं। तो हो सकता है ओरिजिन तो इसका अफ्रीका है, लेकिन ये चाइना के माध्यम से, चूंकि मैंने बताया इसकी सर्व अनुकूलता है सर्वग्राही है, तो चाइना में इसे ज्यादा पालन करते हैं, वहां के माध्यम से या भारत में आया हो।
4: जी जी, तो आखिर ये गिनी फाउल जो है वो किसानों के लिए किस तरह से फायदेमंद है इसका पालन करना?
5: जैसे कि हम देखते हैं, हम कोई भी सलाह किसानों को देते हैं कि आप इस चीज़ का पालन करिए, इस चीज़ की खेती करिए, लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि किसान असफल हो जाते हैं। इसलिए सफल होते हैं या तो उस चीज़ की अनुकूलता हमारे क्षेत्र में नहीं होती, या तो इसलिए असफल होते हैं कि उसकी लागत ज़्यादा होती है, या तो असफलता का कारण एक यह भी रहता है कि उसके पालन में या खेती में बहुत ही दिक्कत का या ज्यादा तकनीक का उपयोग होता है। और यह सारी चीजें गिनी फाउल के लिए साबित नहीं होती है। किसान कम लागत में कम या बीमार कम होती है तो दवा कम लगता है, किसी विशेषज्ञता के लिए इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि यह बीमार कम पड़ती है और सामान्यतः यदि इसको चराई के माध्यम से आप पालते हैं तो ये कीड़े मकोड़े खा के भी जीवित रह सकते हैं। तो

0: मुझको ऐसा लगता है कि मेरे बस्तर के किसान भाइयों के लिए जो चाहते हैं कि मुझे बस ऐसे ही एक साइड बिजनेस के रूप में अतिरिक्त आय का एक साधन मिल जाए, तो मुझको लगता है कि किसान भाइयों के लिए गिनी फाउल का पालन फायदेमंद हो सकता है।
1: तो इनके प्रबंधन के लिए ज्यादा, जैसे हम मुर्गियों का, ब्रॉयलर मुर्गी का अगर पालन करते हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर हमें पोल्ट्री फार्म चाहिए होता है। पोल्ट्री फार्म भी हमें बहुत सारी चीज़ें, एक एसी वाला होता है, नॉन एसी होता है, टेम्परेचर उनका मेंटेन करना पड़ता है, फिर उसके बाद उनका खाने पीने का भी अलग रहता है। तो क्या इस तरह का प्रबंधन गिनी फाउल के लिए लगता है या नहीं लगता, या फिर इन्हें जो खुले वातावरण में भी इनका पालन किया जा सकता है?
0: देखिए, रही बात सेड की, एक बात आपने आवास की बात की कि मुर्गियों की तुलना में क्या इनको इस तरीके का खान पान और आवास की आवश्यकता की होती है। जहाँ तक आवास के बारे में बातचीत है तो निसंदेह इनको सुरक्षा की दृष्टि से आवास की आवश्यकता होती है, लेकिन आप यदि मुर्गियों से तुलना करते हैं तो जी मैं बताऊंगा कि इनको खान पान की दृष्टि से और रहने की दृष्टि से उतनी सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये कम पोषक वाले खाने से भी अपना गुजारा कर सकते हैं और रहने के लिए भी एक मुर्गी को 3 से 4 फीट की आवश्यकता होती है, चूंकि इनका जो स्वभाव होता है मुर्गियों की तुलना में उड़ने वाला होता है। एक मुर्गी लगभग 400 से 500 मीटर उड़ सकती है, तो इसलिए और इनको आवास स्पेशली मतलब मुख्यतः रात्रिकालीन इनको आवास की आवश्यकता नितांत है।
1: जी, ये भी उड़ते हैं?
0: जी मैम, उड़ते हैं, 400 मीटर एक फ्लाइट में उड़ सकते हैं। लेकिन यदि किसान भाई बड़े मुर्गी खरीद के ला रहे हैं तो बिल्कुल भी आपको बाहर रखना नहीं है, आपको उनको पिंजरे में रखना है या एक बंद कमरे में रखना है। और यदि एक से ज़्यादा मुर्गी लाए तो पहले एक मुर्गी गिनी फाउल को बाहर आप निकालेंगे कुछ दिन, और उसके बाद दूसरा, और उसके बाद तीसरा, फिर धीरे धीरे आप सारी मुर्गियों को बाहर निकाल सकते हैं। पहले उनको अपने को दाना चराई का आदत डलाना पड़ेगा, नहीं तो वो तोड़ जाएंगे। ये पेड़ों में रहना बहुत पसंद करते हैं, इनका नेचर है अर्ध जंगली प्रकार का। इनका मांस का स्वाद भी यदि आप पूछेंगे किसी से तो बोलेंगे अजीक अजीक जंगली लागे से मके।
1: जी जी जी। तो इनका औसतन साइज क्या होता है ये मुर्गियों की?
0: ये जो वयस्क जो मुर्गियां रहती है ये लगभग 1 किलो 200 ग्राम से लेके 1 किलो 500 ग्राम तक का 5 महीने में आराम से ये आ जाती है।
1: और जैसे हम लोग अभी तुलना करें तो ब्रॉयलर का जो दाम है वो अभी 200 रुपए किलो के करीब चल रहा है, इसकी क्या मार्केट में प्राइस होगी?
0: मैं बता दूंगा, बस्तर के लिए गिनी फाउल पालन नया है, इसका कोई जो मार्केट अभी फिक्स नहीं है। और अच्छी बात हमारे लिए ये होगी कि हमारा इसमें कोई प्रतिस्पर्धा भी मार्केट में नहीं है। अभी मैं देखता हूँ रोड के बाजू में आंध्र प्रदेश से इसके व्यापारी आते हैं और एक एक मुर्गी को 1,000 से लेकर 1,500 रुपये की कीमत में बेच के जाते हैं। यदि हम अपने यहाँ पालन करें तो आसानी से एक जो वयस्क मुर्गी है वो 800 से 1000 रुपए में बिक ही जाएगी।
1: जी, तो जब हम गिनी फाउल का पालन करते हैं तो ऐसी कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी चाहिए?
0: देखिए, गिनी फाउल के पालन में सावधानियां, हम तुलना कर रहे हैं मुर्गी से तो मैं तो बोलूंगा कि न के बराबर है इनको, लेकिन जहां हम पालते हैं तो जो इनका सेड है ये ऊंचा होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया ये उड़ती है, तो एक पहली बात आप सेड ऊंचा रख लीजिए, और दूसरा कि इनको आसपास में पेड़ यदि लगा के आप देते हैं, और यदि आपके घर में मतलब इनको आदत हो गया अपने को तो ये पेड़ में भी रात को सो सकती है। तो और हाँ, एक चीज खास मैं बता दूं आपको कि जब हम गिनी फाउल का पालन कर रहे हैं और हम यदि चराई विधि में इसको रखना चाहते हैं, ग्रेजिंग करवाना चाहते हैं, तो आसपास के खेतों में हमको थोड़ा देखना पड़ेगा कि भाई किसी को बाहर आजू बाजू में समस्या ना हो,
1: उनकी फसलें ना हो,
0: उनके फसलें ना हो। ये फसलों को नुकसान वैसे कम पहुंचाते हैं, उसमें फसलों में जो कीड़े मकोड़े हैं उनको खाते हैं, लेकिन कोई यदि सब्जियां उगाए हैं कुछ है जो इनका फेवरेट है तो खा सकते हैं।
1: जी, और बीमारी की अगर बात करें तो ये कितने बीमार होते हैं?
0: जी हाँ, जो सबसे जो मुख्य कारण है कि हमें लगता है कि इसे बस्तर में होना चाहिए गिनी फाउल का पालन, वो इसकी जो एक खासियत तमता इनमें काफी ज्यादा होती है, और इनमें बीमारी न के बराबर लगती है। लेकिन हाँ, मैं किसान भाइयों को एक सुझाव जरूर दूंगा कि आप इसमें टीकाकरण जो मुर्गियों में लगता है वो करिए, क्योंकि सामान्यता देखा गया है कि पक्षियों में यदि कोई बीमारी आता है तो उसका इलाज नहीं होता है, बचाव ही जो सही रास्ता होता है एक सफल व्यवसाय के लिए। तो पक्षी पालन में, किसी भी प्रकार के मुर्गी पालन में, हमको टीकाकरण तो जरूर ही लगाना चाहिए। तो बीमारी इसमें बहुत कम रहता है, मैं किसान भाइयों को बताऊंगा बीमारी, और न इनमें दवाओं का खर्चा भी बहुत कम आता है इसलिए
1: जी। और इनके अंडे का उत्पादन किस तरह से होता है और प्रजनन कैसे होता है, आप ये बताएं।
0: प्रजनन के लिए सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि हर 4 से 5 मुर्गियों के पीछे में एक नर इनका होना चाहिए, और ये वयस्क हो जाते हैं 5 महीने में हो जाते हैं और 6वें महीने से अंडा देना चालू कर देते हैं। साल भर में देखा जाए तो यह 90 से 120 अंडा दे पाते हैं, और मुर्गियों में जो अंडे में बैठने का जो इनका जो क्षमता होता है या प्रवृत्ति होती है वो पाई जाती है। लगभग लगातार 20 से 25 अंडे देने के बाद ये अपने अंडे में बैठती है, और अंडे से जो फूट कर बच्चा बाहर आता है इसकी अवधि 26 से 28 दिन की होती है। और मैं एक चीज बता दूंगा कि भाई बच्चा सभी का नाजुक होता है, इनका भी नाजुक होता है, चूंकि इनका अंडे का साइज भी कम होता है। तो किसान भाइयों को यदि सफल व्यवसाय करना है तो इनके बच्चों का जो देखभाल है वो बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा, जैसे मुर्गियों में करते हैं। एक ब्रूडर गार्ड बना के उसमें ऊपर से हमें गर्मी देना पड़ेगा लाइट से, और इनका जो खान पान है, जो प्री स्टार्टर फीड आता है जो मुर्गियों में आता है, वो मात्र मैं आपको सुझाव देता हूँ कि 15 दिन के लिए चलाइए। उसके बाद आप अपने घर में जो भी पिसान है, आपका मक्का है या कनकी है या जो भी घर पे जूठा उठा है, इसमें आराम से किसान भाई इसको पाल सकते हैं
1: जी। ज़्यादातर हम बाज़ार में देखते हैं तो जो मुर्गियाँ उपलब्ध होती हैं बॉयलर या फिर देसी किस्म की, वही मुर्गियाँ उपलब्ध होती हैं, तो इनको किसान भाई कहाँ बेच सकते हैं, इनसे कैसे व्यवसाय कर सकते हैं?
0: देखिए जो आज का जो युग है ये फिटनेस का युग है, हर कोई अब देखिए पुराने में हम मिलेट्स में चले गए, कोदो कुटकी रागी में चले गए हैं अपने अच्छे फिटनेस के लिए। तो जी हाँ, जिनको मांस पसंद है उनको ये भी चाहिए कि उनके मांस में जो खा रहे हैं उसमें कम फैट हो, कम कोलेस्ट्रॉल हो, और अतिरिक्त ऐसी चीज हो जो उनके फिटनेस को कायम रखे। सारा जो गुण है गिनी फाउल के मांस में है। इनके मांस में मैं बता दूं ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया जाता है जो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो यदि बाजार में इनको प्रतिस्पर्धा की बात करेंगे तो अभी तो कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है क्योंकि बहुत ही कम किसान पालते हैं। यदि किसान भाई पालेंगे तो बिल्कुल अभी तो बाजार में हाथों हाथ बिक जाता है
1: जी जी। तो वैसे इसका शुरुआत करने के लिए, इसका पालन करने के लिए लागत कितनी लग सकती है हमारे किसान भाई बहनों को?
0: लागत के लिए मैं सबसे पहले तो किसान भाइयों को बताऊंगा कि आप पहले छोटे समूह में लाके इसको आप चालू करिए। ऐसा नहीं कि आप 1,500 ला रहे हैं, आप 50 से लेके 100 पक्षियां खरीद के पहले आप चालू करिए। और जैसे एक मुर्गी को बड़ा करने में, गिनी फाउल को व्यस्क करने में लगभग 200 रुपए का खर्च आ जाता है, 200 से सवा 200 रुपए का खर्च आता है। यदि किसान भाई पूरा चराई में इसको रखते हैं तो यह खर्च और भी कम आता है, और बड़ी ही आसानी से एक व्यस्क मुर्गी 600 से 800 रुपए की बिना मेहनत के बाजार में बिक जाती है। तो किसान भाई एक मुर्गी से 500 से 600 रुपए कमा सकते हैं
1: जी जी। तो मतलब बहुत ही कम लागत से इस
0: जी शुरुआत उत्तर भारत में, यदि आप उत्तर भारत में देखेंगे तो किसान वहां खेतों में इसको जो प्लास्टिक के तंबू में बना के हजार हजार मुर्गियां पालते हैं, और एक किसान उसको लगातार चराता रहता है, और हाँ वो अपने घर का बना हुआ राशन तो जरूर देते हैं लेकिन इसमें उनकी जो खर्च है वो आधे से भी कम आती है। फायदा तो दिखता है यदि किसान करेंगे तो
1: जी, जी जी। और छत्तीसगढ़ में बस्तर की बात हमने की है तो क्या इसको छत्तीसगढ़ के अन्य जगहों पर भी इसका पालन किया जा सकता है?
0: जी हाँ, मतलब ये जो गिनी फाउल है इसकी जो सर्वग्राहिता इसी बात से ही है कि ये हर प्रकार के मौसम में अनुकूल है। बस इसमें मैं एक नकारात्मक बात जो किसान भाइयों को जरूर आपको मैं प्रकाश डालना चाहूंगा कि इनका जो उड़ने वाला नेचर है, जो मैंने बताया ना अर्ध जंगली प्रवृत्ति के होते हैं, तो उसके लिए हमको इनको धीरे धीरे, अब आपको तो पता है कोई भी चीज जब पालतू बन जाता है तो कहीं नहीं जाता है। तो यदि बचपन से पाल रहे हैं तो इस चीज का आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई बड़ा ला रहा है पक्षी तो आपको इस विषय में जरूर जागरूक रहना पड़ेगा
1: जी। तो इसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं या कहे चूजे, मुर्गियों के चूजे होते हैं, इनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें भी शायद चूजे ही

0: देखते हैं
1: जी जी। हाँ, कीट, तो, कीट नाम है वैसे इनका,
0: कीट नाम है, कीट तो ये कहाँ से हमारे किसान भाई बहनों को मिल सकते हैं?
1: किसान को आसपास के कृषि विज्ञान केंद्र में पता करना चाहिए, और अभी यह भुवनेश्वर में जो इनका सेंटर है, रिसर्च पक्षियों का सेंटर है, वहाँ उपलब्ध है, और आंध्रा में लोकल वेंडर्स, लोकल जो विक्रेता है वो रोड के किराने लाके बेचते हैं।
0: और इनका उपयोग सिर्फ मांस के लिए ही किया जाता है?
1: मांस के लिए किया जाता है
0: जी जी। तो आपने तो गिनी फाउल के पालन व प्रबंधन के लिए बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन फिर भी कोई बात रह गई हो या फिर आप हमारे श्रोताओं से कुछ कहना चाहते हो तो कहें।
1: मैं श्रोताओं को बोलना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ में, जो बस्तर में देखो तो छोटे और सीमांत किसान ज़्यादा है, जिनके पास जमीन कम रहती है और वर्ष में बहुत ही कम समय में खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन जो आय की चाहत होती है उनके अंदर में वो ज़्यादा होती है। कि हर किसान के मन में रहता है कि भाई मैं ज़्यादा पैसा कमाऊँ, तो ऐसे किसानों के लिए खुले खेत या बाड़ी यदि आपके पास में है तो मैं ज़रूर उनको आपको सुझाव देना चाहूँगा, आपकी गिनी फाउल का पालन करें। और वर्तमान में जो सरकार है प्राकृतिक खेती, जैविक खेती के लिए बड़ा ही संवेदनशील है, तो मैं बोलूंगा कि ये देख जो गिनी फाउल पालन है वो प्राकृतिक खेती का एक इष्ट मित्र साबित होगा। और ये बता दूं, एक चौकीदार के रूप में भी आप इस पक्षी को रख सकते हैं। बड़ा ही रोचक तथ्य है कि ये जब कुछ अनजान चीजों को, अनजान आदमियों को, सांप को, चोर को देखता है तो ये आवाज करने लगता है, तो इससे आपकी जो खेतों की प्रहरी के रूप में भी यह साबित हो सकती है। दिल के मरीजों के लिए बहुत बेहतर है इसका मांस, डायबिटीज के जो रोगी हैं उनके लिए उपयुक्त है, और बच्चे और बुजुर्गों के लिए बड़ा ही इसका मांस पौष्टिक है, चूंकि ये आसान से पचने वाला रहता है, बाजार में जोखिम कम है। और मैं बोलूं जहां सामान्य मुर्गी रोजमर्रा के भोजन के लिए है, वही यह गिनी फाउल स्वास्थ्य वर्धक स्वाद के लिए है, तो किसान भाई कम खर्च और ज्यादा दाम देने वाला विकल्प के रूप में गिनी फाउल को ही अपनाएं, यही मेरी उनसे आग्रह है
0: जी। तो डॉक्टर हितेश मिश्रा जी, आपने गिनी फाउल पालन के बारे में और उनके प्रबंधन के बारे में हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी बातें बताएं, इसके लिए आपका धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।
2: सोमारी
3: हाँ,
2: ये तो खाए मजा भेंट वार्ता रहे ने गिनी हाउस के बारे में। हम जो किसान दादा दीदी मन सुन ला भी और ये जो बारे में खिड़ी चिंता काई गोट सोच सतोती हो काम केवल पता नहीं रहे कि गिनी हाउस काय हुआ बोलो ने
3: काय सुंदरी डॉक्टर इतेश कुमार मिश्रा ने सांगला ने गिनी हाउस के बारे में।
2: आओ
3: तो मैं बोलते रहे अड़मा, ये तो भेंट वार्ता होली, मैं मछलक बोलते रहे गोटो गीत सुनुक लाए बात रहे बोलते रहे।
2: हाँ देख तुझे तू नाचुक नाचुक बास ने
3: हो
2: तो आले
3: गीत मन आले गीत के सुनुता गीत कुरिया मंच ना के पाचे सांगवा तेरे
2: आले तेरे गीत के पहले अमराउने

0: येड मा
1: हो
0: ए काय सुंदर ए गीत रेली काय बलतरी जाले मच पाए काय तो नहीं होते रहने ए गीत क्रिया मंच नाव के चिता डिस्कशन
1: चिता ले का सोमारी ए मन रोत योगेश्वर पुजारी और अर मंच संगवारी मन ने दक तू तू चो वाडले सुना लिस आले मुझे मोटरा ने बोले गोटो गीता से आले ये गीत की बोला हम रांधे होता बोले इसमें
0: आले तेबे हम रांधे तेबे
1: हाँ

0: एयरमा का सुन्दर गीत रिने
1: गीत कुरियो उनको चितालीको
0: चितालीका
1: कुन गौरव तो
0: मेघनाथ मेघनाथ मेघनाथ पटनायक अरुण मंचो संगवारी में
1: खाए मजा ये गीत रहे ने आज कल वर्षा पानी बोले उसने वर्षे से कौन सा लगे
0: आज जाले का सुंदर गीत रेली आजकल बद्री बल दे डराए से तो अड़मा घड़ी बार दखलो ने जा तो समय बल अमोली ने समय आन गेलो ने समय में युग बल हो से कसन
1: आओ
0: तो मैं मोटर गड रख सक लेंदे आल तो विदा मांगते बे
1: आ लेते बे जा तो पूरे किसान वाणी कार्यक्रम सुन तो सफाई के तिहार दादा दीदी मन की मैं अड़मा
0: मैं सोमारी
1: हमी दुन करूं से जोहा।

प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी अभी प्रसारित किया जा रहा था। एफएम बैंड और मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी जगदलपुर से बोल रहे हैं। रात के 8 बजे हैं। मीडियम वेव पर जारी है महिला T20 क्रिकेट मैच 2026 का आंखों देखा हाल, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे हैं। एफएम बैंड और मोबाइल ऐप पर प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम डांडा माली। इसमें आप सुनेंगे चबरू राम बघेल और साथियों का गाया ये ध्रुवी लोकगीत।

0: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से लोक गीतों के कार्यक्रम डांडा बाली में आप सुन रहे हैं। चबरूराम बघेल और साथियों का गाया ध्रुवी गीत। इस गीत का अगला भाग हम पेश करेंगे इस संदेश के बाद।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: लीजिए अब सुनिए चबरूराम बघेल और साथियों का गाया ध्रुवी गीत का ये शेष भाग।

0: लोकगीतों के कार्यक्रम डांडाबाली में अभी आपने सुना ध्रुवी गीत, गायक कलाकार थे चमरू राम बघेल और साथी। एफएम बैंड और मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारा बस्तर। इसके अंतर्गत हम सुनवा रहे हैं सुखराम बघेल से ली गई भेंट वार्ता। विषय है बस्तर की धुरवा जनजाति। भेंट करता है नारायण सिंह बघेल।
1: हमारा बस्तर कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं श्री सुखराम बघेल से। सुखराम बघेल जी, आपका स्वागत है। आप धुरवा समाज से संबंध रखते हैं और दरभा, तोकापाल, ये जो एरिया है वहाँ पे ज़्यादातर धुरवा लोग रहते हैं और उनकी जो संस्कृति है वो अनोखी है, अनूठी है। गीत संगीत सभी कुछ एक अलग तरह का है। उनकी जो आपकी जो बोली है वो भी अनूठी है
2: जी।
1: और इन्हीं सब बातों की जानकारी हम हमारे श्रोताओं के लिए चाहेंगे। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि दरभा और तोकापाल, इसके अलावा भी और कौन कौन से क्षेत्र में धुरवा लोग निवास करते हैं?
2: ये अपना धुरवा लोग तो अपना बस्तर, जगदलपुर बस्तर में मेन स्थान नेतानार, चितापुर, चिंदावाड़ा और इधर दरभा, कुकानार, सुकमा, इस क्षेत्र में अधिकतर धुरवा लोग निवास करते हैं।
1: धुरवा लोग निवास करते हैं
2: जी। और धुरवा बोली बोलते हैं।
1: धुरवा बोली
2: जी। मैं तो धुरवा बोली बोलता हूँ। मैं लोकल आदमी हूँ, गांव में रहने वाला हूँ और मैं गोंडी, अलबी, दुरुई, बत्री और हिंदी बोलता हूँ। हिंदी तो सभी को बोलने का है, टूटे फूटे भी इस तरह होता
1: आप अपनी जो बोली है धुरवे के अलावा आप हल्दी बोलते हैं, भतरी बोलते हैं, गोंडी भी आप जानते हैं
2: जी,
1: हिंदी तो जानते ही हैं
2: जी।
1: तो चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी बोली के अलावा बहुत सारी जो बस्तर की बोलियां हैं और हिंदी भाषा है ये भी आप जानते हैं। जो पर्व त्योहार हैं आपके यहाँ क्या क्या होते हैं?
2: पर्व त्योहार में हमारे यहाँ हमारे दुर्वा समाज में जो आम खाते हैं उत्तर समाज बीज बुआई करते हैं उस समय मांडकुल पाटा बोलते हैं उसको, और एक पर्व त्योहार में उसी में गाते हैं।
1: अच्छा जी, गीत गाते हैं
2: जी।

0: उस समय का मांडकुल पाटा बोलते हैं,
1: मांडकुल पाटा
0: जी, और शादी गीत। उसके बाद दिवाली में गीत नहीं होता है, लेकिन ढोल का जो सुरंग है वो गीत के माध्यम से ही आवाज देता है।
1: अच्छा।
0: जैसे कि ढोल बजता है तो अपना दुर्वी बोली में अभी बजाए, मतलब ढोल बजाने से गुंडा दूर का स्पष्ट पता चलता है, और जो दुर्वी समझता है ना उसको जो उसका बोल और जो आवाज स्पष्ट पता चलता है। जैसे कि हारमोनियम बजाता है तो फूलों सा तेरा, मतलब नीचे फूलों की दुकान ऊपर गोरियों के मकान, जो हारमोनियम केसियो में बजता है ना उसी प्रकार अपना ढोल में बजने से स्पष्ट मालूम होता है।
1: मालूम होता है, लेकिन उसकी जानकारी चाहिए, जो ध्रुवी समझने वाला है वो समझ जाएगा कि कौन सा जो पाड़ है
0: जी,
1: कौन सा धुन है वो बज रहा है।
0: जी जी, इस प्रकार है।
1: अच्छा, जो वाद्य बजते हैं ध्रुवा लोग जो वाद्य बजाते हैं, कौन कौन से वाद्य होते हैं उसमें?
0: ध्रुवा बजा में तो अपना बांसुरी है, ढोल है, किरकिचा है, घुंगरू है, तलवार है, और उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। जी,
1: ढोल जैसा होता है वो अलग तरह का होता है, या फिर जैसा बाजा मोहरी बजाते हैं लोग तो उसी जैसा होता है, क्या अलग होता है?
0: ढोल जो अपना ध्रुवा लोक का ढोल ना, जो सीना या बीजा या सरगी जाड़ से बनता है।
1: अच्छा।
0: जो जाड़ को, किसी भी जाड़ को नहीं बनाने का है, वो जाड़ को ना उस हिसाब से कासन के रंग से हिसाब से उसको निर्मित करते हैं।
1: अच्छा।
0: कारी कासन, पंडरी कासन ऐसा उसके हिसाब से बनाते हैं। और ढोल को मंगिया लोग बनाने का है, एक तरफ बैल का काल से बनता बना होता है, और एक मतलब एक तरफ बकरी का काल से।
1: अच्छा। जो दोनों
0: जी
1: दोनों अलग अलग खाल
0: अलग अलग जी, एक तरफ 5-6 इंच से लंबा बांस का डंडा से बजाते हैं जो बैल का काल रहता है उधर, और एक साइड केवल उंगली से हाथ से बजाते हैं,
1: से बजाते हैं।
0: जी, और ढोल बनाने का भी एक किसी भी जाड़ को बनाने का नहीं है, और काल को भी किसी भी मतलब बैल का काल या वो बकरी का काल से बनाने का वो भी नहीं है। वो पहले किसी अनसजन लोग मतलब प्राकृतिक देवी देवता की मान्यता अनुसार जो जंगल में जिस जाड़ को बालू जो वार करता है अपने अंगुलियों से,
1: अच्छा,
0: जाड़ को बीजा जाड़ हो या सरगी जाड़, कोई भी जो वार किया रहता है,
1: अच्छा,
0: उसका उस जाड़ को काट के उसके शुभ अवसर दिनांक के अनुसार उसको काटते हैं, और जंगल से जो जिस बकरी या बैल को काल हमला करता है, भालू या शेर कोई भी जंगली जानवर, तो उस काल को उसको उसमें चाहते हैं।
1: अच्छा।
0: उस हिसाब मतलब उसका बाघ ध्रुवा लोक का बाघ का वीर है, इसीलिए उस हिसाब से उसको वो निर्मित करते हैं। उसको मंगिया लोग भी बनाते हैं, नहीं तो अपना ध्रुवा लोग भी हम खुद बनाते हैं, हम
1: खुद भी बनाते हैं
0: जी।
1: तो एक विशेष प्रकार की लकड़ी होती है
0: जी,
1: जिसपे भालू के निशान होते, नाखून के निशान होते हैं
0: जी, जो जाड़ कमला के रहता है उसको काटकर बनाते हैं,
1: उसी झाड़ से ये बनता है
0: जी।
1: तो ये वाद्य यंत्रों की, ये तो ढोल की बात हुई
0: जी,
1: इन वाद्य यंत्रों की पूजा भी होती है?
0: हाँ, इन वाद्य यंत्रों की पूजा जैसे कि अपना जो हम दिवाली हुआ शादी हुआ उन अवसर पर उस हिसाब की देवी देवता को हम गांव में मानते हैं, जैसे कि किस डिपार्ट का आदमी है, किस डिपार्ट का देवता है उस हिसाब से हम मानते हैं। और पूजा पर जैसे शादी के दिन उन वाद्य यंत्रों को हम लोग जो निकालते हैं, और जो जितने भी वाद्य यंत्र हैं हमको अच्छा से ज्ञान मिले, आगे तक इसको बजाने का मौका मिले, आगे तक इसको सीखने का मौका मिले, इस प्रकार वंदना कर उसका पूजा करते हैं, मतलब त्योहार के अवसर में ऐसा होता है।
1: और जैसा कि आपने बताया कि ढोल जो होता है वो उसमें ये कासन होते हैं अलग अलग
0: जी,
1: तो ये कासन क्या होता है?
0: कासन जैसे कि चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए वो चुनाव विभाग में होता है जो चीन आवंटित होता है, 7-8 रंग जितने भी, उसी प्रकार इसमें अपना कासन में भी उसका रंग मनोनीत किया गया है।
1: अच्छा।
0: 7 रंग ऐसा, कारी कासन, पंडरी कासन, लाल कासन, हरा कासन, नीला कासन, उस हिसाब से काचन को उसी हिसाब काला बैल का, काला बकरी का उसका काल को उसमें निर्मित करते हैं ढोल को, और उस हिसाब से उसको पूजा करते हैं। और उस ढोल का पार्टी वाला आदमी, जिस कासन का पार्टी है उसी पार्टी का आदमी जो दाहिनी गाल में जंगल में जो नोदल जाड़ का, जो जाड़ का पत्ती का चाक चौकने वाला मिलता है, जो प्राकृतिक रंग से निर्मित जो भी रंग प्राकृतिक का उसके दाएं और बाएं गाल में टीका लगाकर नाचते हैं, तो लोग का अनुभव होता है कि यह आदमी इस कासन का आदमी
1: है
0: ऐसा।
1: अगर लाल
0: तो लाल कासन,
1: हाँ,
0: का
1: उसके गाल में अगर लाल निशान है तो वो लाल कासन
0: जी,
1: अगर काला निशान है तो
0: कारी कासन,
1: कारी कासन।

0: निशान है तो पंडरीकासन, और उसी हिसाब से उसको पूजा किया जाता है,
1: पूजन करते हैं
0: जी।
1: अच्छा, ये इन वाद्यों को बजाने का जो समय है, ये तो शादी ब्याह में भी बजाते ही हैं
0: जी,
1: क्या मेले मड़ई में भी इसको बजाते हैं
0: जी? इसका जो अभी जो बताया इस ये बात तो मंडी में अधिकतर होता है, गांव में निशाना लगाने का, और ये मेले की बात अभी हुई, जैसे कि वो मेले में ये होता है, क्योंकि मेला में सभी क्षेत्र से सभी गांव से लोग रहते हैं, उसमें पहचान के लगाते हैं। ये दिवाली में और शादी में ये टीका इसका वो नहीं होता, इसका मतलब चांद भी नहीं आता है। अच्छा, दिवाली का बात बताया।
1: ये देवी देवताओं के जो पूजा पाठ होते हैं उनमें बजाए जाते हैं
0: जी जी जी।
1: और जैसे मेला हुआ, मड़ई हुआ, इसमें भी हम देवी देवताओं को आमंत्रित करते हैं अलग अलग गांव के, और उनकी पूजा होती है
0: जी।
1: और उसके बाद मेला मड़ई का आयोजन होता है, तो जो गीत गाए जाते हैं या फिर जो नृत्य होते हैं उनके भी अलग अलग नाम हैं
0: जी। जैसे कि गांव-गांव से मतलब एक मुख्य गांव, जिस गांव को मतलब वहां का मुखिया मानते हैं, पहले जो पूर्वजों से जो मनोनीत किए रहते हैं, जो बड़े बड़े गांव को कहीं घर में या देश में किसी एक आदमी को तो मुखिया मानना पड़ेगा ही, उस प्रकार वहां जो जिस गांव का देवी हो या आदमी हो, नहीं सरकारी आदमी कोई भी जो मुखिया मानते हैं, उस हिसाब से उसमें एकत्रित होकर मेला मंडी होता है, तो उसमें उसमें वहाँ का सभी को पद अधिकार रहता है कि एक कौन डिपार्ट का आदमी है, किस आदमी है, उसको उस हिसाब से उसको मनोनीत करते हैं। जैसे कि नांगल सरिया हुआ, कोटम सरिया, काकरवाड़िया, गुंडा दुर्वा, हमारे दुर्वा लोगों का कई मतलब उसका अलग अलग पॉइंट है, मतलब उसका तना मतलब
1: शाखा है,
0: शाखा
1: है, अलग अलग भाग है
0: जी, अलग अलग भाग है, कोई गिनती नहीं है, लेकिन इसका इतना विस्तार नहीं हुआ है, लेकिन बहुत वो शाखाएं हैं इसका, इसको बताने से मेरे को उतना अनुभव नहीं, लेकिन
1: जो मतलब पुराने लोग हैं,
0: हाँ, पुराने लोग उन लोग बता पाएंगे, लेकिन कोई गिनती नहीं है, बोल रहा हूँ इसमें जलिया दूर, कोटका दूर, काकरवाड़िया, नांगल सरिया, इस प्रकार कई शाखा है,
1: कई शाखा है
0: जी इसमें, तो उस हिसाब से भी बचता है, उस हिसाब से भी उनको जो उसमें भंडारी माता हुआ उसमें वो सीट मिलता है बोलने के लिए, सब उसमें कारोबार करने के लिए ऐसा होता है।
1: अच्छा, देवी देवता कौन कौन से धुरवा लोग पूछते हैं?
0: देवी देवता में तो जो देवी देवता वही है जो सभी लोग मानते हैं, लेकिन दुर्वा गीत और बाजा में ना उसको अलग से बाजा बजता है तो उसका अलग लगता है कि क्या बोलता है। जैसे कि हम माता पाड़ बजाएंगे, चल बंजारीन माता पाड़ बजा, सांडीन माता हुआ, या तो फिर भंडारीन माता हुआ, तो स्पष्ट पता चलेगा कि ये भंडारीन माता है, ये भंडारीन माता, स्पष्ट पता चलेगा
1: बाजा बजने से,
0: स्पष्ट पता चलेगा। जैसे कि हारमोनियम वो हिंदी में होगा समझ नहीं होता स्पष्ट, उसी प्रकार दुर्वा से जो बजता है ना स्पष्ट पता चलेगा,
1: वाद से ही पता चलता है कि ये किस माता का पाड़ बजाया जा रहा है,
0: किस आदमी का पाड़ बज रहा है, वो स्पष्ट पता चलता है, जो दुर्वा जो समझता है बोलता है वही समझता है।

0: जी ध्रुव जी तो मैं गाता हूँ सर और सुना सकता हूँ
1: एक थोड़ा सा हमारे श्रोताओं के लिए
0: जी। या ढोका तेला में दी तीन दिन पर का तेला में दी तीन दिन या गो रोजे दीना वेराना बे रोजे दीना वेराना बे या गो दुख बेले मान मर बे रिस बेले मान मर बे या गो नाना प्रकार पोके रान बे उद्रा गेती हुबे रान बे या गो फार हुंदी वेर मैने के पोर बुंदी वेर मैने के या गो सालाल मालीन माना ना बे या मालीन माना ना बे या गो नाना गेती पोके रान बे उद्रा गेती हुबे रान बे

0: ध्रुवी गीत है जी। ये किस समय गाया जाने वाला गीत है?
1: ये जो आम का त्योहार होता है, जो मंडिया और दान का बीज बुआई शुरू करते हैं उस समय के बाद
0: जी। तो गीतों की बात हम और जानना चाहेंगे, कौन कौन से गीत हैं, क्या क्या नाम उनको दिए गए हैं?
1: मेरे अनुभव से तो मैं कल्पना किया हूँ 9 से 10-11 पहाड़ मतलब उस प्रकार है, लेकिन गीत गाने के लिए कोई गिनती नहीं है। कुछ भी कि हम गीत बनाकर गा सकते हैं।
0: हाँ, हाँ।
1: जय आप बात कर रहे थे इसके बारे में, प्रकृति को, झाड़ के बारे में, कुछ भी मतलब कलाकार, कलाकार एक ऐसा शब्द है सर जो मतलब कलाकार लिखा है भी कुछ भी कलाकारी आज गजब ढंग से जो बने रहता है ना उसको कलाकार क्या बोलते हैं? कलाकार
0: मतलब ये है कि उसे लिखने की जरूरत नहीं है
1: जी।
0: अगर कोई कलाकार है
1: जी
0: तो उसे अगर कुछ बोलना है
1: जी
0: तो वो गीत के माध्यम से ही पूरी बात
1: जी,
0: अपने
1: जी
0: वो गीत गाकर बता देगा
1: जी। दूसरी चीज को तुम लिख कर वो भी एक मतलब कर सकते हैं, लेकिन ये गीत जो मन की बात है इसमें जैसे कि शरीर के तार है वो उसका शरीर के इंद्री उनके माध्यम से ही काम होता है। जिंदगी में 3 अवसर आते हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। जिंदगी में कहीं ना कहीं काम आने के बाद कोई गीत में जो गाया जाता है, बजाया जाता है, जो जो उसके लिए अवसर वो पार हुआ है, नहीं तो नहीं पहुंचा, उसको समझ नहीं पाता है। जो बचपन, जवानी, बुढ़ापी जिंदगी में काम आने के वाले ही बात को जो गाया जाता है
0: उसी को मतलब जीवन से जुड़े हुए जो गीत हैं
1: जी
0: वही होते हैं गीतों में।
1: प्राकृतिक से, जीवन से जो जिंदगी में काम आएगा वही सी बात को इस प्रकार रहता है।
0: तो क्या क्या बोलते हैं उन गीतों को?
1: गीत

0: गौरी बेदादारी, इसी तो मेन मेन पॉइंट मैं बताया।
1: इसके अलावा भी बहुत सारे
0: कोई गिनती नहीं है गीत गाने के लिए, हम दिन रात 24 घंटा गा सकते हैं
1: तो चलिए सुखराम बघेल जी, आपने ध्रुवा समाज के जीवन और उनके गीत संगीत उनके वाद्य यंत्रों इन सब के बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप भी स्टूडियो अमेरिका में तृतीय सीरीज के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हमारा बस्तर कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे बस्तर के ध्रुवा जनजाति विषय पर सुखराम बघेल से नारायण सिंह बघेल की बातचीत। ये आकाशवाणी जगदलपुर है, रात के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार संध्या हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: की दान राशि के कथित गबन मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रूपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 6,000 रूपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। आईसीसी क्रिकेट टी20 महिला विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: यूनाइटेड किंगडम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है।
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: एंड टुगेदर बिकमिंग अ फोर्स मल्टीप्लायर।
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं।
1: पार्टनरशिप विद यूके इज टेकिंग मेनी मोर डायमेंशन।
2: ब्रिटेन के साथ हमारी साझेदारी कई नए आयाम ले रही है। प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा साझा उद्देश्य है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और ब्रिटेन की साझेदारी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है कि वैश्विक व्यापार निष्पक्ष और समान अवसरों पर आधारित हो।
0: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में विशेष जांच दल एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्यवाही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी मामले की विस्तृत जांच कर रही है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए 2,500 रूपए शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठ वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रूपए होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रूपए होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के

लागत 6000 रुपए होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट की लागत 1500 रुपए और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2000 रुपए है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 5000 रुपए का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6000 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी।

0: कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। एक रिपोर्ट।
1: ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप है। वेनेजुएला की राजधानी काराकास से लगभग 1700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन क्षेत्र तक के इलाकों में इमारतों को खाली कराया गया है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। विश्व भर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा कि 300 बचावकर्मी और पैरामेडिक्स 50 टन सामग्री के साथ राहत कार्यों में सहायता के लिए रवाना होने को तैयार हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता कठिन समय में भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं का स्वागत किया। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस फैसले से भारत आने के इच्छुक हजारों बांग्लादेशी यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन, व्यापार, पारिवारिक संपर्क और आपसी संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजोन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजोन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायला और बाश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा की ताई तागा, कर्नाटक से भाजपा के देवोशीष सामंतराय और कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती तथा गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्यत्व के रूप में शपथ ग्रहण की। और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की प्रगति, गुणवत्ता और रखरखाव की समीक्षा की है। इन परियोजनाओं में तेलंगाना के लगभग 4931 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर के 2035 किलोमीटर और लद्दाख के 804 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।
2: नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने तथा सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, काम समय पर पूरा करने तथा आधुनिक निर्माण तकनीकों और बेहतर तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो

रिपोर्ट भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा एआई, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया युग के अनुकूल राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए

0: इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मेक्सिको और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने अपने मुकाबले जीते। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। राधा यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, वहीं श्री चरणी ने 2 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
1: सेंसेक्स 109 अंक बढ़कर 77,100 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 34 अंकों की तेजी से 24,056 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज के उच्चतम स्तर से 700 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई, वहीं निफ्टी में ये गिरावट 200 अंक रही। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 26 पैसे मजबूत होकर 94.40 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 5,000 रुपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सुभद्रा रामचंद्रन विद द न्यूज एट 9। The headlines. India-UK free trade agreement, most comprehensive agreement so far, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Death toll rises to 164 after massive earthquakes hit Venezuela. Prime Minister Narendra Modi expresses condolences and offers support for rescue and relief operations. FIR registered in Ram Mandir donation embezzlement case after recommendation of Uttar Pradesh SIT's preliminary report. Fees for 36-page fresh passport or reissue hike to 2,500 rupees from 1st of July. Tatkal to cost 5,000 rupees. India to resume tourist visas for Bangladeshi nationals from 28th of June. Bangladesh set target of 137 runs against India in ICC Women's T20 World Cup at Manchester. And in FIFA World Cup, Curaçao to take on Ivory Coast in Group E match at Philadelphia tonight. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will act as force multiplier to support the global economy. Addressing the India Global Forum IGF UK India Week in London today, Mr. Goyal said Free Trade Agreement FTA with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered into so far. The minister reached the UK on a 3-day visit to review the preparedness of both countries for the implementation of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement CETA, which will enter into force from July 15. Mr. Goyal added that the agreement will further integrate both countries into global value chains and open new avenues for economic cooperation and growth.
3: Partnership with UK is taking many more dimensions. So now we have a very highly strategic partnership, whether it comes to technology, investments, defense, and critical minerals, our shared objective to fight against terrorism, our effort to bring global peace and stability, our joint effort in several multilateral fora to bring good

0: Group E fixture, Ecuador will face Germany at East Rutherford in US. The match will begin at 1:30 a.m. IST. Later, Japan will take on Sweden in Group F match in Arlington, US, tomorrow early morning. The IMD has said that the conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into parts of Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar, Uttar Pradesh and Uttarakhand during the next 3 to 4 days. The IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim for the next 4 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India-UK Free Trade Agreement, most comprehensive agreement so far, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Death toll rises to 164 after massive earthquakes hit Venezuela. Prime Minister Narendra Modi expresses condolences and offers support for rescue and relief operations. FIR registered in Ram Mandir donation embezzlement case after recommendation of Uttar Pradesh SIT's preliminary report. Fees for 36-page fresh passport or reissue hike to 2,500 rupees on 1st of July. That's going to cost 5,000 rupees. India to resume tourist visas for Bangladeshi nationals on 28th of June. Bangladesh set target of 137 runs against India in ICC Women's T20 World Cup at Manchester. And in FIFA World Cup, Curaçao to take on Ivory Coast in Group E match at Philadelphia tonight. And that's all in the news at 9. Good night.
1: मीडियम वेव 396.8 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 9:15 में है। मीडियम वेव पर जारी है महिला टी20 क्रिकेट मैच का 2026 का आंखों देखा हाल, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे हैं। एफएम बैंड और मोबाइल ऐप पर कार्यक्रम लोक कथा सुनने से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेतनाथ सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेतनाथ सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: प्रस्तुत है लोक कथा केकड़ा और बुढ़िया, प्रस्तुत कर रहे हैं रुद्र नारायण पाणिग्राही।
4: एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। अकाल और महामारी ने उसका भरा पूरा संसार उजाड़ दिया था। महामारी में उसके पति और बच्चे मारे गए। तब से वह बिल्कुल उदास रहने लगी थी। दिन भर मेहनत मजदूरी करती और अपना पेट पालती थी। बुढ़िया ने समय के साथ समझौता कर लिया था। मेहनत मजदूरी करने सुबह ही खेतों की ओर निकल जाती और दूसरों के खेतों में काम करके शाम को घर लौट आती थी। रोज की तरह एक दिन वह मजदूरी करने खेतों की ओर जा रही थी। रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिसे पार करके ही खेतों की ओर जाना होता था। बुढ़िया नदी से पीने का पानी भर लेती और आगे बढ़ जाती थी। उस दिन भी रोज की तरह पानी भरने पत्थरों से भरे घाट पर उतर गई और जैसे ही पानी भरने लगी उसे एक आवाज सुनाई दी, मां तू मुझे पत्थरों के बीच से निकाल दे। बुढ़िया आवाक रह गई क्योंकि आसपास कोई नहीं था। फिर ये आवाज कहां से आई? आवाज फिर आई, मां मैं इन पत्थरों के नीचे दबा हुआ हूं, मुझे निकाल दो। बुढ़िया को लगा कि पत्थरों के नीचे से कोई आवाज लगा रहा है। उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि एक केकड़ा पत्थरों के बीच दबा पड़ा है और अपने बचाव के लिए आवाज लगा रहा है। मनुष्य की तरह आवाज सुनकर बुढ़िया एक बार डरकर सहम गई। बुढ़िया ने कहा, तू काट लेगा तो? मैं तुझे नहीं निकालती। केकड़ा ने कहा, नहीं मां तुझे नहीं काटूंगा, तू मुझे निकालकर अपने घर ले चल। बुढ़िया को केकड़े के ऊपर तरस आई। उसने धीरे से पत्थरों को हटाकर केकड़े को बाहर निकाल लिया और खेतों की ओर चल पड़ी। दिन भर मेहनत मजदूरी करने के बाद बुढ़िया ने उस घायल केकड़े को घर ले आई। बुढ़िया दिन भर की मेहनत से थकी मांदी थी। रोज की तरह हाथ पैर धोकर कुछ लकड़ियां जुटाई और किसी तरह शाम का भोजन तैयार कर ली। जैसे ही वो भोजन करने बैठी

उसे घायल केकड़े की याद हो आई। उसने केकड़े को पका हुआ भोजन परोसा और खुद भी भोजन किया। केकड़े ने कहा, माँ तूने बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाया। बुढ़िया ने कहा, हाँ दिन भर इस भोजन के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर एक वक्त की रोटी नसीब होती है। केकड़ा और उस बुढ़िया की देर रात तक सुख दुख की बातें होती रही। रात अधिक गहराने लगी तो बुढ़िया केकड़ा को सोने के लिए कहकर खुद सोने चली गई। सुबह उठते ही बुढ़िया अपने खेतों की ओर चली गई, केकड़ा घर पर ही रह गया।

केकड़ा ने कहा कि तेरे से तेरे सारे खेत का फसल काटने का 3 बोरे अनाज लूंगा। साहूकार ने तुरंत हाँ कर दी। इतने सस्ते में फसल काटने का जिम्मा केकड़े ने ले ली, किंतु वह सोच में पड़ गया कि अकेला केकड़ा इतनी बड़ी खेत की फसल कैसे काटेगा। केकड़ा ने साहूकार से कहा कि कल सुबह खेत पर गाड़ी लेकर आ जाना, फसल कटी हुई मिल जाएगी, लेकिन फसल की गठी मैं नहीं बांधूंगा, वह तुम्हें बांधना पड़ेगा। इतना कहकर केकड़ा अपने घर लौट आया। रोज की तरह बुढ़िया शाम को घर आई और लकड़ियां जुटाकर संध्या वंदन के बाद भोजन पकाने में जुट गई। बुढ़िया और केकड़ा भोजन कर लेने के बाद केकड़ा ने बुढ़िया से कहा कि माँ, मैं कल से तुम्हारे इस मेहनत मजदूरी में साथ दूंगा, मैं तुम्हारी मदद किया करूंगा, मैं भी तुम्हारे मेहनत मजदूरी में हाथ बटाऊंगा, कल से खेतों में फसल काटने मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। बुढ़िया ने केकड़े की बात मान ली। केकड़ा ने बुढ़िया से रात में 8 आने मांग लिया। दूसरे दिन सुबह होते ही केकड़ा हलवाई की दुकान पर पहुंचा और कहा कि 8 आने की बतासे दे दो। उसने ढेर सारा बतासा दे दिया। केकड़े ने कहा कि सारा बतासा एक पोकली में बांधकर मेरी पीठ पर ला दो। हलवाई ने बांध दिया। केकड़ा नदी के किनारे गया और नदी के केकड़ों को आवाज दी। उसके एक आवाज से नदी के सारे केकड़े बाहर आ गए। उसने सारे केकड़ों को एक एक बतासे बांट दिए और सबको खेतों की ओर ले गया। कुछ ही देर में साहूकार के खेतों में सारे केकड़े फैल गए और खड़ी फसल कुछ ही देर में काटकर इकट्ठा कर दिया। सुबह होते ही साहूकार ने सोचा कि केकड़े ने फसल काटने का जिम्मा लिया था, चलो देख ले कि उसने फसल काटा या यूं ही बातें बना रहा था। इस विचार में जब साहूकार खेत में पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी सारी फसल कटी पड़ी है। केकड़ा ने कहा, साहूकार जल्दी बैलगाड़ी मंगवाकर फसल उठा ले जा, मैंने तेरी फसल काटकर ढेर लगा दी है। साहूकार दौड़कर बैलगाड़ी मंगवा ली और सारी फसल उठाकर घर ले आया। कुछ दिनों के बाद फसल की मिंजाई करवा ली। अब तक फसल काटने की मजदूरी मांगने केकड़ा नहीं आया था। जैसे ही मिंजाई खत्म हो गई, केकड़ा अपनी मजदूरी मांगने पहुंच गया। ला साहूकार, मेरी मजदूरी के अनाज दे दे। साहूकार ने कहा, ठीक है, तेरी मजदूरी तेरे घर पहुंचा दिया जाएगा। साहूकार 3 बोरा अनाज तौलकर उसके घर पहुंचा दिया। बोरे में भरा अनाज घर पर साहूकार उतार कर चलते बने। बुढ़िया को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। केकड़ा ने सारी बातें समझा दी कि उसके मेहनत की मजदूरी है। इस तरह दिन गुजरते गए और केकड़ा मेहनत मजदूरी करता रहा। मेहनत मजदूरी से धन और अनाज घर आता रहा। अब पहले की भांति अधिक मेहनत नहीं करना पड़ता था। बड़े ही आराम से सुख के दिन बीतने लगे। एक दिन बुढ़िया को लगा कि पता नहीं कब उसके जीवन का अंत हो जाए। उसके आगे पीछे भी तो कोई नहीं और ना ही कोई संतान। केकड़े को ही पुत्र की भांति मानने लगी थी। उसे कभी लगता कि सगा पुत्र भी आज उसके साथ होता तो इतनी सेवा और माँ की देखभाल शायद ही करता। इसीलिए केकड़ा को अपने पुत्र से भी अधिक मानती थी। एक दिन बुढ़िया ने केकड़े को समीप बुलाकर कहा कि देख, अब मुझसे घर का काम नहीं हो पाता, अब तू मेरे लिए एक बहू लाकर दे दे, जिससे मुझे घर के कामकाज में मेरा साथ दे सके। केकड़े ने कहा, मां मुझसे कौन शादी करेगा। बुढ़िया के जिद करने पर केकड़ा तैयार हो गया और बुढ़िया से कहा कि ठीक है, कल तू मेरे लिए कुछ खाने का सामान बांध दे, मैं तेरे लिए बहू ढूंढ कर लाऊंगा। बुढ़िया सुबह सुबह 4 रोटियां बनाकर केकड़े की पीठ पर बांध दिया। केकड़ा अपनी पीठ पर रोटियां बंधवा कर वहां से चल दिया। केकड़ा नदी के किनारे पहुंचा और एक गड्ढा खोदकर 4 रोटियों को दबा दी और आगे बढ़ गया। रास्ते में एक बड़ा सा कुआं आया जिसमें लबालब पानी भरा हुआ था। केकड़ा उस कुएं का सारा पानी पी गया। जब सारा पानी समाप्त हो गया तो एक पत्थर के नीचे चुपचाप जा बैठा। लोग जब पानी निकालने आए तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि कुआं में पानी नहीं है। लोगों ने सोचा कि कभी न सूखने वाला कुआं अचानक कैसे सूख गया। पूरे गांव में एक ही कुआं था। लोग पानी के लिए तरसने लगे, पानी के लिए त्राही त्राही मचने लगे। धीरे धीरे इस बात की जानकारी राज्य के राजा के पास पहुंचा। राजा को लगा कि यह किसी की शरारत तो नहीं। उसने स्वयं कुएं के पास जाकर निरीक्षण करने की बात सोची। राजा कुएं के पास जाकर देखा तो पाया कि सचमुच कुएं में पानी सूख गया है। राजा को लगा कि सूखे कुएं के बीचों बीच एक पत्थर पड़ा है और उसकी

नीचे केकड़ा भी है। केकड़े को देखकर राजा ने पूछा, क्यों रे भाई, इस कुएं में कौन है? केकड़े ने कहा, मैं हूं। केकड़ा, क्यों रे, इस कुएं का सारा पानी कहाँ गया? केकड़ा ने कहा, मैं पी गया। राजा ने कहा, सारा पानी छोड़। केकड़ा ने कहा, नहीं छोड़ूंगा। राजा ने पूछा, क्यों? कि तेरी लड़की की शादी मुझसे करेगा तो पानी

कर मुझसे विनती करने की आवश्यकता नहीं है। राजा को सारी बात समझ में आ गई। समय की नजाकत को समझते उसने केकड़े से अपनी लड़की की शादी करने को राजी हो गया। उसने केकड़े से कहा, भाई केकड़ा, मैं अपनी लड़की की शादी करने को तैयार हूं, अब तो पानी छोड़ दे। उसने पानी छोड़ दिया। राजा ने उस केकड़े से अपनी लड़की की धूमधाम से शादी कर दी। विदाई का समय आया। राजा ने दो घोड़े तैयार करवा दिए। एक पर केकड़े को बिठाकर लाल कपड़ा ओढ़ाकर विदा किया और दूसरे घोड़े पर राजा ने अपनी बेटी को बिठाकर विदा किया। लोग पूछते रहे, राजकुमारी का राजकुमार कहाँ है? सिर्फ एक घोड़े पर लाल कपड़ा ही दिख रहा है, लेकिन राजकुमार तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। लोग राजकुमारी से पूछते कि तेरा दूल्हा कहाँ है? राजकुमारी कहती कि उस लाल जोड़े में ही तो मेरा राजकुमार है। लोग देखते और कहते, ये तो केकड़ा है। राजकुमारी कहती, वही तो मेरा राजकुमार है। केकड़ा अपने आप को केकड़ा कहे जाने पर नाराज होता, लेकिन क्या कर सकता था। केकड़ा ने राजकुमारी को विदा करा के नदी के पास लेकर आया, जहां एक गड्ढे में खाने का सामान अर्थात बुढ़िया की दी हुई रोटियां दबा दिया था। राजकुमारी के साथ रोटियां दोनों ने मिल बांट कर खाया और आधी रोटी बच जाने पर उसे सुरक्षित बांध कर रख लिया। भोजन कर लेने के बाद केकड़ा ने पेड़ के नीचे बैठी राजकुमारी की गोद में जा बैठा। राजकुमारी डरने लगी कि कहीं केकड़ा उसे काट न ले। केकड़ा ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी मेरे सिर से जुए निकाल दे। जैसे ही राजकुमारी ने केकड़े के सिर से जुए निकाला, उसे केकड़े ने कहा कि उसे मार डाल। राजकुमारी ने वैसा ही किया। अचानक गोद में बैठे केकड़े ने मनुष्य का रूप लिया और एक सुंदर नौजवान के रूप में प्रकट हो गया। यह देखकर राजकुमारी डर गई। राजकुमार ने बताया कि एक श्राप के कारण उस केकड़े के रूप में जीवन निर्वाह करना पड़ रहा था, आज उससे मुक्ति मिल गई। चलो मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाता हूँ। राजकुमार और राजकुमारी दोनों घोड़े पर बैठकर बुढ़िया के घर पहुंचे। बुढ़िया ने पूछा, कौन हो भाई? राजकुमार ने कहा, मैं तेरा लड़का हूँ माँ। बुढ़िया ने कहा, मेरा तो ऐसा कोई लड़का नहीं था। राजकुमार ने कहा कि मैं वही केकड़ा वाला तुम्हारा बेटा हूँ जो घर से बहू लेने गया था। बुढ़िया को भरोसा नहीं हुआ। फिर केकड़े ने अपनी सारी बातें बुढ़िया को बताई। मैंने आपसे चार रोटियां लेकर गया था और उसे नदी के किनारे दबाकर चला गया था। मैं रास्ते में पड़ने वाले कुएं का सारा पानी पी गया। इससे राजा के राज्य में हाहाकार मच गया। इस बात की शिकायत राजा तक पहुंची और राजा स्वयं उस कुएं को देखने आया। मैंने पानी फिर से छोड़ने के एवज में राजकुमारी से शादी करने की शर्त रखी। राजा को मानना पड़ा और उसने मेरी शादी राजकुमारी से कर दी। फिर राजकुमार ने श्राप वाली बात कह सुनाई। बुढ़िया को बेटा और बहू मिल गए, वह भी राजकुमार और राजकुमारी। बुढ़िया ने दोनों को खूब आशीर्वाद दिया और बहू बेटे के साथ सुखी जीवन बिताने लगे।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक कथा केकड़ा और बुढ़िया। ये लोक कथा सुना रहे थे रुद्र नारायण पाणिग्राही। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव पर जारी है महिला T20 क्रिकेट मैच 2026 का आंखों देखा हाल, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे हैं। एफएम बैंड और मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 9:30 बजे हैं। प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम घुमकली। इसमें सुनिए लंबोदर बघेल और साथियों का गाया नाटगीत। लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

लीजिए आप सुनिए लंबोदर बघेल और साथियों का गाया ये नाटगीत कार्यक्रम है घुमकली।

जिकाए नारो पुत्र जीव धन देला प्रभु नारायण हा बाजे गाए नारो पुत्र जीव

0: माता कंटे चुरी लगे यार बंदर फेरी देवा महाप्रभु चलो माता रो संकट फेरी देवा सुनेरी रहत रुजे कंटा चुड़ाइला
1: सुंदरी
0: रहत रुजे कंटा चुड़ाइला संजीव बोले मंत्रा पोरे पिंड खुजोड़ीला संजीव बोले मंत्रा पोरी पिंड खुजोड़ीला गायत्री मंत्रा पोरी जीव दान देला गायत्री मंत्रा

0: तुम्हें चिंता करो नहीं, तोर कुमर गुण जय सागर,
1: तोर
0: कुमर गुण जय सागर, तो पुत्र मृत्यु हेले मोर मृत्यु
1: तुझारे
0: कहीं का दूची नुमा दया तुझारे कहीं का।

Bola do Jesus, tira com bola. Foi o pai bolado.

दुष्ट तत्व बाजी खाई कई रूपये जीव तान तू पलैजा हे दुष्ट पुत्र को छाड़ दे सुंदरी हे दुष्ट पुत्र को छाड़ दे प्राणनाथ कहीं मुझ छाड़ी देख मुते कष्ट मो पुत्र पाई प्राणनाथ न मारो न मारो राजा।

0: लोकगीतों के कार्यक्रम घुमकली में अभी आप सुन रहे थे लंबोदर बघेल और साथियों का गाया नाट गीत। ये आकाशवाणी जगदलपुर है।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: एफएम बैंड और मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 10 बजे है। मीडियम वेव पर जारी है महिला टी20 क्रिकेट मैच 2026 का आंखों देखा हाल, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे हैं। एफएम बैंड और मोबाइल ऐप पर पेश है गैर फिल्मी गीत। शुरुआत हम कर रहे हैं नुसरत बद्र के कलाम से। संगीत है शिबू पिंटू का और इस गीत को अपनी आवाज दी है कुमार सानू ने।

गीतकार हैं श्यामराज, संगीतकार हैं श्याम प्रसाद और इस गीत में आवाज है चंदना दीक्षित की। सुनते हैं ये गीत।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी डगमे। अब सुनते हैं खुशहाली कुमार का लिखा और गाया गीत, साथ में आवाज है तुलसी कुमार की, संगीतकार है संजय राजी।

पर तुम में शायद कुछ खास है, तुम्हारी आंखों में बच्चों की सी आस है, तुम्हारी आंखों के शीशे में मेरा चेहरा दिखा है मुझे, मेरे चेहरे की रंगत क्या खूब दिखती है इनमें, सोचते हैं अब इन्हीं में रहेंगे।

कार्यक्रम के आखिर में पेश है नितिन रायकवार की शब्द रचना। संदीप चौटा की तर्ज पर इस गीत को गाया है अलीशा चिनॉय ने।

इस गाने के साथ ही गैर फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत हमने लिया है मुकेश के स्वर में, नादान फिल्म का गीत है। बोल हसरत जयपुरी के हैं, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

नाइट इन लंदन। इस फिल्म से लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर के युगल स्वर में आनंद बख्शी की शब्द रचना। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आशा भोसले की आवाज में आइए सुनिए असद भोपाली का लिखा और गणेश शर्मा का स्वरबद्ध गीत। फिल्म का नाम है ठाकुर जरनैल सिंह।

आनंद बख्शी का लिखा गीत है, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्म का नाम है सूरज और चंदा। इस गीत को अपनी आवाज दी है मोहम्मद रफी ने।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए प्यार किए जा फिल्म से गीत राजेंद्र कृष्ण का है धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है और स्वर है लता मंगेशकर का लता मंगेशकर के साथ आवाज आप सुनेंगे महेंद्र कपूर की

फिल्म संगीत की आखिरी पेशकश फिल्म मधुमती का नगमा। नगमा निगार है शैलेंद्र, मौसिकार है सलील चौधरी और आवाज लता मंगेशकर की है।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी जगदलपुर है। रात के 11 बजने को है। अब हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: साथ में रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
2: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
3: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
2: And together becoming a force multiplier.
1: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा

96.8 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय रात के 11:10 और 18 सेकंड हुए हैं। हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। कल प्रातः 5:53 पर पहली सभा के कार्यक्रमों को लेकर आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।